मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, वेव्स ओटीटी और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 5 जून सन 2026, सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे जिसे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर

0: चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेन्द्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें ज्वार की खेती इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
3: किसान भाइयों, आज हम ज्वार की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। ज्वार की खेती हम दो मतलब से करते हैं, एक तो अपने खाने के लिए और दूसरा अपने जानवरों के लिए। अपने लिए अनाज और पशुओं के लिए चारा प्राप्त करने के लिए इस समय आप ज्वार की बुआई कर सकते हैं। आइए पहले अनाज उत्पादन के लिए और फिर इसके बाद चारे के लिए इसकी उन्नतशील ढंग से खेती के बारे में चर्चा करते हैं। दाना प्राप्त करने के लिए ज्वार की बुआई करने का सही समय

0: जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक होता है। अतः आप खेत तैयार करके और सही समय पर बुआई करें। इसके लिए वही भूमि उपयुक्त होती है जो बलुई या दोमट किस्म की हो, तथा यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि खेत में ज़्यादा पानी न लगने पाए, यानी फालतू पानी के निकासी की व्यवस्था हो। खेत के चुनाव के बाद उसकी एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा दो तीन बार कल्टीवेटर से जुताई करके खेत तैयार कर लेते हैं। खेत में अगर दीमक लगने की संभावना हो तो 25 से 30 किलोग्राम लिंडेन चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत में भलीभांत मिला देना चाहिए। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं वह हैं CSB13, मऊ टाइप 1, मऊ टाइप 2, वर्षा, CSH16, CSH9 और CSH14 इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं। एक हेक्टेयर में बुआई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये कि अगर एक एकड़ खेत में बुआई करना है तो 5 से 6 किलोग्राम बीज लगेगा। बीज का जमाव अच्छा हो और उसमें कंडुआ रोग न लगने पाए, इसके लिए बीजोपचार करते हैं। बीज को उपचारित करने के लिए थीरम दवा लेते हैं। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त होती है। यानी अगर 5 किलोग्राम बीज है तो लगभग 12.5 ग्राम दवा लगेगी। बुआई हल के पीछे कूड़ों में करनी चाहिए तथा एक कूड़ से दूसरे कूड़ की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग भी बोते समय ही करते हैं। उर्वरकों की मात्रा मिट्टी की जांच के बाद मालूम हो जाती है। अगर मिट्टी की जांच न करवा सकें तो संकर प्रजातियों के लिए 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से तत्व के रूप में कूण में डालकर फिर बीज डालते जाते हैं। अगर एक एकड़ खेत है तो 32 किलोग्राम नत्रजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस और 8 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में, कहने का मतलब ये कि 64 किलोग्राम यूरिया, 96 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 12 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश खेत में कूण में डालकर और फिर पीछे पीछे बीज बोते जाते हैं। यूरिया की इतनी ही मात्रा को बुआई के लगभग 30 से 35 दिन बाद खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहिए। ज्वार अक्सर अरहर के साथ मिलाकर भी बोते हैं, लेकिन इससे उपज अच्छी नहीं मिल पाती। अगर दोनों को बोना है तो अरहर की दो लाइनों के बीच में ज्वार की एक लाइन बोना चाहिए। आइए अब कुछ चर्चा चारे के लिए ज्वार की खेती के बारे में करते हैं। चारे के लिए ज्वार की जो उन्नतशील किस्में हैं वह हैं मीठी ज्वार PC6, यूपी चरी नंबर 1, यूपी चरी नंबर 2। इनकी बुआई जून माह से लेकर जुलाई माह तक आप किसी भी समय कर सकते हैं। सामान्य तौर पर इसमें 80 किलोग्राम नत्रजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर, कहने का मतलब ये कि 32 किलोग्राम नत्रजन तथा 16 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ की दर से तत्व के रूप में आवश्यकता होती है। नत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में डालना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की मात्रा को बुआई के 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर ज्वार की खेती करनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें ज्वार की खेती विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। जगत जननी माँ जगदम्बा की आंखों में करुणा का सागर है। उनकी शरण में आकर ऐसा लगता है जैसे सारे कष्ट दूर हो गए।

भगवान शिव सौम्य एवं रौद्र दोनों ही रूपों के लिए जाने जाते हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। आज के कलाकार थे जगजीत सिंह, अनूप जलोटा और चंद्रू आत्मा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा, बापू की आत्मकथा, सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन एवं प्रस्तुति है अरुण पांडे की।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी 132वीं कड़ी।

चंपारण जनक राजा की भूमि है। जिस तरह चंपारण में आम के वन हैं, उसी तरह सन 1917 में वहां नील के खेत हुआ करते थे। चंपारण के किसान अपनी ही जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती उसके असल मालिकों के लिए करने को कानून से बंधे हुए थे। इसे वहां 3 कठिया कहा जाता था। 20 कट्ठे का वहां 1 एकड़ था और उसमें से 3 कट्ठे जमीन में नील बोने की प्रथा को 3 कठिया कहते थे। मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि वहां जाने से पहले मैं चंपारण का नाम तक नहीं जानता था। नील की खेती होती है इसका ख्याल भी नहीं के बराबर था। नील की गोटियां मैंने देखी थीं, पर वे चंपारण में बनती हैं और उनके कारण हजारों किसानों को कष्ट भोगना पड़ता है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। राजकुमार शुक्ल नामक चंपारण के किसान थे, उन पर दुख पड़ा था। ये दुख उन्हें अखरता था, लेकिन अपने इस दुख के कारण उनमें नील के इस दाग को सबके लिए धो डालने की तीव्र लगन पैदा हो गई थी। जब मैं लखनऊ कांग्रेस में गया तो वहां इस किसान ने मेरा पीछा पकड़ा। वकील बाबू, आपको सब हाल बताएंगे, वाक्य वे कहते जाते थे और मुझे चंपारण आने का निमंत्रण देते जाते थे। वकील बाबू से मतलब था चंपारण के मेरे प्रिय साथी, बिहार के सेवा जीवन के प्राण ब्रजकिशोर बाबू से। राजकुमार शुक्ल उन्हें मेरे तंबू में ले आए। उन्होंने काले आलपाका की अचकन पतलून वगैरह पहन रखा था। मेरे मन पर उनकी कोई अच्छी छाप नहीं पड़ी। मैंने मान लिया कि वे भोले किसानों को लूटने वाले कोई वकील साहब होंगे। मैंने उनसे चंपारण की थोड़ी कथा सुनी। अपने रिवाज के अनुसार मैंने जवाब दिया, खुद देखे बिना इस विषय पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। आप कांग्रेस में बोलिएगा, मुझे तो फिलहाल छोड़ ही दीजिए। राजकुमार शुक्ल को कांग्रेस की मदद की तो जरूरत थी ही। ब्रजकिशोर बाबू कांग्रेस में चंपारण के बारे में बोले और सहानुभूति सूचक प्रस्ताव पास हुआ। राजकुमार शुक्ल प्रसन्न हुए, पर इतने से उन्हें संतोष नहीं हुआ। वे तो खुद मुझे चंपारण के किसानों के दुख बताना चाहते थे। मैंने कहा, अपने भ्रमण में मैं चंपारण को सम्मिलित कर लूंगा और 1-2 दिन वहां ठहरूंगा। उन्होंने कहा, 1 दिन काफी होगा, नजरों से देखिए तो सही। लखनऊ से मैं कानपुर गया था, वहां भी राजकुमार शुक्ल हाजिर ही थे। यहां से चंपारण बहुत नजदीक है, 1 दिन दे दीजिए। अभी मुझे माफ कीजिए, पर मैं चंपारण आने का वचन देता हूं। ये कहकर मैं ज्यादा बंध गया। मैं आश्रम गया तो राजकुमार शुक्ल वहां भी मेरे पीछे लगे ही रहे। अब तो दिन मुकर्रर कीजिए, मैंने कहा। मुझे फला तारीख को कलकत्ते जाना है, वहां आइए और मुझे ले जाइए। कहां आना, क्या करना और क्या देखना, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। कलकत्ते में भूपेन बाबू के यहां मेरे पहुंचने के पहले उन्होंने वहां डेरा डाल दिया था। इस अपड़ अनगढ़ परंतु निश्चयवान किसान ने मेरा दिल जीत लिया। सन 1917 के आरंभ में कलकत्ते में हम 2 व्यक्ति वहां से रवाना हुए। दोनों की एक सी जोड़ी थी, दोनों किसान जैसे ही लगते थे। राजकुमार शुक्ल जिस गाड़ी में ले गए उस पर हम दोनों सवार हुए, सवेरे पटना उतरे। पटना की मेरी ये पहली यात्रा थी। वहां किसी के साथ मेरा ऐसा परिचय नहीं था जिसके बारे में मैं कहूं कि मैं उनके घर जा सकता हूं। मैंने ये सोच लिया था कि राजकुमार शुक्ल अनपढ़ किसान हैं, तथापि उनका कोई वसीला तो होगा ही। ट्रेन में मुझे उनके कुछ अधिक जानकारी मिलने लगी। पटना में उनका पर्दा खुल गया। राजकुमार शुक्ल की बुद्धि निर्दोष थी। उन्होंने जिन्हें अपना मित्र मान रखा था, वे वकील उनके मित्र नहीं थे, बल्कि राजकुमार शुक्ल उनके आश्रित जैसे थे। किसान मुवक्किल और वकील के बीच चौमासे की गंगा के चौड़े पाट के बराबर का अंतर था। मुझे वे राजेंद्र बाबू के घर ले गए। राजेंद्र बाबू पूरी अथवा कहीं और गए थे, बंगले पर एक तो नौकर थे। मेरे साथ खाने की कुछ सामग्री थी, मुझे थोड़ी खजूर की जरूरत थी। बेचारे राजकुमार शुक्ल बाजार से ले आए, पर बिहार

परिवार में तो कई कड़े रीति रिवाज थे। मेरी बाल्टी के पानी के छींटे किसी को भ्रष्ट कर सकते थे, किसी को क्या पता कि मैं किस बिरादरी से हूं। राजकुमार शुक्ल ने अंदर के प्रसाधन का उपयोग करने को कहा। नौकर ने बाहर के प्रसाधन की ओर इशारा किया। मेरे लिए इसमें परेशान या गुस्सा होने जैसा कोई कारण नहीं था। इस प्रकार के अनुभव कर करके मैं बहुत पक्का हो गया था। नौकर तो अपने धर्म का पालन कर रहा था और राजेंद्र बाबू के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। इन मनोरंजक अनुभवों के कारण जहां राजकुमार शुक्ल के प्रति मेरा आदर बढ़ा, वहीं उनके विषय में मेरा ज्ञान भी बढ़ा। पटना से लगाम मैंने अपने हाथ में ले ली।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन एवं प्रस्तुति थी अरुण पांडे की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुल गुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। आज के गायक कलाकार थे ए हरिहरन। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर, दोपहर 12:45 पर और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे गायन। कलाकार होंगे देवाशीष डे।

सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला कड़ी आप सुनेंगे रात्रि 8:10 पर। खेल पत्रिका आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे से। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे सुनिएगा गजल। कलाकार होंगे ए हरिहरन। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दिन 12:30 पर सुनिएगा गीत। कलाकार होंगी अलका याग्निक और शब्बीर कुमार।

सुबह 9:50 पर और दिन 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे सुदर्शन यादव और साथी। इनके गाए लोकगीत आप कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। समय होगा शाम 6:30। कृषि जगत में ही आप सुनेंगे श्रवण कुमार यादव की वार्ता। विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस व इसका

महत्व। युवा साथी कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें आज के आकर्षण होंगे आज की बात, सिने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। दिन में 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जिसमें चर्चा और बातचीत के साथ ही होगा गीत संगीत। एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 2:30 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 10:00 झंकार में, 5:00, 6:10 पर, 7:00 और 7:31 पर रसरंग में। सुबह 8:45 पर सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरमा। और अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार बनारस, कैसे हैं आप सब। सुबह के 7 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस शिखा के साथ। दोस्तों, आज है 5 जून और आज हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अस्सी घाट पर उगते हुए सूरज की वो लालिमा देखी है कभी आपने, गंगा मैया की लहरों पर तैरती वो सुनहरी किरणें। ये नजारा सिर्फ एक दृश्य नहीं है, ये हर बनारसी के जीने की वजह है। आज की सुबह आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बस इसी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं आज का ये सफर। दोस्तों, बनारस को हम सब घाटों, गलियों और चाट के लिए जानते हैं, लेकिन आज 5 जून को मैं आपको बनारस की एक ऐसी खास बात बताने जा रही हूँ जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, पर ये हम सबको गर्व से भर देगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे बनारस का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज जो सारनाथ में है, दुनिया के उन चुनिंदा परिसरों में से एक है जिसने आधुनिक विज्ञान के साथ साथ प्राचीन औषधीय पौधों और ग्रीन विजडम यानी हरित ज्ञान को संजो कर रखा है। यहाँ के पुस्तकालय में सदियों पुराने ऐसे ग्रंथ हैं जो बताते हैं कि कैसे प्रकृति को नुकसान पहुँचाए बिना इंसान लंबी उम्र और दिमागी शांति पा सकता है। तो भैया, बनारस सिर्फ अध्यात्म की राजधानी नहीं है, ये पर्यावरण

और सस्टेनेबल यानी कि सतत जीवन का सदियों पुराना ग्लोबल सेंटर भी है। बनारस आज 5 जून है यानी विश्व पर्यावरण दिवस। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बस एक सरकारी दिन है, लेकिन जरा ठहरिए, अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, बनारस की पहचान क्या है? हमारी गंगा मैया, हमारे घाटों पर लगे वो पीपल और बरगद के पेड़, जिनकी छांव में बैठकर ना जाने कितनी पीढ़ियों ने सुकून की सांस ली है। प्रकृति से हमारा रिश्ता वैसा ही है जैसा एक माँ का अपने बच्चे से होता है। गंगा मैया हमें सिर्फ पानी ही नहीं देती, वो हमारी संस्कृति को सींचती है। आज के इस खास दिन हम खुद से एक छोटा सा वादा तो कर ही सकते हैं। इस साल अपने जन्मदिन पर या किसी भी दिन किन्हीं अपनों की याद में बनारस की इस पावन मिट्टी में एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसकी सेवा, उसकी रक्षा जरूर करेंगे। सोचिए, जब वो पौधा बड़ा होगा तो सिर्फ हवा साफ नहीं करेगा, वो आपके प्रेम की भी गवाही देगा। और हाँ, पेड़ लगाने के साथ साथ आज अपने अंदर एक हौसले को भी थोड़ा सींचना है। अगर कल का दिन अच्छा नहीं बीता, अगर कोई काम अधूरा रह गया तो उदास मत होइए, बनारस की तासीर सीखिए। यहाँ हर सुबह एक नया जीवन, एक नया उत्सव होती है। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब तक आपके अंदर बनारसी जज्बा है, आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो उठिए, मुस्कुराइए, अपनी चाय की चुस्की लीजिए और पूरे जोश के साथ काम पर निकल जाइए, क्योंकि हार मानना बनारस के डीएनए में नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, बाबा विश्वनाथ सब संभाल लेंगे। तो चलिए, इसी खूबसूरत सोच और कड़क बनारसी मिजाज के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं। आपको सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत जो आपकी सुबह को भी बना देगा और भी खूबसूरत। आप सुनते रहिए गुड मॉर्निंग बनारस, सिर्फ आकाशवाणी वाराणसी के संग। बातें अभी और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं इस सॉन्ग के बाद। गुड मॉर्निंग बनारस।

वेलकम बैक बनारस। सॉन्ग के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो गुड मॉर्निंग बनारस में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के संग। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज 5 जून है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। और दोस्तों, इस साल यानी 2026 की जो थीम संयुक्त राष्ट्र ने तय की है, वो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। इस साल की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, यानी प्रकृति से प्रेरणा लें अपने पर्यावरण के लिए और अपने आने वाले कल के लिए। ये थीम

यही कह रही है कि अब सिर्फ बातें करने का वक्त नहीं रहा, अब एक्शन लेने का वक्त है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो ग्लोबल बात हो गई, हमारे देश में क्या चल रहा है? तो जरा ध्यान से सुनिए, हमारा प्यारा भारत इस समय पूरी दुनिया को ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता दिखा रहा है। भारत ने अपने 2030 के रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को समय से पहले ही पार कर लिया है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, और अब देश की 52% से ज्यादा बिजली बिना कोयले के यानी सूरज की रोशनी और हवा से बन रही है। इतना ही नहीं, सरकार की नगर वन योजना के तहत देश के शहरों में करीब 1000 शहरी जंगल बनाए जा रहे हैं, ताकि कंक्रीट के बीच हमारे फेफड़ों को शुद्ध हवा मिल सके। और सबसे कमाल की बात, पूरे भारत में मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एक जन आंदोलन बन चुका है, जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों को बदल कर प्रो प्लैनेट पीपल बन सकते हैं। लेकिन असली जो बात है वो कहाँ है? असली बात जो है वो हमारे बनारस में है। पर्यावरण दिवस तो आज है, लेकिन हमारे बनारस ने तो इसी साल 1 मार्च 2026 को इतिहास रच दिया था। क्या आपको याद है, बनारस ने 1 घंटे के भीतर सबसे ज्यादा पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ट्रांस गंगा इलाके के करीब 350 बीघा क्षेत्र में नमो वन पहल के तहत मात्र 60 मिनट में 2,51,446 पौधे लगाए गए थे। इसमें चीन का पुराना रिकॉर्ड टूट गया था। हमारे बनारस के आम नागरिकों, छात्रों, सेना, एनडीआरएफ और सीआरपीएफ के 20,000 से ज्यादा जांबाजों ने मिलकर जापान की मियावाकी तकनीक से इस घने शहरी जंगल की नींव रखी थी। सोचिए, हमारा बनारस जब ठान लेता है तो दुनिया देखती रह जाती है। मियावाकी तकनीक आपने सुना ना, और आप सोच रहे होंगे कि ये मियावाकी तकनीक आखिर है क्या? तो चलिए आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। हमारे बनारस ने जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसमें मियावाकी तकनीक से 2.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए, ये मैंने अभी आपको बताया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मियावाकी तकनीक है क्या, तो हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं कि मियावाकी तकनीक आखिर है क्या। मियावाकी असल में जापान के एक बहुत बड़े वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी का दिमाग है। उन्होंने एक ऐसा तरीका खोजा जिससे बहुत कम जगह में बहुत तेजी से घना जंगल उगाया जा सके। इसे आप जंगलों का पावर कैप्सूल भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सिर्फ वही पौधे चुने जाते हैं जो हमारी स्थानीय मिट्टी में उगते हैं, जैसे हमारा नीम, पीपल, बरगद, शीशम, कोई विदेशी दिखावटी पौधा नहीं होता। सामान्य तौर पर पेड़ों को दूर दूर लगाया जाता है, लेकिन मियावाकी तकनीक में पौधों को बहुत पास पास यानी कि लगभग 2 से 3 फीट की दूरी पर लगाया जाता है। जब पौधे इतने पास होते हैं तो उन्हें धूप पाने के लिए ऊपर की तरफ भागना पड़ता है। इनमें आपस में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है कि कौन पहले ऊपर पहुंचेगा। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? जहां एक साधारण जंगल को बड़ा होने में 20 से 30 साल लग जाते हैं, वहीं मियावाकी तकनीक से जंगल सिर्फ 2 से 3 साल में तैयार हो जाता है। ये आम जंगलों की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ता है और 30 गुना ज्यादा घना होता है, यानी कम जगह में ज्यादा हरियाली, ज्यादा ऑक्सीजन और ढेर सारे पक्षियों का घर। यही वजह है कि हमारे बनारस के ट्रांस गंगा इलाके में इस जापानी तकनीक से नमो वन बनाया गया है, जो आने वाले दिनों में बनारस को ठंडी और शुद्ध हवा देने वाला है। और आज 5 जून को हमारा बनारस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। सुबह सुबह ही बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भारतीय रेलवे के सहयोग से एक बेहद अनोखा कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ उज्ज्वल पाठशाला के प्यारे प्यारे बच्चों ने वेस्ट टू आर्ट की एक शानदार प्रदर्शनी लगाई है, जहाँ कचरे से बेहद खूबसूरत कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। अगर आप स्टेशन के आसपास हैं तो बच्चों का हौसला बढ़ाने जरूर जाइएगा। इसके साथ ही गंगा टास्क फोर्स और हमारे स्थानीय वॉलंटियर्स आज घाटों पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला रहे हैं, जहाँ केवल पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं बल्कि उन्हें गोद लेकर बड़ा करने का संकल्प भी लिया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल हमारे वाराणसी डिवीजन में 1 करोड़ 85 लाख

से ज्यादा पौधे लगाने का महालक्ष्य रखा है, जिसमें अकेले हमारे बनारस में ही 15,51,000 से ज्यादा पीपल, बरगद और नीम के पेड़ रोपे जाएंगे। तो दोस्तों, सरकारें अपना काम कर रही हैं, एक्टिविस्ट अपनी जान लगा रहे हैं, लेकिन इस 5 जून को आपकी और हमारी क्या जिम्मेदारी है? जब हम घाट पर सुबह की चाय पीकर कुल्हड़ फेंकते हैं या प्लास्टिक की बोतल गंगा मैया के किनारे छोड़ देते हैं, तो दिल दुखता है ना? आज इस पर्यावरण दिवस पर खुद से एक छोटा सा बनारसी वादा करिए, गंगा मैया को साफ रखेंगे और अपनी इस देव नगरी को हरा भरा बनाएंगे। उठिए, मुस्कुराइए और इस खूबसूरत सुबह को पर्यावरण के नाम कर दीजिए। इस खूबसूरत से मैसेज के साथ ही चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले सेगमेंट में, जानते हैं शहर बनारस का हालचाल। दो जून को नौतपा काल समाप्त होने के बाद बुधवार को काशी का तापमान फिर 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। प्री मॉनसून सीजन में 5 दिन बाद शहर में इतनी गर्मी दर्ज की गई। वहीं वर्ष 2026 के नौतपा में 9 दिनों का औसत अधिकतम तापमान 39.47 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले वर्ष के नौतपा की तुलना में करीब 4 डिग्री अधिक रहा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने IIRF रैंकिंग में खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 8वां और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। एक गैर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय होने के बावजूद विद्यापीठ ने 2025 में 47 पदक जीतकर उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। फसल मौसम निगरानी समूह ने किसानों को अगले 2 सप्ताह तक खेतों में नमी बनाए रखने की सलाह दी है। कम वर्षा और लू की आशंका के चलते धान के बजाय श्री अन्न, मक्का जैसी फसलें बोने और पशुओं के चारे में नमी रखने को कहा गया है। तो किसान भाइयों, जरा ध्यान दें। देश भर में लोग जिस मॉनसून का इंतजार कर रहे थे, अब उसकी आहट साफ सुनाई देने लगी है। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक मौसम का सिस्टम तेजी से एक्टिव हो चुका है और इसका असर अब जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। कई राज्यों में आसमान का रंग बदल चुका है। तेज हवाओं ने गर्मी की रफ्तार पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है और मौसम विभाग लगातार अलर्ट भी जारी कर रहा है। इनका कहना है कि अगले कुछ घंटों और दिनों में देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। कहीं धूल भरी आंधी चलेगी तो कहीं बिजली गिरने की और ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो इससे ज्यादा जो चिंता है वो इन इलाकों को लेकर है जहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। तो बनारस, मौसम का भी ध्यान रखिए और खुद का भी ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। आप चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं इतिहास में 5 जून की खासियत। सोलह में मुगल शासक औरंगजेब आधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे आज के ही दिन। 1944 में रोम मित्र सेनाओं के कब्जे में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान की नाजी तिकड़ी वाले देशों की राजधानियों में से मित्र सेनाओं के कब्जे में आने वाले रोम पहला शहर था। डेनमार्क में आज के ही दिन नया संविधान लागू हुआ था और 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए 5 जून साल 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की और पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 को। तो ये थी 5 जून की खासियत इतिहास के पन्नों में। श्रोताओं, अब इसी के साथ ही कार्यक्रम को संपन्न करने का समय हो चला है। अपनी दोस्त शिखा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी

0: भगवान से डरूं, मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PSC, SDRF और UPSSF के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्य योजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
3: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। तो नए चैलेंजेस हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी PSC, SDRF और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, प्रशिक्षण और संरचना विकास एवं भावी कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जाए और सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाया जाए। श्री योगी ने महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से

0: सी की महिला बटालियनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर स्थित महिला पीएसी बटालियन परिसरों में क्रमशः वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना उदा देवी और वीरांगना झलकारी बाई की अश्वरोही प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आगामी मानसून के दृष्टिगत बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीआरएफ को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खोज एवं बचाव कार्यों के लिए ह्यूमन लिफ्टिंग ड्रोन की उपयोगिता पर विचार करने को कहा। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पर्यटन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की।
2: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रदेश है। बैठक में भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन की भी समीक्षा की गई। श्री योगी ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर हैं। पर्यटन नीति 2022 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेश, नवाचार और अनुभव आधारित पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाया जाए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में पौधारोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। दौरे के पहले दिन वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है।
4: रक्षा मंत्री आज पूर्वाहन 11:05 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अपराह्न 12:15 विश्व पर्यावरण दिवस पर कैंट स्थित कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ माँ के नाम रोपित करेंगे। अपराह्न 12:40 पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के आवास पहुंचकर उनके पति के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। शाम को 4 बजे दिलकुशा लॉन में आयोजित बायो युग ग्रीन कमांड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रतिभाग करेंगे। 6 और 7 जून को भी श्री सिंह लखनऊ में विभिन्न लोगों से मुलाकात करेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करने के साथ प्रबुद्ध नागरिकों से भी मिलेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया हो। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
5: 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और

0: ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिससे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें ऐसी छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्ययोजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे बायोयुग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए या धीमे से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायन। कलाकार हैं देवाशीष डे, राग है देसी। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं सिद्धार्थ चक्रवर्ती।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे देवाशीष डे का गायन। राग था देसी, आपके साथ तबले पर संगति थी सिद्धार्थ चक्रवर्ती की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में

0: आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान निक्षय नेतृत्व हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
3: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
2: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं।

0: डाल दी। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ।

0: पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है। किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है। सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन। पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है। क्या हम सुन रहे हैं? पहले मौसम बदलता था, अब बिगड़ता है। प्रकृति से सिर्फ लिया, कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
3: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the four-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej and Sarigam GIDC, modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
2: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yog and promote healthier lifestyles across communities.
4: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान

किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के

0: The cost of achieving net zero emissions by 2070 is estimated at $10.1 trillion, nearly three times India's current GDP. And finally, in what climbers are calling a miracle, 52-year-old Sherpa guide, who was presumed dead at Mount Everest after he vanished during descent on May 29th, was found alive 6 days after base camp, reports the Times of India under the headline, Sherpa survives six-day Everest ordeal, sans food, oxygen. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yoga Asan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। उन्होंने भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार करार दिया है। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सूरत जा रहे हैं, जहां वो सड़कों, बिजली और सनती शोबों में 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। जनाब मोदी पहले हाजिरा जाएंगे और सनती और बुनियादी ढांचे के मौजूदा प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दोपहर को एक बड़े जलसायाम से खिताब करेंगे। जना मोदी शाम को दमन जाएंगे और तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इलाकाई बुनियादी ढांचे को खास तौर से फरोग देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 8 लेन वाले वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वज़ीर-ए-आज़म कबायली खित्तों और मुजस्मा इत्तेहाद तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए कौमी शाहरा 56 पर अहम हिस्से को 4 लेन बनाने का संगे बुनियाद भी रखेंगे। अवामी फलाह बहबूद की खातिर वो सूरत में एक जदीद 200 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल का भी इफ्तिताह करेंगे, जो 24 घंटे इमरजेंसी और ट्रामा खिदमात फराहम करेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ अहम और सनती बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों का भी आगाज किया जाएगा, जिनमें गुजरात में तरसीली निज़ाम की तौसी और वलसाड़ में बिजली की तकसीम की जदीद कारी शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो जब अपने अपने वतन वापस जाएं तो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफीर बने। अहमदाबाद में चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आयुष की वजारत ने योग के साथ पूरे साल सरगर्मियों की हौसला अफजाई करने और सभी तबकों में सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए योग 365 का आगाज किया है।
4: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में

0: योगा 365 के एम्बेसडर बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: वजीर आजम ने कहा कि ये चैंपियनशिप खेल मुकाबले से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर है और इससे दुनिया भर में योग के वसीतर पैगाम की तशहीर का मौका फराहम हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में माली पॉलिसी कमेटी की जानिब से किए गए फैसलों का ऐलान करेंगे। 6 अरकान पर मुश्तमिल माली पॉलिसी कमेटी ने बुध के रोज 3 रोजा तबादला ख्याल का सिलसिला शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी अहम पॉलिसी शरह में कोई तब्दीली नहीं की थी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: सरकार ने अफराद दर की शरह पर मबनी अशिया सारफीन की कीमतों का इशारिया 4% तय किया है। मरकजी बैंक के लिए इसकी बालाई हद 6% और निचली हद 2% रखी गई है। अप्रैल के महीने में अशियाए सारफीन की कीमतों का इशारिया मामूली बढ़कर 3.48% हो गया और ऐसा सोने और चांदी के जेवरात के साथ साथ रसोई की कुछ अशिया की कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ। चूंकि अशियाए सारफीन की कीमतों का इशारिया तय की गई हदूद के अंदर है, लिहाजा इक्तसादी माहिरीन ये उम्मीद कर रहे हैं कि अहम शरह सूद 5.25% की सतह पर ही बरकरार रहेगी। उनका यह भी कहना है कि मगरबी एशिया महास आरआई की वजह से इफरात जर की शरह और माशी तरक्की को लाहिक चैलेंजेस के तनाजुर में रिजर्व बैंक मोहतात रवैया अख्तियार करेगा। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। वो 97 साल के थे और तवील अरसे से बीमार थे। डॉक्टर कश्यप साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली आला सतह की उस कमेटी में शामिल थे जो एक साथ इंतखाबात कराए जाने के बारे में कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए तश्कील दी गई थी। वो 1983 से लेकर 1990 तक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फायज रहे। डॉक्टर कश्यप 100 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ थे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने उनके इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि डॉक्टर कश्यप ने अपने मुताले इल्म तसानीफ और अवामी खिदमत के जरिए भारत के आईन और पार्लियामानी जमहूरियत की सूझबूझ के सिलसिले में गरां कदर रोल अदा किया। तकर्रियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर तरुण कपूर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुशीर की हैसियत से मुद्दत कार में 1 साल की तौसी को मंजूरी दे दी है। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि वजीर आजम के दफ्तर में जनाब कपूर की तौसी शुदा मुद्दत कार 1 साल के लिए इस माह की 10 तारीख से शुरू होगी। तकर्रियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने वाशिंगटन में आलमी बैंक हेडक्वार्टर में नीलकंठ मिश्रा की बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तकर्री को मंजूरी दे दी है जिसकी मुद्दत कार 3 साल होगी। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि जब तक नए अहदेदार जिम्मेदारी नहीं संभालते हैं तब तक परमेश्वरन अय्यर की मुद्दत कार में तौसी भी दी गई है। आंध्र प्रदेश में एनडीए इत्तेहाद ने राज्यसभा की 4 खाली सीटों में से 3 तेलुगु देशम पार्टी को और 1 जनसेना पार्टी को देने का फैसला किया है। कल रात अमरावती में एनडीए के इत्तेहादियों के साथ मीटिंग के बाद वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का ऐलान किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रूस की कलीदी साझेदारी की स्ताइश की है और जोर देकर कहा है कि रूस के साथ अपना इश्तराक कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने की मगरबी मुल्कों की कोशिशें लाहासिल हैं और इनसे आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच रहा है। सरकर्दा आलमी खबर रसा एजेंसियों के सरबराहों के साथ गुफ्तगू में सदर पुतिन ने भारत की मुआशी तरक्की और उसकी आजादाना खारजा पॉलिसी को सराहा और कहा कि रूस भारत के साथ अपने इक्तसादी राब्तों को वसत देने का पाबंद है। सदर पुतिन ने कहा कि भारत की मुआशी तरक्की उस मेहनत का नतीजा है जो भारत सरकार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कर रही है। रूस के सदर ने यह भी कहा कि अमरीका के साथ भारत के सिफारती राब्तों से रूस के साथ वक्त की कसौटी पर खरे उतरने वाले उसके रिश्तों में कोई खलल नहीं पड़ता और ना ही ये कमजोर होते हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार मानता है और किसी दूसरे मुल्क के साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात की वजह से किसी तरह के मनफी मुजमरात की कोई बात

0: नहीं है। सदर पुतिन ने मजीद कहा कि भारत एक अजीम मुल्क और अजीम जमहूरियत है और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को वसअत देता रहेगा। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुरे अर्ज पर जिंदगी बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की खातिर माहौलियात से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: फितरत और कुर्राए अर्ज के तहफ्फुज़ के लिए माहौलियात के एतबार से मुस्बत इकदामात करने के लिए बेदारी बढ़ाने की खातिर ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत कौमी राजधानी में मैदान गढ़ी के मकाम पर नमो ऑक्सीजन पार्क में दरख्त लगाने के लिए एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ रियासतों में कई मरकजी वजीर, वज़राए आला, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली माहौलियात के आलमी दिन की तकरीबात में शामिल होंगे। मुख्तलिफ मुहिम, तकरीबात और इकदामात के जरिए ये दिन लोगों और मुख्तलिफ तबकों को इस बात की तरगीब देता है कि वो पायदार मुस्तकबिल की खातिर माहौलियाती चैलेंजों से निमटने के लिए तब्दीलियाँ करें। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने सभी की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो ज्यादा साफ, ज्यादा सरसब्ज व शादाब और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल के लिए काम करें। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने सभी लोगों पर जोर दिया है कि वो आबोहवा और मुस्तकबिल की खातिर फितरत से तहरीक हासिल करते रहने के अहद का इयादा करें। जम्मू कश्मीर के भदरवा में कल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह दो रोजा लेवेंडर फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे, जिसका मौजू लेवेंडर गोज ग्लोबल है। चौथा लेवेंडर फेस्टिवल 6 और 7 जून को डोडा जिले के भदरवा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक्किद किया जा रहा है। CSIR IIIM की जानिब से मुनक्किदा इस फेस्टिवल का मकसद जम्मू कश्मीर में पर्पल इनकलाब और लेवेंडर पर मबनी देही कारोबार की मुसलसल कामयाबी का जश्न मनाना है। समुद्री अशिया की बरामदात पर दो रोजा कौमी वर्कशॉप आज से विशाखापट्टनम में शुरू हो रही है, जिसका मकसद भारत की समुद्री अशिया की बरामदात में इजाफा करना और मुल्क भर में इस शोबे को मुस्तहकम करना है। इस वर्कशॉप में बेहतर बुनियादी ढांचे, कदर में इजाफे और पॉलिसी मदद के जरिए समुद्री अशिया की बरामदात में बेहतरी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साहेली कर्नाटक, केरलम, माहे, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और क्राइकल के हिस्सों में दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश का भी इम्कान है। मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्से, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार जजायर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में भी आज बारिश हो सकती है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान आज साहली आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहेगा। आज जापान के ककामी गहारा स्टेडियम में 18 साल तक की उम्र के मर्दों के एशिया कप के हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। पूल ए में 9 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन हासिल करने के बाद भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है। भारतीय टीम का ग्रुप मरहले का आखिरी मैच चीनी ताइपे के साथ था, जिसे उसने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 13-1 से जीता था। भारतीय टीम को सिर्फ जापान के हाथों शिकस्त का सामना हुआ था। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम फाइनल में या तो जापान या पूल बी की सबसे ऊपर रहने वाली टीम का मुकाबला करेगी। खवातीन के अंडर 18 एशिया कप में भारतीय टीम ग्रुप मरहले में कोई भी मैच न हारने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है और आज भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे उसका चीन से मुकाबला होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्शुमंद अली खान।
2: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, वेनेजुएला की कारगुजार सदर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम आज गुजरात दादर नगर हवेली में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने सफाए अव्वल पर जगह दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का यह बयान भी नुमाया अहमियत के साथ शाये हुआ है कि खुद की फालत की

0: लिए मुतबादिल तवानाई जरूरी है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के तआवुन से बने डिजिटल पोर्टल का ऐलान। मगरबी बंगाल की कानून साज असेंबली ने कौमी ई विधान एप्लीकेशन के निफाज के लिए मुफाहमत पर दस्तखत किए। कुछ बैन अलावा खबरें इस तरह से हैं। अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप की आमरीत को रोका। तुर्की और सऊदी अरब की आबनाए हुरमुस के मुतबादल के तौर पर रेल रूट पर गुफ्तगु।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की योगा 365 मुहिम के सफीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमरीका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम मधुरिमा आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
3: चेक जाना पड़ेगा।
4: अरे गेम छोड़ के
3: एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है, कंप्लेंट करनी है।
4: अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ओम्बड्समैन को।
3: कैसे?
4: RBI अधिकृत बैंक NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
8: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
8: बुकिंग है तो संपर्क करें
10: 0542227658
11: 0542227658।

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हूँ, सभी निरोगी हूँ, सभी का जीवन मंगलमय हो और सभी केवल शुभ एवं अच्छाई को देखें और कोई भी दुख का भागी ना बने। इस भावना के साथ स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मधुरिमा में और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त दीप्ति श्रीवास्तव। आप सोच रहे होंगे कि आज मधुरिमा में ये श्लोक कैसा, तो वो इसलिए क्योंकि आज है 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस और ये जो हमारा पर्यावरण है ना, वो किसी एक विशेष क्षेत्र या देश विशेष की सीमा में नहीं होता, ये तो हमारी संपूर्ण पृथ्वी का होता है जिसमें हम सभी पृथ्वीवासी रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरा ये श्लोक बताता है कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है और इसके पर्यावरण को संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी।

दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में पर्यावरण के संरक्षण एवं लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 से हुई। ये दिवस ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करता है, पर ये दिवस अब हमारी जरूरत है। पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। यानी इसका सीधा सा मतलब, अब बातें करने का वक्त निकल चुका है, अब हमें काम करना होगा, क्योंकि पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण,

दोस्तों, आपको याद है कि आखिरी बार कब आपने किसी पेड़ की छांव में ठंडी हवा का आनंद लिया था, या कब सुबह सुबह चिड़ियों के चहचहाने से आपकी नींद खुली थी? कंक्रीट के इस जंगल में हम सब इतने व्यस्त हैं कि असली जंगल, नदियाँ और शुद्ध हवा हमसे दूर होती जा रही है। इस दिवस पर सिर्फ एक पौधा लगाने से क्या हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? उस पौधे को संरक्षित करना, उसे पानी देना, उसे बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है।

0: मधुरिमा में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं

हैं कि अकेले मेरे बदलने या मेरे प्रयास करने से क्या होगा, लेकिन बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर हम पानी की बचत करें, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, बिजली आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करें, अपनी नदियों में अपनी तरफ से कोई कचरा न डालें, साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, कम से कम वर्ष में एक पौधा लगाएं और उसे संरक्षित करें, यकीन करिए आपका ये छोटा सा कदम औरों को भी प्रेरित करेगा।

दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर पूरे के पूरे जंगल खड़े कर दिए। तो चलिए आज इस पर्यावरण दिवस पर खुद से एक छोटा सा वादा करें।

कि पृथ्वी को अपनी तरफ से हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। पर्यावरण के संरक्षण में ये आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

छोटे छोटे प्रयासों से हम सब मिलकर अपनी धरती को एक लंबी उम्र दे सकते हैं, क्योंकि पंछी, नदियाँ, पवन किसी देश की सीमा में बंधे नहीं होते। तो आज का मधुरिमा का ये सफर अब यहीं तक। अब मुझे यानी अपनी दोस्त दीप्ति को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
1: राम मंदिर परिसर स्थित नवनिर्मित मां भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंबरा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच धन ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ ही मात्र शक्ति भी मौजूद रहीं। दोनों साध्वियों ने इसे राम मंदिर आंदोलन के लंबे संघर्ष, त्याग और सनातन स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया। ध्वजारोहण के साथ पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। रामनगरी अयोध्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी सौगात दी है। जिले के मौसीवाला क्षेत्र में 17.72 करोड़ रुपए की लागत से लौकुश पार्क विकसित किया जाएगा। कचरे से कला थीम पर बनने वाले इस पार्क में स्क्रैप सामग्री से रामायण के प्रमुख प्रसंगों को 3D इंस्टॉलेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। आधुनिक साउंड लाइट शो, डिजिटल तकनीक और इंटरएक्टिव मॉडल के जरिए श्रद्धालु रामायण काल के विभिन्न प्रसंगों से साक्षात कर सकेंगे। पार्क में आकर्षक उद्यान, वॉकवे, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि
2: अयोध्या नगर निगम के द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी अंतर्गत 17.72 करोड़ का लकुश पार्क बेस्ट वंडर पार्क स्वीकृत हुआ है।
1: अयोध्या में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। सिविल लाइन ईदगाह सहित सभी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज सकुशल संपन्न हुई। DM शशांक त्रिपाठी और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी की। सुरक्षा व्यवस्था के तहत ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। नमाज के दौरान देश दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी गई। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अयोध्या में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और नकल विहीन बताया। मंत्री ने कहा कि करीब 54 लाख विद्यार्थियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में हिस्सा लिया और पूरे प्रदेश में कहीं भी पेपर लीक जैसी घटना सामने नहीं आई। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड के 7वें बैच के 835 अग्निवीरों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में कदम रखा। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण अवधि में जवानों को आधुनिक युद्ध कौशल, शारीरिक दक्षता और सैन्य मूल्यों का प्रशिक्षण दिया गया। परेड की समीक्षा ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने की और जवानों के उज्जवल भविष्य की कामना। ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने कहा,
3: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में ज्वाइन करेंगे।
1: अयोध्या नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। राम की पैड़ी और नया घाट से अभियान का शुभारंभ हुआ। नगर निगम क्षेत्र के लगभग 400 स्थानों पर एक साथ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों सफाई कर्मियों और सभी वार्डों के पार्षद शामिल हुए। नगर निगम ने शहर वासियों से भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आह्वान किया कि निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में इक्ष्वाकु वंश की विशेष हाईटेक गैलरी बनाई जाएगी। डिजिटल तकनीक के माध्यम से भगवान श्री राम की 63 पीढ़ियों का इतिहास दर्शाया जाएगा। दर्शक डिजिटल प्रतिकृतियों के जरिए राजाओं के

शासनकाल, धार्मिक महत्व और वंश परंपरा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह गैलरी नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। राम मंदिर निर्माण के बाद अब अयोध्या में निवेश का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। अमिताभ बच्चन के बाद अब अभिनेता रणबीर कपूर ने भी विगत दिन तिहरा मांझा क्षेत्र में 2.42 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। बताया जा रहा है कि यह भूखंड राम मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे अयोध्या में रियल इस्टेट और निवेश गतिविधियों को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गंगा दशहरा और बड़े मंगल के अवसर पर अयोध्या के सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान कर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन स्नान और पूजा करने से पापों का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है।

0: और पूजा करने से पापों का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। पर्व को लेकर घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी करता रहा। अयोध्या में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर जल प्याऊ और ORS वितरण के केंद्र स्थापित किए गए हैं।
1: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग लाइंग ने गौतम बुद्ध नगर के NTPC लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च एलायंस का दौरा किया, जिसमें म्यांमार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। इस मौके पर NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह तथा NTPC नेट्रा के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति एवं प्रतिनिधि मंडल को NTPC की विकास यात्रा म्यांमार में कंपनी की पूर्व गतिविधियों तथा वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने वाली अनुसंधान नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहलों के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिनिधि मंडल ने नेट्रा की अत्याधुनिक इन हाउस पायलट सुविधाओं का भी अवलोकन किया, जिसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ग्रीन हाइड्रोजन हब तथा कृषि एवं नगर ठोस अपशिष्ट गैसीकरण से विद्युत संयंत्र शामिल था। राष्ट्रपति ने NTPC की स्वच्छ ऊर्जा पहलों में विशेष रुचि दिखाई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा स्थित बैटरी पुनर्चक्रण एवं महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र की कंपनी लोहम के अत्याधुनिक संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी की तकनीकी क्षमताओं, बैटरी रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं और भारत में हरित ऊर्जा एवं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की सराहना की। दौरे के दौरान मंत्री ने लिथियम आयन बैटरी के पुनर्चक्रण, महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी तथा ऊर्जा भंडारण समाधानों से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों, उत्पाद क्षमता और भविष्य की विस्तार योजनाओं की जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बैटरी रिसाइकलिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति देश की आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नवाचार आधारित कंपनियां भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। दौरे में मंत्रालय और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी आपूर्ति श्रृंखला तथा उभरती प्रौद्योगिकी के विकास पर भी चर्चा हुई। गर्मी की छुट्टियों में जनपद गौतम बुद्ध नगर में बच्चों में शिक्षा के साथ खेल प्रतिभा को निखारने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन कर युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। जिलाधिकारी ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि शतरंज मानसिक विकास, धैर्य, एकाग्रता एवं रणनीतिक सोच को विकसित करने वाला महत्वपूर्ण खेल है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों से खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी दिनों में अलग अलग स्थानों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
3: इस गर्मियों की छुट्टियों में विभिन्न हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट द्वारा अरेंज किए जा रहे हैं एंड सभी बच्चे आमंत्रित हैं। पूरे गौतम बुद्ध नगर के सभी बच्चों के लिए काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हैं एंड पार्टिसिपेट करें एंड इसमें गर्मी का भी विशेष रूप से हम लोगों ने ध्यान रखा है।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की FCOM होल्डिंग लिमिटेड और एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी हुई। इस समझौते के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर कार्गो संचालन को विकसित और विस्तारित किया जाएगा, जिससे उत्तर भारत में एयर कार्गो कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस साझेदारी के तहत AFCOM अपने मालवाहक विमानों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेस करेगा और यहां से फ्रेटर सेवाओं का संचालन करेगा। इससे एयरपोर्ट को उत्तर भारत के प्रमुख लॉजिस्टिक और कार्गो हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। समझौते के दायरे में तीनों संस्थाएं मिलकर संभावित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पहचान करेंगी और कार्गो मांग एवं फ्लो के आधार पर मजबूत नेटवर्क प्लान तैयार करेंगी। साथ ही परिचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं के समन्वय के साथ संयुक्त मार्केटिंग रणनीति भी बनाएंगी, ताकि एयर कार्गो संचालन को दीर्घकालिक मजबूती और स्थिरता मिल सके। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मुख्य परिचालन अधिकारी किरण जैन ने कहा कि यह साझेदारी एयरपोर्ट पर मजबूत एयर कार्गो इकोसिस्टम तैयार करने

0: उन्होंने कहा कि समर्पित फ्रेटर संचालन और उद्योग भागीदारों के सहयोग से क्षेत्र की कार्गो क्षमता को बढ़ावा मिलेगा तथा उत्तर भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना लंका सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार संध्या तिवारी, पुत्री उपेंद्र तिवारी नगवां थाना लंका जनपद वाराणसी की निवासी हैं। संध्या तिवारी की उम्र 18 वर्ष, लंबाई 162 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ एवं चेहरा लंबा है। ये दिनांक 21 मार्च 2026 को घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं और लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने बैगनी रंग की टी शर्ट और भूरे रंग की लोअर पहनी थी। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना लंका जनपद वाराणसी को सूचित करें। थाना अलीनगर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार गुंजा कुमारी, पुत्री राजनाथ, वार्ड नंबर 3 नई बस्ती थाना अलीनगर जनपद चंदौली की निवासी हैं। गुंजा कुमारी की उम्र 20 वर्ष, लंबाई 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा एवं चेहरा गोल है। ये दिनांक 8 मई 2026 सुबह 7 बजे से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने काला जीन्स एवं काले व सफ़ेद रंग की कुर्ती पहनी थी। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना अलीनगर जनपद चंदौली को सूचित करें।

0: थाना चकरघट्टा, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार रामदैया पत्नी जगन्नाथ, ग्राम पटना, थाना रामपुर बरकुनिया, पोस्ट सिलथम, जनपद सोनभद्र की निवासी हैं। रामदैया की उम्र 54 वर्ष, लंबाई 5 फिट, रंग सांवला एवं चेहरा लंबा है। विशिष्ट पहचान, ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। ये दिनांक 9 मई 2026 लक्ष्मणपुर चकरघट्टा चंदौली से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नजदीकी थाना अथवा थाना चकरघट्टा जनपद चंदौली को सूचित करें। खोई व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी।

0: सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉनस्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: सुनते हैं बदलता मौसम बढ़ती बीमारियों के मुतालिक गुफ्तगु। आज के मेहमान हैं डॉक्टर जगदम्बा दुबे और डॉक्टर मोहम्मद अहमद। समनुदेशिती है सैयद मोहम्मद उमैर की। आइए सुनते हैं
1: आज की उर्दू बज्म लेकर मैं आपका मेजबान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामिन, बदलते मौसम के साथ इंसानी सेहत पर मुख्तलिफ असरात मुरतब होते हैं। कभी शदीद गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश और कभी हवा में बढ़ती आलूदगी मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देती है। मौजूदा दौर में मौसमी तब्दीलियाँ न सिर्फ माहौल बल्कि इंसानी जिंदगी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही हैं। नज़ला, जुकाम, बुखार, डेंगू, मलेरिया, एलर्जी और सांस की बीमारियां ऐसे ही मसाइल हैं जो मौसम की तब्दीली के साथ तेजी से फैलते हैं। दोस्तों, आज की मसरूफ तर्ज जिंदगी में लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में गफलत बरतते हैं, जिसके नतीजे में बीमारियां ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक मुतवाजिन गिजा, सफाई, मुनासिब लिबास, साफ पानी का इस्तेमाल और बर वक्त इलाज ऐसी एहतियातें हैं जो मौसमी बीमारियों से बड़ी हद तक महफूज रख सकती हैं। इसी के पेश नज़र आज हमने अहतमाम किया है एक मुबाहिसे का। मौजू है क्लाइमेट चेंज, बदलता मौसम, बढ़ती बीमारियां। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज की उर्दू बज़्म में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर जगदम्बा दुबे साहब, जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब और नाचीज सैयद मोहम्मद उमैर। हम सबसे पहले अपने दोनों खसूसी मेहमान का आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब बगैर किसी तमीद व ताखिर डॉक्टर जगदम्बा दुबे साहब से सवाल है। दुबे साहब, मौसमी तब्दीली के मद्देनज़र स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और दफातर में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, इस पर हमारे सामीन के लिए वजाहत फरमाएं।
2: बहुत शुक्रिया। मौसम में तब्दीली के वक्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दफ्तर में खुसूसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना बहुत ज़रूरी
1: जी।
2: सबसे पहले सफाई पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। कमरों में मुनासिब रोशनी हो और हवा के आने जाने का इंतज़ाम होना चाहिए। पीने के लिए साफ पानी मुहैया किया जाए और हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइज़र की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। तलबा और मुलाजमीन को ज़ाती सफाई बरकरार रखने की तरगीब दी जानी चाहिए। बीमार अफराद को आराम करने और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से मशवरा लेने की सहूलत दी जानी चाहिए। वक्तन फवक्तन सेहत से मुतालिक आगाही प्रोग्राम भी मुनक़द किए जाएं ताकि लोग बदलते मौसम में एहतियात कर सकें। इसके साथ ही साथ तलबा खूब पानी पिएं और घर से निकलते वक्त पानी की बोतल साथ रखें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सादे पानी के अलावा नींबू पानी, नारियल पानी या ORS का इस्तेमाल करें। हल्का और ताज़ा खाना खाएं, तला भुना या बासी खाने से परहेज करें।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा कह रहे हैं कि आप मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए तालीमी इदारों और दफातीर में सफाई, साफ पीने का पानी, मुनासिब वेंटिलेशन, हाथ धोने की आदत और बीमार अफराद को आराम की सहूलत फराहम करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन तमाम चीज़ों का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाए। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर अहमद साहब से एक सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे सामीन को आप ये बताएं कि मौसम की तब्दीली के साथ कौन कौन सी बीमारियाँ आम तौर पर ज़्यादा फैलती हैं, इस पर आप क्या कहते हैं?
3: हम एक बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर तरह के मौसम होते हैं।

0: आड़ा गर्मी बारिश, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ ऐसे कोई मौसम नहीं होते। किसी के यहाँ हमेशा जाड़ा पड़ता है, किसी के यहाँ गर्मी पड़ता रहे, और किसी के यहाँ हमेशा बारिश होती रहती। लेकिन यह हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम लोगों ने ऐसे मुल्क में जन्म लिया जहाँ हर तरह का मौसम है। लेकिन इसमें इस फायदे के साथ कुछ परेशानियाँ भी हो सकती है। जब एक मौसम खत्म होने वाला होता है और दूसरा मौसम आने वाला होता है, तब वातावरण में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो बीमारियां पैदा कर सकते हैं। जैसे वायरल फीवर है,
1: जी
0: या चिकनगुनिया है,
1: जी
0: या मलेरिया है। ये सब ऐसे बीमारियां हैं जो बदलते मौसम के साथ साथ अपने उरूज पे आ जाते हैं।
1: बहुत अच्छा कहने आप कि मौसमी तब्दीली के साथ नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, एलर्जी, डेंगू, मलेरिया आपने अभी बताया, और सांस की बीमारियां जैसी बीमारियां आम तौर पर फैलती नजर आती हैं जैसे ही मौसम तब्दील होता है। मौसम की तब्दीली में जरूरत इस बात की है कि पहले से इंसान थोड़ा सा एहतियात बरते और इन तमाम चीजों के बचाव के लिए अपनी कोई भी तदबीर पहले से इख्तियार करे या जहन को पहले से तैयार रखे। बहुत अच्छा आपने बताया। एक सवाल दुबे साहब से करेंगे। दुबे साहब, शहरी आबादी में इजाफा और तेजी से बढ़ती तामीरात के दरमियान सड़कों के किनारे घने दरख्त लगाने, पार्कों की तामीर और छतों पर बागबानी की कितनी अहमियत है मौजूदा दौर में, इस पर आप क्या कहते हैं?
2: बढ़ती हुई शहरी आबादी और तेजी से होने वाली तामीरात के बाइस
1: जी
2: हरियाली कम होती जा रही है।
1: जी
2: ऐसे में सड़कों के किनारे घने दरख्त लगाना, पार्क बनाना और छतों पर बागबानी कराना बेहद ज़रूरी है।
1: जी
2: दरख्त माहौल को साफ रखते हैं, ऑक्सीजन फराहम करते हैं और दर्जे हरारत को मतवाजन रखते हैं।
1: जी
2: पार्क लोगों को वर्जिश और जहनी सुकून का मौका देते हैं। छतों पर बागवानी से घरों का दर्जे हरारत कम रहता है और माहौल खुशगवार बनता है। दरख्त के साए से डामर की सड़कें कम गर्म होती हैं और अर्बन हीट का असर कम होता है। इसके साथ ही साथ दरख्त धूल, मिट्टी और जहरीली हवाओं को सोख लेते हैं। ये दरख्त काफी हद तक गाड़ियों के शोर को भी कम करते हैं और ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हवा में नमी बनाए रखते हैं। सड़क के किनारे कतार में लगे दरख्त पैदल और साइकिल से चलने वालों को धूप और बारिश से भी बचाते हैं।
1: बहुत अच्छा कहा आपने कि दरख्त, पार्क और छतों पर बागबानी माहौल को ठंडा रखने, आलूदगी कम करने, ऑक्सीजन बढ़ाने और अवामी सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लिहाजा खूब ज़्यादा दरख्त लगाएं और छतों के ऊपर बागबानी की जा सकती है। यहाँ पर एक सवाल डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि घरेलू टोटके बहुत होते हैं, बीमार कोई पड़ गया तो कोई ना कोई टोटका इख्तियार कर लिया, तो ऐसे में देसी इलाज और घरेलू टोटके मौसमी बीमारियों में मौसे साबित हो सकते हैं या डॉक्टर्स हजरात से रुजू करना बहुत जरूरी है, इस पर आप क्या कहते हैं?
0: जब मौसम बदल रहा होता है तब उस वक्त हम लोगों को बहुत परहेज करने की ज़रूरत है। किसी ने कहा है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो हम अपने आप की अंदर की इम्यूनिटी को इतनी मजबूत कर दें कि किसी भी तरह की बीमारी के लिए कोई बैक्टीरिया या वायरस जो है हमारे अंदर आ ही ना पाए। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को हाइड्रेट करें, पानी खूब पिए और खाना एक वक्त में ज़्यादा खाने के बजाय कई बार में थोड़ा थोड़ा करके खाएं, और पीने के लिए साफ पानी और खाने में सलाद का इस्तेमाल जरूर करें। सलाद और हरी सब्जियों का इस्तेमाल, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। और इसके साथ साथ नींबू पानी का भी इस्तेमाल करें और इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी ये एक देसी इलाज है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और अगर बीमारी आ ही जाती है तो उसके लिए आप डॉक्टर से रابطہ कायम करें।
1: बहुत अच्छा कहा आपने कि मामूली मौसमी बीमारियों में बाज घरेलू टोटके फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन शदीद अलामात, मुसलसल बुखार या सांस की तकलीफ की सूरत में डॉक्टर्स से रुजू करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस तरफ तवज्जो देने की खास जरूरत है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आज के वक्त में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो एक सवाल आपसे इसी के ताल्लुक से करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसानात और बढ़ते हुए प्लास्टिक के कचरे के पेश नज़र आम इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे कौन से इकदाम कर सकता है जिनसे इन कचरों की रोकथाम मुमकिन हो सके, जैसे हम प्लास्टिक के बजाय कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं?
2: बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सिंगल यूज़ प्लास्टिक माहौल के लिए नहायत नुकसानदेह है
1: जी।
2: इससे ज़मीन, पानी और हवा आलूदा हो जाती है। आम इंसान कपड़े के थैले इस्तेमाल कर सकता है। प्लास्टिक की बोतलों की बजाय स्टील या शीशे की बोतलें इस्तेमाल कर सकते

0: सकता है और काबिले इस्तेमाल अशिया को दोबारा इस्तेमाल कर सकता है।
1: जी,
0: प्लास्टिक को इधर उधर फेंकने के बजाय मुनासिब जगह पर डालना चाहिए। ये हजारों साल तक मिट्टी में नहीं सड़ता और जस का तस बना रहता है। इसको जलाने से जहरीली गैस निकलती है। प्लास्टिक के टुकड़े मिट्टी में पानी और हवा के बहाव को रोकते हैं।
1: जी,
0: सिंगल यूज प्लास्टिक के बारीक जर्रे खाने और पानी के जरिए हमारे जिस्म में भी दाखिल हो रहे हैं, जिससे गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। अगर हर फर्द अपनी रोजमर्रा आदत में मामूली तब्दीली लाए तो प्लास्टिक के कचरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
1: बहुत अच्छा कहा डॉक्टर साहब आपने कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी, कपड़े के थैलों का इस्तेमाल, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग और गैर जरूरी प्लास्टिक अशिया से गुरेज कचरे की रोकथाम में मददगार साबित हो सकते हैं। लिहाजा इस तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत उम्दा आपने बात कही। एक सवाल डॉक्टर साहब से करेंगे, डॉक्टर अहमद साहब, के फिजाई आलूदगी और माहौलियाती तब्दीली मौसमी बीमारियों में किस हद तक इजाफा कर रही है? नीज बदलते मौसम में पानी और गिजा की सफाई कितनी अहमियत रखती है, इसकी वजाहत फरमाएं।
2: भारत एक ऐसा देश है जिसकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और कुछ ही सालों में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब रहने की जगह तो सीमित है, लेकिन उस जमीन को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन रहने के लिए पेड़ पौधों को कटाई की जा रही है, जिससे पेड़ पौधे की आप संख्या कम होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक प्रमुख पॉल्यूटेंट है हवा में पाया जाने वाला, और ये जो पेड़ पौधे होते हैं तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वातावरण जो सही होता है, वातावरण में प्योरिटी होती है। और पेड़ पौधों की कटाई होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वातावरण का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए अगर हमें इससे पर होना है तो हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे।
1: बिल्कुल, तो फिजाई आलूदगी और माहौलियाती तब्दीली सांस और एलर्जी की बीमारियों में इजाफा करती हैं, जैसे अभी आपने कहा, जैसे कि पेड़ पौधों का भी डॉक्टर साहब ने तस्करा किया। तो एक सवाल डॉक्टर तोफे साहब से करेंगे कि ऐसे कौन से दरख्त और पौधे हैं जो साया फराहम करने के साथ साथ फिजाई आलूदगी को कम करने में भी मौसर साबित होते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं?
0: बहुत उम्दा सवाल किया आपने। नीम, पीपल, बरगद, अशोक, तुलसी, एलोवेरा और अमलतास जैसे दरख्त हवा को साफ करने में बहुत मोसिर हैं।
1: जी,
0: नीम अपनी दवाओं जैसी खसूसियात के लिए मशहूर है, तो पीपल और बरगद ज्यादा मकदार में ऑक्सीजन फराहम करने के लिए मशहूर है।
1: जी,
0: तुलसी न सिर्फ माहौल को साफ करती है बल्कि सेहत के लिए भी फायदा मंद है। एलोवेरा कम धूप वाली जगह पर अच्छी तरह पनपता है और घर के टेम्परेचर को कम रखता है। इसके जेल को इस्तेमाल करने से जिस्म और बालों के लिए मुफीद है। इसी तरह पुदीना के पत्ते का इस्तेमाल हमारी सेहत को बेहतर रखता है और करी पत्ता का इस्तेमाल खाने का जायका बढ़ाने और अच्छी सेहत के लिए किया जाता है। इसलिए ये दरख्त हमारे लिए बेहद मुफीद है।
1: तो बहुत उम्दा आपने कहा कि नीम, पीपल, बरगद, अर्जुन, अशोक और दूसरे तमाम ऐसे दरख्त जिनके नाम अभी आपने लिए, साया फराहम करने में या फिजाई आलूदगी को कम करने में मौसर साबित होते हैं। लिहाजा इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना या इनको ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में बागबानी के लिए लगाना बहुत अहम साबित हो सकता है। अब यहाँ पर एक आखिरी सवाल डॉक्टर अहमद साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम के पेश नजर हमारे सामीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो बदलते मौसम में अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सके?
2: इस बदलते मौसम में अपने आप को चुस्त और दुरुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए हमें खान पान और अपने आसपास की साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, और हमारी इम्यूनिटी जो है मजबूत रहे, और जो वेक्टर हैं जैसे डेंगू है और मलेरिया है, जहाँ पे ये इनका रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद अंडे जो देती है ये पानी में देती है, और अपने घर के आसपास पानी को ना इकट्ठे होने दिया जाए। जैसे कूलर में पानी इकट्ठा है तो उसको हटा दे, या नाली है तो उसको साफ सफाई रखें, उसमें समय समय पे मिट्टी का तेल डालते रहे, जिससे इसके मच्छर के लार्वे जो है सांस नहीं ले पाएंगे और ये मर जाएंगे।
1: तो बहुत उम्दा आपने पैगाम दिया कि मौसम की तब्दीली के दौरान मुतवाजिन गिजा, मुनासिब पानी, सफाई, वर्जिश और बर वक्त तिब्बी मशवरे को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाए ताकि सेहतमंद रहा जा सके। और अब हम अपने दोनों खसूसी मेहमान जनाब डॉक्टर जगदम्बा दुबे साहब और जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब के बे इंतहा ममनून और मशकूर हैं कि आप हजरात ने हमारे सामईन के लिए बहुत ही उम्दा मालूमात फराहम

0: सामीन, अभी आप एक नात समात फरमा रहे थे। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अपने मेजबान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाजत, आदाब।
1: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम, आज की पेशकश थी आकाशवाणी लखनऊ की मरकज से। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब चलिए आपको लिए चलते हैं गांव।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लोक संगीत, बस इस छोटे से अंतराल के बाद।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
2: लोक संगीत में आज के कलाकार हैं सुदर्शन यादव और साथी। पहले सुनिए इनके स्वर में खेमटा।

0: अभी आपने सुना सुदर्शन यादव और साथी के स्वर में खेमटा। कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए इन्हीं के स्वर में लचारी।
1: मांगिया वाला चाट कार।

0: सुदर्शन यादव और साथी के गाय लचारी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। झंकार में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्यासा से। आवाज है मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं साहिल लुधियानवी और संगीतकार हैं ST वर्मन।
1: Yeah.

अब सुनिए शमशाद बेगम की आवाज़ में सीआईडी फिल्म से ये गाना। शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

अभी आपने सुना फिल्म पारस मणि से ये गाना लता मंगेशकर एवं मुकेश की युगल आवाजों में। गीतकार थे फारूक कैसर और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। झंकार में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म असली नकली से। आवाज है मोहम्मद रफी की, संगीत है शंकर शंकर जयकिशन का और गीतकार हैं हसरत जयपुरी।

0: झंकार में बाकी गीत आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। झंकार में अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में गबन फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

गीता दत्त की आवाज़ में अभी आपने सुना भाई भाई फिल्म का ये गीत। गीतकार थे राजेंद्र किशन और संगीत था मदन मोहन का। झंकार में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में तीसरी कसम फिल्म से ये गीत। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

बैठी बजवा दो कन्या आरे कपड़ा के सब।

आप सुनिए अलबेला फिल्म से ये गाना, आवाज़ है, आवाज़ और संगीत है सी रामचंद्र की, और गीतकार हैं राजेंद्र किशन।

झंकार में अगला गीत हमने लिया है फिल्म श्री 420 से। आवाज़ है मन्ना डे की, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: झंकार में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वक्त से। आवाज है मन्ना डे की, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म हम दोनों का ये गीत। शब्द रचना है साहिल लुधियानवी की और संगीत है जयदेव का।

अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म तीन देवियाँ से। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एस डी बर्मन।

झंकार का ये आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में फिल्म बरसात की रात से। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रोशन।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त तो होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स डीटीएच डीआरएम वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

0: कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: ये पौधे ये पत्ते
0: आज खास दिन है, विश्व पर्यावरण दिवस। इस मौके की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जिम्मेदारी का एहसास कि प्रकृति पर्यावरण के प्रति हम सभी सतर्क रहें, जागरूक रहें और ये मौसम ये पारिस्थितिकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे रूप में मौजूद रहे। तो पेड़ पौधों नदियों और प्रकृति के हर रूप की हिफाजत करें, उसकी अभिवृद्धि में सहायक हों, यही गुजारिश आपसे और स्वयं से भी। और अब आज का ये प्रोग्राम जो व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है, फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं, उपकार, सौदागर, जब याद किसी की आती है, अर्पण, दोस्ताना और हातिमताई। उपकार, सौदागर, जब याद किसी की आती है, दोस्ताना और हातिमताई। व्हाट्सएप नंबर हमारा आप जानते हैं 7905519981, 7905519981। उपकार, सौदागर, जब याद किसी की आती है, अर्पण, दोस्ताना और हातिमताई।

आज ये जो खास मौका है पर्यावरण दिवस का, अगर आप संदेश में उसके बारे में कुछ लिखेंगे तो वो भी कार्यक्रम में शामिल करके हमें खुशी होगी। यानी नाम थोड़े कम रहें और कुछ बातें हों तो और भी बेहतर। ये जरूर करें कि संदेश में एक ही स्थान के दो चार श्रोताओं के ही नाम लिखें ताकि गीत भी आप पूरे के पूरे सुन सके। शुरुआत में ही मैसेज भेज दें। बहुत सारे श्रोता बिल्कुल आखिरी 10 मिनट पहले संदेश भेजते हैं तो अंत का जो गाना होता है वो सुनवाने में असुविधा होती है, क्योंकि अगर नाम न पढ़े जाएं तो नाम छूट जाएंगे। इसलिए वक्त रहते यानी 11:30 तक अपने संदेश भेज दें, क्योंकि देश भर से बहुत सारे तादाद में संदेश आते हैं। एक बार ही संदेश भेजें, बिल्कुल अभी 2-4 मिनट ही हुए प्रोग्राम को।

हमारे कई श्रोताओं ने 14, 15, 6, 8, 10 बार संदेश भेजा हुआ है, जबकि हम बार बार कहते हैं कि जैसे ही आप कुछ और लिख देते हैं तो आपकी फरमाइश और पीछे हो जाती है। बहरहाल प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं इस बेहद मकबूल गीत की, जिसकी बहुत सारे श्रोताओं ने फरमाइशें भेजी हैं। फिल्म है उपकार। मुकेश की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सौदागर जब याद किसी की आती है, अर्पण, दोस्ताना और हातिम ताई, ये आज की फिल्म है।

उपकार फिल्म का गीत मुकेश की आवाज, फरमाइशें आप सबकी। बता दें आपको कि इस गीत को मशहूर शायर कुंवर जलालाबादी ने लिखा था और संगीत कल्याण जयराम जी का था। फरमाइशें आप सबकी, अमितेश कुमार तिवारी हैं, करनई बलिया के हमारे श्रोता। जमानिया रेलवे स्टेशन से हमें सुन रहे हैं एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। लालमाता सुदामा नगर रटलाई झालावाड़ राजस्थान के श्रोता हैं हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी, साथ में कपिल, शोभा, फुंदीबाई बागरी और उनके परिवार के बाकी सदस्य। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से फरमाइश आई है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा।

प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा और जयवीर सिंह की। महावीर मंदिर रोड अर्दली बाजार वाराणसी के श्रोता हैं गरिमा पाल।

ऊपरकोट मोहल्ला चखुंटी बुलंदशहर के श्रोता है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज और सरफराज अब्बासी, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और महेंद्र चौरसिया की फरमाइश, जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता की फरमाइश आई है पोफाली यवतमाल से। कलानौर से हमें सुन रहे हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, सुदर्शन शाह, पलवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह और सुरभि शाह हैं पद्म टॉकीज नेपालीगढ़ से। बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद, मल्लू अंसारी, आप सभी हैं अहमदनगर बजरडीहा के हमारे श्रोता। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार और आयुष जंघेल की फरमाइश आर्यनगर कोहका से। आप हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी छत्तीसगढ़ पलारी से। मोसीम अंसारी, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी, सद्दाम अंसारी, मुश्ताक अंसारी वाराणसी के हमारे श्रोता। ग्राम लोहगढ़ ठाकुरांवाला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह और गुरुनूर सिंह की फरमाइश आई है। आमा खोडरा रेंगाखार से हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह नेताम और दक्ष प्रिया। बिरडी से राजेश सोनी, कंचल सोनी और गायत्री ढोमनी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। नगर पंचायत दिनारा से हमें सुन रहे हैं जयराम बिन, सुषमा देवी, श्वेता रानी, पाठक, कंचन मिश्रा और सीतामणि देवी। सिद्धार्थनगर, दरियापुर, बावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना हैं लदावली मुरादाबाद से। दतरेंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा और पारस मणि वर्मा, सावतपुर छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं ऋषि सेन, रितेश सेन और हर्ष कुमार सेन। ये फरमाइश बबलू शेख, शगीर शेख वजीर, सोहिल शेख और सैयद तहमूर की आई है मोटाला बाजार से। मोटाला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान। गाजीपुर गांव नारी पचदेवरा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता। विनोदपुरी बीपी रंजू, अशोकपुरी और सुशीलपुरी, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से। कार्यक्रम का अगला गीत सौदागर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, गीत संगीत रविंद्र जैन के।

जी हाँ श्रोताओ, हमारा आपका साथ रहे और साथ ही साथ रहे अच्छे और खुश रंग पर्यावरण का, परिवेश का। और आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस, उसका संदेश भी ये है। सौदागर फिल्म का गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, फरमाइशें आप सबकी संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, उमरिया, मध्य प्रदेश से। मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज हैं सीतामढ़ी महसौल बिहार से। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी भूपेश और दीपेश। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और कमल साहनी की फरमाइश आई है गांव चोहलदा बागपत से। गावना थाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी और निशा की फरमाइश नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से आई हुई है। आप हैं मुरादाबाद दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश और राजपाल, साथ में पंकज या राजपाल पंकज एक ही नाम है,

सतीश शर्मा चंडीगढ़ से। इसी गीत को आपने सुनना चाहा। सभी एक पेड़ जरूर लगाएं, विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आपने लिखा है, आपको भी। कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और कपिल मेहरा हैं दादरी घेट भिवानी से। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर के श्रोता हैं। अनीश राजभर, मनीष राजभर और आशीष राजभर ग्राम पंचायत बठेना।

ग्राम पंचायत बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनि ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा की फरमाइश। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी और निशा मानिकपुरी का व्हाट्सएप संदेश। मुंदी चक भागलपुर के श्रोता हैं दिलीप कुमार सोनी, ये फरमाइश नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका और ज्योति ठाकुर की। चरौदा बार नवापारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा हैं बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से। झारखंड बड़ा बाम्बो सुपाई गांव से हैं देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा और दीपाली। वडिंगखेड़ा पंजाब के श्रोता हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ के श्रोता गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल, परी और कृतिका। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित। नाहिद अंसारी, राशिद अंसारी, साजिद अंसारी है नेवादा मुबारकपुर आजमगढ़ से। रविंद्र सिंह छाबड़ा और परिवार के सदस्य नई दिल्ली से। जवाहर नगर दुर्ग के श्रोता हैं आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू की फरमाइश। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से। निम्नाबाद जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश, फिल्म है जब याद किसी की आती है। आवाज महेंद्र कपूर की, राजा मेहंदी अली खां के बोल और मदन मोहन का संगीत।

जब याद किसी की आती है। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, महेंद्र कपूर की आवाज थी। सुनना चाहा श्री गोपाल गिरी, रमेश गिरी, इंदु गिरी, विशाल गिरी, आप सभी हैं मदन ही गाजीपुर के श्रोता। हरियाली बचाओगे तो खुद की सांसें बचाओगे, ये विचार हैं अनु बड़जात्या, शमसुल खान और अनुराज बेनारा की। आपके नाम पर हम यकीन कर रहे हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी श्रोताओं को भी रखनी है कि वो नाम सही सही लिखें, पूरा लिखें और जो वास्तविक नाम हो वही लिखें। जाकिर हुसैन अंसारी, मतीन अंसारी, सरफराज अंसारी और मुबीन अंसारी की फरमाइश आई है, अपने आसपास पेड़ पौधे का ख्याल रखें और अपने आसपास लगाएं भी, ये बात आपने लिखी है। कोटवा वाराणसी से आप हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह और गुरनीर सिंह। बुढ़ाना के श्रोता हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा और आयजा अनम। बजरडीहा वाराणसी से ऐनुल हक अंसारी, इकबाल अंसारी, मल्लू अंसारी और सलीम आजाद। फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा और विशाल खेड़ा।

एकता कॉलोनी रोहतक के श्रोता हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध। ये फरमाइश जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तुबा अफरीन की आई है रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से। आपने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर दिल से बधाई दी है, शुक्रिया आपको, और इस बधाई के हकदार आप भी हैं। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और उनके परिवार के बाकी सदस्य हैं। छत्रपति संभाजीनगर से संदेश भेजा है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। संबलपुर कांकेर के श्रोता हैं फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी और तैमूर हाशमी हैं नई बस्ती गंज डुंडवारा से। शानू, आर अश्विन, शोभनाथ अवस्थी और उनके मित्र हमें सुन रहे हैं शिवराजपुर चुनार मिर्जापुर से। छत्रपति शिवाजीनगर खंडवा से राजेश सेन और सुरेखा सेन। आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित यह कार्यक्रम है फरमाइश गीत एक्सप्रेस। आज आप सुन रहे हैं अपने दोस्त

अरुण पांडे के साथ वक्त 11:30 का। प्रोग्राम के अगले गीत की बारी, बहुत सारे श्रोताओं ने इसे सुनना चाहा है। फिल्म का नाम है अर्पण, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में गीत अर्पण फिल्म से और फरमाइशें आप सब की आई। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली के श्रोता है तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशीष राजा और चैतन्य मस्कीन। इसी गीत की फरमाइश आई मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदिनी कुमारी और उनके परिवार के सदस्यों की। ग्राम चकफुटे ही असनाव बाजार भदोही के श्रोता हैं गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार यादव, जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार यादव। ग्राम भीलखेड़ी सारंगपुर राजगढ़ मध्य प्रदेश से धनराज बैरागी, सीमा बैरागी और किट्टू। दिल्ली बिहारी कॉलोनी से वीणा मस्कीन और तुलसी मस्कीन का नाम दोबारा से आया है। देवशंकर तामूरिया, अजय देवता मूरिया, तुषार देवता मूरिया हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। इसरोल बाड़मेर राजस्थान से शफी मोहम्मद सोलंकी, शाहरुख खान, अतीक खान और रियाज खान। पदमपुर श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। राज पैलेस मऊनाथ भंजन से ये फरमाइश राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा की। गिर्रा पलाड़ी छत्तीसगढ़ से हैं वीरेंद्र कुमार साहू, सोनू आशीष और कपिल साहू। मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस, मुरिन्नू निशा नलगोंडा तेलंगाना से हमें सुन रहे हैं। बक्सर बिहार के हमारे श्रोता हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम और अल्ताफ अंसारी। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक और मयंक मूडत। सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार सचित वयाल, प्रथमेश देशमुख और प्रणाली देशमुख हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। जियनपुर आजमगढ़ से परवेज अहमद और भारती जी। शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से हैं। हमारे श्रोता सुनील कुमार सिंह लिख रहे हैं आज मीडियम वेव पर प्रसारण बाधित है, खड़खड़ाहट और आवाज कट रही है, आपकी बात हमारे तकनीकी अनुभाग तक पहुंच रही है। गांगीवाड़ा छिंदवाड़ा से हैं रमनदीप परिहार, राजदीप परिहार, अर्पणा परिहार और सुधा परिहार। दमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि और ओशिका। मास्टर एस के पाटिल, मीना रानी पाटिल, प्रियंका और अजय पाटिल हैं, साथ में आर्या पाटिल हलनी नांदेड़ से। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी और सुहेल हसन अब्बासी हैं मारहरा दरवाजा एटा से। जमालपुर गोगरी खगड़िया बिहार से सिकंदर कुमार तांती, गुडला।

कुमार, अविनाश कुमार, सोनू कुमार और उद्धव कुमार। राजेश सोनी कंचल, सोनी गायत्री ढोमने और वैष्णवी ढोमने हैं बेरडी से। ये फरमाइश आई है रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया की किशनगंज बिहार से। कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से हमें सुन रहे हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर और जयप्रकाश राहुल। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म का नाम है दोस्ताना। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत, प्यारे लड़के तरस।

दोस्ताना फिल्म के इस गीत के लिए पेड़ लगाएं, हरियाली बढ़ाएं, धरती माँ का मान बढ़ाएं, और जगह कम हो तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गमले में छत पर लगाएं। और ये बातें हमें लिख भेजी हैं सुनील कुमार सिंह ने पटेल नगर मुगल सराय से। शम्स तबरेज, शाहिद परवेज, अकील अहमद, हबीब अंसारी, मखदूम नगर बजरडीहा से हमारे श्रोता है। अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जीवियम जैन है मालियान सरधना मेरठ से।

आकाशवाणी आज भी लोगों की जान है। संतोष पांडे, रेखा पांडे, शिवम पांडे, चौखंडी, हाथी बाजार, वाराणसी से आपने ये बात लिखी है, बहुत शुक्रिया आपका। नासिर शेख, नाजिया नासिर साजिद और शाहिद हैं श्रीरामपुर कॉलोनी महाराष्ट्र से। सैयद मसरूर, शाइना हसन अक्सा और नाजिया आफिया हैं कुम्हार हेड़ा सहारनपुर के श्रोता। ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय नारायणपुर कोटवा बाबा पट्टी बलिया से। क्लीन भारत ग्रीन भारत का संदेश एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी और अरिबा हबीबा का ये मैसेज था। अस्तुपुरा मऊ से है मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। जमानिया गाजीपुर से हमें सुन रहे हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, अभय कुमार, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, रिया, जिया और टूशी की फरमाइश पिहरा बाजार झुमरी तलैया से। रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा हैं, आपकी फरमाइश पहले भी शामिल हुई है आज, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। मुबारकपुर रुचि तक आजमगढ़ के हमारे श्रोता हैं दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातमा, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, आप सभी हैं पिंगावाला चौक गोरेया जलंधर से। एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, गुमला झारखंड से आपकी फरमाइश आई। कटरा मुबारकपुर से हैं जावेद अख्तर अंसारी, निखत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद और शमीम अख्तर अंसारी।

गौरव मानसी अरोड़ा दिल्ली कीर्तिनगर से। जगदीश धाकड़ नायमा रंजू भाई धाकड़ युवराज सिंह धाकड़ हैं रतलाम मध्य प्रदेश से। शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख शेख रहीम मुन्ना दानिश आसिफ शेख हमें सुन रहे हैं तेलंगाना निजामाबाद से। आपने लिखा भी है, हम आपको लाइव सुन रहे हैं। जखड़ गांव अहमदनगर से है मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल अमीना पटेल। ये फरमाइश आशीष कुमार की है महरे जौनपुर से। मौनी बाबा धाम चोचकपुर बाजार गाजीपुर से है राम सकल चौधरी। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से है संतोष खड़से और विनोद खड़से। ये फरमाइश किशनगंज बिहार से आई हुई है रविन्द्र मोहन दास आशा देवी राघव कुमार और भानुप्रिया की। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से है बबलेश पवार डैनी पवार मनीष पवार। आपने लिखा है हमारा कर्तव्य है पर्यावरण को बचाए रखना क्योंकि धरती हमारा घर है और प्रकृति हमारी माता। पुरानी भिलाई 3/14 छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी हमीदुन सिद्दीकी जीशान अहमद सिद्दीकी और शाहनवाज सिद्दीकी। जगमान सिंह डागला हैप्पी डागला जेएस नायक और शोभा नायक हैं हनुमानगढ़ जंक्शन से। कुरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू क्रांति देवी साहू और पंकज साहू। जयराम सिंगड़कर दिशांत कुमार और अर्पिता पोफाली यवतमाल के श्रोता हैं। ये फरमाइश दिलदारनगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से जनार्दन पांडे लक्ष्मीकांत पांडे श्याम नारायण सिंह और दीनानाथ सिंह यादव की है। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से हैं यशपाल कृष्ण धीमान राहुल धीमान शुभम धीमान और प्रियंका धीमान। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से ये फरमाइश मोहम्मद इशाक खतीजा बेगम अशफाक आफरीन कौसर और मोहम्मद अल्ताफ की। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश और मुकेश कुमार साहू। बबरी बाजार चंदौली से विजय सरोज सुंदर और शुभ सुमन जायसवाल। अशोक कुमार प्रजापति मीना प्रजापति अंजलि प्रजापति आकाश प्रजापति शिवप्रकाश प्रजापति की फरमाइश कोरोता वाराणसी से आई है। कासगंज से हैं योगेंद्र नायक गीता नायक और निहारिका नायक। इमरती यादव हमें सुन रही हैं ग्राम बर्ठी सकलडीहा चंदौली से। मोहम्मद इमरान इशरत परवीन और हसनैन रजा साथ में गौसिया फातिमा छत्तीसगढ़ रायपुर से। रजानगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी शमीम अहमद अंसारी अनीस अहमद अंसारी अजीज अहमद अंसारी और मोहम्मद रजा।

और आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश फिल्म का नाम है हातिम ताई, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है। इस गीत की शुरुआत में ही फरमाइश भेजी अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता, पूजा गुप्ता गौंड, अविरल और अग्रिम गौंड ने अशोक विहार कॉलोनी पहाड़िया वाराणसी फेज 2 से।

श्रोताओं, हमारे केंद्र के जो दोनों ही चैनल हैं उसके कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय जरूर आप हमें भेजें। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में वो कार्यक्रम रविवार शाम 7:31 पर प्रसारित होता है और उस कार्यक्रम की मेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। उस मेल आईडी पर फरमाइशें न भेजें, वहाँ की फरमाइशें पूरी नहीं होती हैं, सिर्फ प्रतिक्रियाएं वहाँ ली जाती हैं।

उत्तराखंड से हैं। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर डाबकी रोड अकोला से आपकी फरमाइश आई। दिग्दर्शन और कविता गौण है मेरठ कैंट से आलिया खान, नाजिया खान, सादिया खान, कस्बा कलां शाहजहांपुर से। वाड़ी खाम गांव महाराष्ट्र के श्रोता है अनंता वाढ़े, रामेश्वर वाढ़े, शुभम और साक्षी खुशी। विनय प्रजापति, गोविंद प्रजापति, वंदना प्रजापति, राहुल प्रजापति और विद्या प्रजापति हैं जलालीपुरा वाराणसी से। ये फरमाइश गुवाहाटी आसाम से आई हुई है हरिन पांड्या, नरिन पांड्या और वीरेन पांड्या की। रईस खान, साविया खान, अनस खान, शकील खान, दानियाल खान है फूले नगर अम्बीवली मुंबई महाराष्ट्र से। रजानगर बजरडीहा से शकील अहमद अंसारी, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव है व्हाइट फील्ड बेंगलुर के श्रोता। बटिंडा मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग और अंजू नारंग। अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम और रुबीना वसीम है सीतामढ़ी से। ये फरमाइश मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शबीर बनहट्टी, आसिफ इकबाल की कर्नाटक गुलबर्गा से आई हुई है। मजनू का टीला के हमारे श्रोता हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और उमंग मलिक। तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से हैं बंडू मोपलघट, माया शिवांश और चंद्र कला पोपलघट। मोहम्मद फरमान, सलमान और इरफान की फरमाइश दुल्हापुर से आई हुई है। ये संदेश है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव और डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव का। बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा हैं फगवाड़ा पंजाब से। आवाज कम आ रही है अंदर केंद्रों की आवाज ठीक है, नेटवर्क ओके है। हम लोग अपने यहाँ से स्टूडियो में जो लेबल है वो मॉनिटर करते हैं और यहाँ से आवाज ठीक ठाक जाती है। बहरहाल आपकी बात हम लोग नोट कर ले रहे हैं। आप हैं सतीश शर्मा चंडीगढ़ से, आपने ये भी लिखा है सभी एक पेड़ जरूर लगाएं, विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। रमा शंकर राशिपुर से हैं, आप लिखते हैं हवा मिलेगी तब स्वच्छ, जब लगेगा पौधों का जमकर हब। वाह। धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा है भोपालगढ़ राजस्थान से। नरसिंह साहू, पुनारद यादव, कुमान सिंह पटेल यही नाम है मोहंगरेगा राजिम छत्तीसगढ़ से। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत और चेतन भगत। उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचानी, भारती नाचानी और विनीत नाचानी। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन और वीणा मस्कीन की फरमाइश। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा। अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और कमल कुमार हैं कोल सिटी बरका खाना से। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा के श्रोता है। रामसकल चौधरी, सूरज चौधरी, सलोनी कुमारी और मोनी बाबाधाम चोचकपुर से आप सभी हैं ये गाजीपुर में है। बंजो मास्टर सुनील यादव, शिव कुमार यादव, तनिष्का यादव, नौबत यादव हैं अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से। वन है तो जल है तो कल है और इसलिए पेड़ पौधे सजो कर रखे आपने लिखा है। शिव गोपाल गिरी, विकास गिरी, सोनल गिरी है ग्राम मदन ही गाजीपुर से। सोनवर्षा खानपुर चुनार से, अनिश राजभर, मनीष राजभर, आशीष और आकर्ष राजभर। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से।

तो श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। आप सुन रहे थे अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। और विश्व पर्यावरण दिवस पर जिम्मेदारी का एहसास हम सबको करना है। शुभकामनाएं बहुत सारी आपको भी। आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
0: और डोंडी द्वारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगर पारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
0: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
0: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
0: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
0: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओ, जहां तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाश गंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है।
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है। श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
2: जी,
0: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
2: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल

0: मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
0: जी
1: यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
0: जी
1: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4400-559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: शांत शांत,
1: आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
3: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर
3: हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
4: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
5: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
6: जी महाराज, बहुत कृपा।
7: महाराज की जय हो।
8: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक,

0: तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
1: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
0: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
1: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
0: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
1: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे। भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
2: शांत,
0: क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
1: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें महाराज।
0: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
1: धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
0: क्या? और कोई शंका?
1: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
0: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
3: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलू।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम

आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं।

पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए
7: 0542227658।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें
8: 0542227658।
3: कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और शब्बीर कुमार की आवाजों में ताहिर हुसैन की रचनाएं। पहली रचना अलका याग्निक की आवाज में है।

0: अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और शब्बीर कुमार की आवाजों में ताहिर हुसैन का लिखा गीत। सुगम संगीत समाप्त तो होता है।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
2: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के ठीक 12:45 और 4 सेकंड हुए हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं देवाशीष दे का गायन। राग है रेणुका। तबले पर संगति की है सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे देवाशीष दे का गायन। राग था रेणु का, तबले पर संगति की सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने को है, अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी से प्राप्त एक सूचना के अनुसार रामाराव लिंगम, पुत्र का नाम उमा महेश्वर राव लिंगम, ये मूल रूप से अनकापल्ली बाजपुकुतुर श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के निवासी हैं और 14 फरवरी 2026 से मीरघाट वाराणसी से लापता हैं। रामाराव लिंगम की आयु है 58 वर्ष, कद 172 सेंटीमीटर, रंग सांवला, दोहरा शरीर, चेहरा गोल है। इनके बाल अधपके हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था गुलाबी रंग की शर्ट और भूरे रंग की पैंट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचना दें। साजिद मोहम्मद, पिता का नाम अफसर अंसारी, ये सरैया जैतपुरा वाराणसी के निवासी हैं और 20 मार्च 2026 की रात्रि से सरैया जैतपुरा वाराणसी से ही लापता हैं। साजिद मोहम्मद की आयु है 23 वर्ष, कद 5 फीट 6।

इंच, रंग गोरा, एक हरा शरीर, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था नीले रंग की जींस और गुलाबी टी शर्ट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचना दें। मिथिलेश पांडे, पिता का नाम वाल्मीकि पांडे, ये बुचैया सिंधवलिया गोपालगंज बिहार के मूल निवासी हैं और 20 मार्च 2026 की सुबह 8 बजे से वाराणसी जंक्शन के बाहर से लापता हैं। मिथिलेश पांडे की आयु 40 वर्ष, कद 160 सेंटीमीटर, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। ये मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था सफ़ेद शर्ट और नीले रंग की पैंट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में देवाशीष दे का गायन आप सुनेंगे। खेल पत्रिका होगी रात में 10 बजे। अंजुमन कार्यक्रम रात में 9:30 पर। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 5वीं कड़ी महिला सशक्तिकरण विषय पर आज प्रसारित होगी रात में 8:10 से। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम में ए हरिहरन की गाई गजलें आप सुन सकते हैं। कृष्णगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर श्रवण कुमार यादव की वार्ता होगी विश्व पर्यावरण दिवस और इसका महत्व। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे सुदर्शन यादव और उनके साथी। इनके गाए कुछ लोकगीत आप 1:45 पर लोक संगीत में भी सुन सकते हैं। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युववाणी सुनते हैं शाम 5:15 पर। इसमें आज के आकर्षण है आज की बात। सिने दर्पण में अभिनेत्री स्मिता पाटिल पर जानकारी, यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। दिन में 2:30 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम होगा, प्रस्तुति शिखर श्रीवास्तव की होगी। 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। इसमें आज चर्चा के अलावा राजेश श्रीवास्तव की वार्ता होगी पर्यावरण दिवस, साथ ही गीत संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। आज आलमी योम माहौलियात है। जमीन पर सभी जानदार की जिंदगी की अहमियत बनाए रखने और उसके तहफ्फुज के लिए बेदारी बढ़ाने के मकसद से अक्वामे मुत्तहिदा माहौलियात प्रोग्राम के तहत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 से हुई थी। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहायशगाह पर आलमी यौमे माहौलियात 2026 के मौके पर एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत आम का पेड़ लगाकर शजरकारी की। इस दौरान वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरगीब से गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान रियासती हुकूमत ने माहौलियात और नेचर के तई अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए कई खसूसी पेशकदमी की है। पहले ही साल 2017 में वन महोत्सव के मौके पर डबल इंजन हुकूमत ने 5 करोड़ शजरकारी के बड़े काम को अपने हाथों में लिया है। उन्होंने आवाम को आलमी यौमे माहौलियात की मुबारकबाद भी पेश की। वजीर आला ने कहा
1: कि उस समय तमाम चैलेंजेस हमारे सामने थे, न नर्सरी थी, न इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार के कोई अनुभव ही, लेकिन बाद में वन विभाग और प्रदेश सरकार के अन्य सभी विभागों ने मिलकर के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया।

0: और गत 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर वन महोत्सव के अवसर पर होने वाले वृक्षारोपण के क्रम में अब तक 242 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में प्रदेश सरकार ने सफलता प्राप्त की।
1: आज इस मौके पर चित्रकूट, गाजियाबाद, कानपुर देहात, जौनपुर, मऊ, अमरोहा और दीगर इजला में शजरकारी की गई। दरियासना एक दीगर प्रोग्राम में वजीर आला ने लखनऊ के कुकरैल जंगल हलके में शजरकारी करके रियासत गिर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस साल रियासत में एक दिन में 5 करोड़ पेड़ लगाने का निशाना रखा गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में आलमी बैंक के तावन से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली एयर शेड पर मबनी उत्तर प्रदेश साफ हवा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। उन्होंने शजरकारी महाअभियान 2026 के तहत 35 करोड़ शजरकारी महाअभियान के लोगों का इजरा किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि माहौलियात के चैलेंजेस का सामना करने के लिए हिन्दुस्तान की कदीम रवायत में रचे बसे अंसर को भी अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जब कुदरत महफूज रहेगी तभी इंसानियत महफूज रह पाएगी। वजीर आला ने कहा,
2: उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए या भारत जैसे देश के लिए जिसके बारे में कहा जाता है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य, और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ेगा, अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा, खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है, और पूरी दुनिया आज उन चीजों से चिंतित भी है और उनके लिए असमय घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी है।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज 3 रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। इस दौरान वो मुख्तलिफ समाजी तंजीम और अवामी राबता प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम और पार्टी अहदेदारों से मजाकरात भी करेंगे। वजीर दिफा आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ बायोयुग ग्रीन कमांड प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर दिफा आज आलमी योम माहौलियात के मौके पर कैंट वाके कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत शजरकारी भी करेंगे। बनारस में ब्रिक्स ममालिक के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग आज दूसरे दिन भी जारी है। मीटिंग में ब्रिक्स अराकीन ममालिक के नुमाइंदे सकाफती तआवुन की मुख्तलिफ अव्वलियत वाले शोबों पर गौरखोज कर रही है। मीटिंग के दौरान क्रिएटिव मईशत, सकाफती विरासत के तहफ्फुज, तहजीब पर मबनी हमी जहत तरक्की और आवाम से राबते को मजबूत बनाने जैसे मौजों पर बहस हो रही है। वाज़ह रहे कि सेशन का इफ्तिताह कल किया गया था जिसकी सदारत हिंदुस्तान हुकूमत के सकाफत सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने की थी। 2 रोजा इस मीटिंग का इख्तिताम आज होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने इम्तिहानी अमल को मजीद महफूज और शफाफ बनाने के लिए चेहरे की तस्दीक का निजाम मुतारिफ कराया है। कमीशन ने हाल ही में मुनक़िद होने वाले इब्तदाई सिविल सर्विसेज इम्तिहान और उस साल के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इम्तिहान में कामयाबी के साथ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि दरख्वास्त फॉर्म भरते वक्त जिस उम्मीदवार की तस्वीर अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार है जो दाखिला कार्ड के साथ इम्तिहानी मरकज में मौजूद है। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने अगस्त सितंबर के सेशन के लिए अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम में शिरकत के लिए खवातीन से दरख्वास्तें तलब की है। इसमें तुलबा, मुहक्किकीन, समाजी कारकुनान और किसी यूनिवर्सिटी या दीगर तालीमी या गैर तालीमी इदारे से वाबस्ता असातज़ा शामिल हैं। और महकमे मौसमियात ने लखनऊ समेत कई जिलों में आइंदा कुछ घंटे में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम साइंस मरकज के मुताबिक दारुल हुकूमत लखनऊ समेत रियासत के कई हिस्सों में मुतवस्सित से लेकर हल्के आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 और 33 सेकंड हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
4: सखियों के साथ,
5: सखियों के बाद,
4: सखियों के जज्बात,
5: गृहलक्ष्मी।
6: कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को सिम्मी का नमस्कार और सोनी जी आपको भी मेरा नमस्कार।
7: कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को सोनी का प्यार भरा नमस्कार और सिम्मी आपको भी नमस्कार।
6: सोनी, गर्मी बहुत पड़ रही है
7: जी, बहुत।
6: इस समय अपनी सेहत के साथ साथ पशु पक्षियों का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। उनके लिए अपने घर के बाहर छत पर बालकनी में एक बर्तन

0: पानी और दाना जरूर रखें ताकि प्यास लगने पर वह भी अपनी प्यास बुझा सकें।
1: बिल्कुल सिमी, गर्मी तो बहुत है और साथ साथ धूप भी बहुत है। और देखिए, जो इतनी गर्मी और धूप पड़ रही है, इसका एक कारण ये भी कि हमने पर्यावरण के साथ बहुत ही छेड़छाड़ की है और पर्यावरण को असंतुलित किया है।
0: बिल्कुल सखियो, पृथ्वी के स्वास्थ्य और सुरक्षित मानव जीवन के उद्देश्य से आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खास और उपयोगी है। आज है विश्व पर्यावरण दिवस। लोगों को प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष आज के दिन यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य हमारे प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाना और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना है।
0: बिल्कुल, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान से होने वाली समस्याओं के प्रति लोगों को शिक्षित करना, ताकि वो भी अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक हो सकें और उसके संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। सखियो, पहली बार 1973 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक स्तर पर एक पृथ्वी की थीम पर पर्यावरण दिवस मनाया गया था और इस बार की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। ये जो विषय है वो बढ़ते तापमान, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई, कार्बन उत्सर्जन कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
1: देखिए सिमी, स्वच्छ पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। हमें जीवन के लिए सांस लेने योग्य शुद्ध वायु, पीने योग्य पानी, भोजन के लिए उपजाऊ मिट्टी और रहने के लिए अनुकूल जलवायु, ये पर्यावरण ही प्रदान करता है। तो हमें प्रकृति और पर्यावरण का महत्व समझना बहुत ही आवश्यक है। और देखिए कि प्रकृति और पर्यावरण की गोद में बिताया हर समय हर पल अनमोल है और पर्यावरण का हम हिस्सा हैं, हम उसके मालिक नहीं हैं। और ये प्रकृति, ये पर्यावरण हमें बिन मांगे बहुत कुछ देती है, तो इसकी रक्षा करना सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हम ये सुंदर पर्यावरण दे सकें।
0: बिल्कुल सखियो, आज जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण जैव विविधता का तो नुकसान हुआ ही है
1: जी,
0: भूजल का स्तर भी दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी की समस्या आम बात हो गई। बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज क्या तापमान जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा है। तो सखियो, ये जो बातें हैं ये हमें ये सिखा रही हैं कि प्रकृति के साथ हमने अभी भी सामंजस्य नहीं बनाया तो हम सभी का जीवन मुश्किल में आ जाएगा। और हरियाली है क्योंकि इससे जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों को रोक सकती है।
1: और देखिए, आपने हरियाली की बात की सिमी, तो ये हरियाली कैसे आएगी भाई,
0: हम सभी पेड़ पौधे लगाएंगे।
1: हाँ बिल्कुल, तो जैसे कि आजकल हर जगह सड़कें बन रही हैं, रोड बन रहे हैं और बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही है, तो इससे तो पेड़ों को ही काट कर तो बन रही है। तो हम जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे, और सिर्फ पेड़ लगाना ही जरूरी नहीं है, उसकी देखभाल भी करनी जरूरी है और पानी देते रहना भी पौधों को जरूरी है। तो इस तरह करके हम कुछ पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर सकते हैं। और जो हमारे जैसे कि बिजली पानी है उसकी खपत कम करके हम बहुत सारी चीजें बचा सकते हैं। और जैसे अगर कहीं बहुत दूर नहीं जाना है
0: हाँ, तो पैदल जा सकते हैं
1: ताकि हमारा मतलब ईंधन भी बच सके। और देखिए, पैदल चलने से हमारा स्वास्थ्य भी तो बनता है।
0: हाँ, साइकिल का उपयोग भी किया जा सकता है, इससे प्रदूषण भी कम होता है और सेहत भी अच्छी रहती है।
1: और साथ ही साथ देखिए कि पहले के जमाने में जैसे हम लोग कपड़े के थैले इस्तेमाल करते थे, जूट के थैले इस्तेमाल करते थे, और आज ये जगह प्लास्टिक ने ले ली है। और ये प्लास्टिक जो है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है।
0: बिल्कुल, क्योंकि जो प्लास्टिक है ना वो आसानी से जमीन में घुलती नहीं है, बल्कि नालियों में अगर फंस जाए ना तो उन्हें जाम कर देती है। वहीं कोई पशु या गाय से खा ले तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं
1: जी।
0: तो इसलिए प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, प्रदूषण को कम से कम करें, क्योंकि सखियो ये छोटे छोटे से उपाय हैं ना जिन्हें अपनाकर हम भी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि जब चारों तरफ हरियाली होती है तो मन भी तनाव मुक्त रहता है, प्रसन्न और तरोताजा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि हर पत्ता हर पौधा कुछ ना कुछ हमसे कह रहा है। तो सखियो, अब अपने मूड को फ्रेश करते हो, आइए हम भी सुन लेते हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
5: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
6: सखियो, स्वस्थ स्वच्छ पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। हमारी धरा हरी भरी रहेगी तो

0: हमारे साथ साथ जीव जंतुओं का अस्तित्व भी बना रहेगा ना, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी कम रहेगा। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम अपनी सखियों को सुनवा देते हैं ये वार्ता।
1: जी, वार्ता का विषय है पर्यावरण दिवस और वार्ताकार है डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव।
2: श्रोताओं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज इस महत्वपूर्ण मौके पर हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो केवल एक मुद्दा ही नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है, और वह है पर्यावरण। आज पूरी दुनिया विकास की दौड़ में आगे बढ़ रही है। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, आधुनिक तकनीक, तेज रफ्तार जीवन इत्यादि इत्यादि, ये सभी प्रगति के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन इसी प्रगति की कीमत हमारी प्रकृति चुका रही है। हम सभी साक्षी हैं कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है, नदियां सिकुड़ रही हैं, जंगल समाप्त हो रहे हैं और हवा जहरीली होती जा रही है। हाल ही में एक अत्यंत चिंताजनक समाचार सामने आया। 20 मई 2026 के अनुसार AQI.in की लाइव ग्लोबल टेम्परेचर रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का बांदा शहर 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार 3 दिन दुनिया के सबसे गर्म शहर के रूप में दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में अधिकांश भारत के शहर शामिल रहे। यह केवल एक साधारण समाचार नहीं है बल्कि प्रकृति की ओर से दी गई एक गंभीर चेतावनी और संकेत भी है। सोचिए, जिस धरती पर कभी ऋतुओं का सुंदर संतुलन था, जहां गर्मी, सर्दी और वर्षा का एक प्राकृतिक क्रम था, आज वही धरती चरम मौसम की मार झेल रही है। कहीं भीषण गर्मी, कहीं अचानक बाढ़, कहीं सूखा, कहीं जंगलों में आग, ये सब क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन के अस्पष्ट संकेत हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट्स बताती हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1.1 से 1.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। सुनने में यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन इसके प्रभाव अत्यंत व्यापक और विनाशकारी हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसका सबसे बड़ा कारण है मानव जनित गतिविधियां। पेड़ों की अत्यधिक कटाई, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, प्लास्टिक प्रदूषण, अनियोजित शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन इत्यादि, ये सभी पर्यावरणीय क्षति के प्रमुख कारण हैं। आज हम उपभोक्तावादी संस्कृति में जी रहे हैं। हमें जरूरत से ज्यादा चाहिए। हम सुविधा चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं। हम विकास चाहते हैं लेकिन प्रकृति की कीमत पर। जरा सोचिए, हम लोग पहाड़ों पर प्रकृति का आनंद लेने जाते हैं, लेकिन वर्तमान में प्लेन में, मैदानी इलाकों में जहां हम रहते हैं, वहां प्रकृति का तहस नहस भी कर रहे होते हैं। हम अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए पेड़ों की छांव ढूंढते हैं, लेकिन अपने जीवन में एक भी पेड़ लगाना नहीं चाहते। साथियों, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी प्रकृति भी एक ATM मशीन और बैंक की तरह से है। यानी जब तक हम बचत नहीं करेंगे, तब तक हमें ATM या बैंक से पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे ही प्रकृति रूपी बैंक भी हमें तभी फल प्रदान करेगा जब हम विभिन्न तरीकों से इसकी रक्षा करेंगे। यदि हम अपने दैनिक जीवन को देखें तो पाएंगे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में हमारी छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। बिजली के अनावश्यक बर्बादी, पानी का अत्यधिक उपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग, घर के कूड़े का सही प्रबंधन न करना, निजी वाहनों का अत्यधिक उपयोग, पेड़ न लगाना, ये सभी समस्याएं हमारे व्यवहार से जुड़ी हैं। असल में

पर्यावरण संकट केवल वैज्ञानिक या सरकारी विषय नहीं है, यह वास्तव में व्यवहार का संकट भी है। जब तक समाज का व्यवहार प्रकृति के प्रति संवेदनशील नहीं होगा, तब तक केवल कानून और योजनाएं पर्याप्त नहीं होंगी। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो केवल पेड़ पौधों या हवा की बात नहीं होती। हमारा जलीय पर्यावरण यानी नदियां, तालाब, झीलें और उनमें रहने वाले जीव भी पर्यावरणीय संतुलन के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हैं। विशेष रूप से गंगा जैसी नदियां केवल जलधारा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। लेकिन आज नदियां प्रदूषण, प्लास्टिक, सीवर, रासायनिक अवशिष्ट और अतिक्रमण के कारण गंभीर संकट। इसका प्रभाव केवल पानी की गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उन हजारों जलीय जीवों पर भी पड़ रहा है जो इन नदियों पर निर्भर हैं। उदाहरण के तौर पर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में स्विंस कहा जाता है, हमारी नदियों के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। कहा जाता है कि जहां डॉल्फिन पाई जाती है वहां नदी का इकोसिस्टम बिल्कुल जीवित होता है। लेकिन बड़े बड़े बांध, विभिन्न जल परियोजनाएं, जल प्रदूषण, अवैध शिकार, मोटर बोटों का अत्यधिक दबाव और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में कमी के कारण इनकी संख्या प्रभावित हो रही है। इसी प्रकार घड़ियाल, कछुए, मछलियां और अन्य जलीय जीव भी नदी पारिस्थितिकी को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कछुए जल को साफ रखने में सहायक होते हैं क्योंकि वे जैविक अवशेषों को खाते हैं। मछलियां खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। घड़ियाल नदी के जैविक संतुलन को बनाए रखते हैं। यदि ये जीव समाप्त होने लगे तो पूरा का पूरा जलीय तंत्र असंतुलित हो सकता है। हमें यह नहीं भूलना है कि जैव विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव और उनके पारिस्थितिकी तंत्र। प्रकृति की यही विविधता पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। यदि जंगलों से पक्षी गायब हो जाएं, नदियों से मछलियां समाप्त हो जाएं, मधुमक्खियां कम हो जाएं या डॉल्फिन विलुप्त होने लगे तो इसका असर केवल एक प्रजाति तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही प्रभावित हो जाता है। आज वैज्ञानिक अस्पष्ट रूप से यह कह रहे हैं कि जैव विविधता का संकट मानव सभ्यता के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। बढ़ते जनसंख्या दबाव और असतत जीवन शैली तथा विकास, प्राकृतिक आवासों का विनाश, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन की वजह से वैश्विक स्तर पर अनेक प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण का अर्थ केवल पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि संपूर्ण जैव विविधता की रक्षा करना होता है। आज हमें विकास और विनाश के बीच अंतर समझने की आवश्यकता है। यदि विकास ऐसा हो जिससे नदियां प्रदूषित हों, जंगल खत्म हो, हवा जहरीली हो जाए और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संकट में पड़ जाए तो वह विकास नहीं विनाश है। सच्चा विकास वही है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन प्रकृति का संतुलन भी बनाए रखे। इसी सोच को सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से भी समझौता न करे। इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG निर्धारित किए। इन 17 लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, सतत शहर यानी सस्टेनेबल सिटीज, जैव विविधता संरक्षण और जिम्मेदार उपभोग जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। विशेष रूप से SDG 13 यानी क्लाइमेट एक्शन अर्थात जलवायु के लिए कार्रवाई, SDG 14 लाइफ बिलो

0: वाटर यानी जलीय जीवन का संरक्षण और एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड अर्थात स्थलीय जैव विविधता का संरक्षण आज पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत भी इस दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे, एक पेड़ मां के नाम, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, प्लास्टिक प्रतिबंध, ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन केवल सरकारों का प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। जब तक जन भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तब तक पर्यावरण संरक्षण एक अधूरा अभियान ही रहेगा। प्रकृति हमें जीवन देती है। हवा, पानी, भोजन, औषधियां, सब कुछ प्रकृति से ही मिलता है। भारतीय संस्कृति में तो प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमने नदियों को माँ कहा, वृक्षों को देवता माना, पृथ्वी को धरती माँ कहा। लेकिन आधुनिक जीवन शैली में हमने प्रकृति से जुड़ाव कम कर दिया है। आज आवश्यकता है कि हम फिर से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें। हम छोटे छोटे कदमों से भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, जल संरक्षण को अपनी आदत बनाए, नदियों, तालाबों या अन्य जलाशयों में कूड़ा या प्लास्टिक न डालें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, सार्वजनिक परिवहन और साइकिल का प्रयोग बढ़ाएं, कचरे का पृथककरण यानी सोर्स सेग्रीगेशन करें, ऊर्जा की बचत करें, बच्चों में पर्यावरण और जैव विविधता के प्रति संवेदनशीलता विकसित करें, जलीय जीवों और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूक रहें। याद रखिए, पृथ्वी हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। यदि आज हम नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी भी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि तब उनके पास तकनीक तो होगी लेकिन शुद्ध हवा नहीं, बड़े शहर तो होंगे लेकिन पीने का पानी नहीं, आधुनिक जीवन तो होगा लेकिन सुरक्षित भविष्य नहीं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन जीने की जिम्मेदार शैली है। जब समाज, सरकार, संस्थाएं और युवा मिलकर प्रकृति के लिए कार्य करेंगे तभी एक सुरक्षित और संतुलित भविष्य संभव हो पाएगा। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें, विकास भी करेंगे और प्रकृति को भी बचाएंगे, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण, सुरक्षित जैव विविधता और स्वस्थ और स्वच्छ नदियां ही स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी हैं।
1: सखिया सुन रही थी वार्ता पर्यावरण दिवस। वार्ताकार थे डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव। सखियों, घर में इंडोर प्लांट्स लगाकर भी ना हम अपने घर के लुक को बदल सकते हैं। इससे हरियाली तो आएगी ही, घर में ताजगी भी महसूस होगी।
2: बिल्कुल सिमी, और देखिए ना, हमारे घर में स्टोर रूम में कहीं कहीं पुरानी चीजें पड़ी होती हैं, जैसे मग है, बाल्टी है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, तो हाँ, उनमें भी हम छोटे छोटे पौधे लगाकर अपने घर को सजा सकते हैं। और जैसे कि
1: हाँ, और इसके अलावा उनको पेंट भी अगर हम कर देंगे ना शीशियों को या बोतलों को, तो फूलदान है, कैंडल स्टैंड भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा घर की पुरानी चीजों को नया रूप देने के लिए हम उनका फैब्रिक बदल सकते हैं। पुरानी साड़ियों, दुपट्टों से कुशन कवर, पर्दे बनाकर भी उन्हें क्लासी लुक दिया जा सकता है।
2: बिल्कुल, और जैसे जो चाय के कप होते हैं उनकी हैंडी टूट जाती है, उनमें भी हम छोटे छोटे पौधे लगाकर अपने घर को एक लुक दे सकते हैं।
1: और इसके अलावा पुरानी चूड़ियां हैं जो उन पर गोटा है, उन्हें लपेट कर कोई सुंदर सा फ्रेम या घर के लिए सुंदर सा तोरण भी बना सकते हैं। बस सखियो, और साथ ही इसके अलावा हम पुराना फर्नीचर उसे पॉलिश करके, कवर करके, रीडिजाइन करके भी जगह बदल के मॉडर्न लुक दे सकते हैं। बस जरूरत है कुछ अलग करने की, हटकर सोचने की। तो आप भी कुछ नया सोचें, कुछ क्रिएटिव सोचें, घर में पुरानी चीज़ों को पेंट करके, डेकोरेट करके, उनमें थोड़ा सा फेर बदल करते हुए डिफरेंट लुक में रिसाइकल करें और अपने घर को सुंदर सा आर्टिस्टिक लुक दें और घर की खूबसूरती में चार चांद लगाएं, कुछ इस गीत की तरह।

0: सिमी देखिए गर्मी है, धूप बहुत है, तो ऐसे में अपने घरों में ही ज्यादा ज्यादा रहे, बहुत जरूरी काम हो तो बाहर निकले। और सखियों एक बात का और भी ख्याल रखना है कि इस गर्मी में हमें खाने ज्यादा पीने पर ध्यान देना है, और क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और पानी की कमी होने पर हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो इन गर्मियों में ज्यादा ज्यादा हाँ
1: खुद को हाइड्रेट और स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना तो बहुत जरूरी है।
0: जी
1: हम दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए, क्योंकि इससे क्या है तापमान नियंत्रित रहता है और डिहाइड्रेशन भी नहीं होता है। और सखियो इसके अलावा रसीले फलों का पदार्थ, बेल का शरबत और सत्तू का पानी भी पी सकते हैं, और इन गर्मियों में अपने शरीर को ठंडा रखने वाली चीजों को खाए पिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमें दे अनुमति।
0: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
4: गृह लक्ष्मी।
5: महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हुए हैं, अब लोक संगीत प्रस्तुत है। कार्यक्रम में कलाकार हैं सुदर्शन यादव और उनके साथी। पहले सुनिए इनका गाया एक खेमटा।
6: जे करी पियावा बसे परदेश सखी, जेकर पियावा बसे परदेश, तब तिक

सन ओके गोर चेहरवा चाहत बा।

0: Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Gujarat today. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal to arrive in New Delhi on three-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey in Japan this evening. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9%

से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।

0: को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सब का एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं, लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।
3: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट शिखा। सुरों के इस खास सफर में आप सभी का स्वागत है। भारतीय सिनेमा में कई संगीतकार आए और गए, लेकिन एक ऐसा फनकार भी था जिसके संगीत में गजलों ने एक नया रूप लिया, जिसकी धुनों को सुनकर खुद लता मंगेशकर जी ने भी कहा था कि उनके जैसा संगीतकार ना कोई हुआ ना ही होगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गजलों के बादशाह मदन मोहन की। आज के इस कार्यक्रम के आधे घंटे के सफर में हम जानेंगे कि कैसे सेना का एक कैप्टन बॉलीवुड का सबसे भावुक संगीतकार बन गया।

मदन मोहन का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद, जो कि इराक में है, वहां पर हुआ था, जहां उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल फिल्म व्यवसाय से जुड़े थे। मदन जी को बचपन से ही संगीत और कला का शौक था, लेकिन पिता चाहते थे कि वे सेना में जाएं। पिता की जिद के आगे झुककर उन्होंने फौज ज्वाइन कर ली और सेकंड लेफ्टिनेंट भी बने, लेकिन दिल तो संगीत के पास था। साल 1946 में उन्होंने सेना छोड़ दी और ऑल इंडिया रेडियो AIR लखनऊ में काम करना शुरू किया। यहाँ उनकी मुलाकात उस्ताद फयाज खान और बेगम अख्तर जैसी महान हस्तियों से हुई, जिन्होंने उनके भीतर के संगीतकार को जगा दिया। मुंबई आने के बाद मदन जी ने शुरू में अभिनय में हाथ आजमाया और कुछ फिल्मों में छोटे रोल भी किए। उन्होंने संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर के सहायक के रूप में भी काम किया। आखिरकार साल 1950 में फिल्म आंखें से उन्हें बतौर स्वतंत्र संगीतकार पहला बड़ा ब्रेक मिला। इस फिल्म का गाना प्रीत लगा के मैंने ये फल पाया काफी पसंद किया गया।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार आकाशवाणी वाराणसी के संग। और आज के इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं संगीतकार मदन मोहन के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें, साथ ही सुन रहे हैं उनके कंपोज किए हुए कुछ सुपरहिट गीत। मदन मोहन के संगीत की बात हो और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं। मदन जी लता मंगेशकर को अपनी बहन मानते थे और उन्हें इली कहकर बुलाते थे। दोनों की जुगलबंदी ने हिंदी सिनेमा को वो नगीने दिए जो आज भी अमर हैं। मदन मोहन जी की धुनों में जो बारीकियां होती थी उन्हें सिर्फ लता जी ही गा सकती थी। महान संगीतकार ओपी नैयर ने एक बार कहा था, मुझे नहीं पता कि मदन मोहन लता के लिए बने हैं या लता मदन मोहन के लिए, लेकिन दोनों का साथ बेजोड़ है।

मदन मोहन को गजलों का राजा कहा जाता था क्योंकि उन्होंने भारी भरकम उर्दू गजलों को फिल्मी संगीत में इतनी सादगी और खूबसूरती से पिरोया कि वे आम लोगों की जुबान पे चढ़ गई। वो कौन थी, अनपढ़, मेरा साया, हकीकत और मौसम जैसी फिल्मों में उनका संगीत चरम पर था। कैफी आजमी, राजा मेहंदी अली खान और मजरू सुल्तानपुरी जैसे गीतकारों के साथ मिलकर उन्होंने इतिहास रच दिया।

बॉलीवुड की एक कड़वी सच्चाई है कि मदन मोहन के गानों को बेहद पसंद किया गया, लेकिन उन्हें अपने जीवन काल में वो व्यावसायिक सफलता और बड़े अवार्ड्स नहीं मिले जिनके वो हकदार थे। अक्सर उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती थीं, जिससे वे काफी निराश रहने लगे थे। इसी अकेलेपन और तनाव के कारण मात्र 51 वर्ष की उम्र में 14 जुलाई 1975 को इस महान संगीतकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कहते हैं ना, संगीत कभी नहीं मरता। मृत्यु के करीब 30 साल बाद साल 2004 में निर्देशक यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म वीर ज़ारा बनाई। इस फिल्म के लिए मदन मोहन की रखी हुई पुरानी अप्रयुक्त धुनों को उनके बेटे संजीव कोहली ने सहेजा और संगीत तैयार किया। लता मंगेशकर ने 75 साल की उम्र में अपने मदन भैया की उन धुनों को दोबारा गाया। वीर ज़ारा का संगीत ब्लॉकबस्टर रहा और मदन जी का संगीत एक बार फिर अमर हो गया। आइए इसी फिल्म का ये गीत सुन लेते हैं।

मदन मोहन आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी कहीं कोई टूटे दिल से गजल गाएगा, जब भी कोई देशभक्ति की बात करेगा, या जब भी बारिश की रातों में कोई पुराना गाना गुनगुनाएगा, मदन जी अपनी अमर धुनों के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। मदन मोहन जी के सुरीले सफरनामे में आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम एक ही कलाकार से अब शिखा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज की प्रस्तुति शिखा श्रीवास्तव की थी और कार्यक्रम संगीतकार मदन मोहन पर केंद्रित था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। डीटीएच डीआरएम वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम एफ 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, डीटीएच, ओटीटी वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। स्टूडियो घड़ी में शाम के 5 बजे आरंभ होती है आज की हमारी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में सुने फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुना रहे हैं फिल्म हीना का गीत। आवाज लता मंगेशकर की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

अभी आप फिल्म हिना का गीत सुन रहे थे, आवाज थी लता मंगेशकर की। अब आइए लता मंगेशकर और साथियों को सुने फिल्म गबन। गीतकार हैं अस्त्र जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 होने वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गाँव के निवासी है और ये छात्र है, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
3: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचड़ा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
2: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
3: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
2: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे

0: कैसा लगा आपको?
1: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
0: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
1: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस उसमें डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
0: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
1: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
0: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
1: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया, जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
0: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
1: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
0: आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
1: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
0: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
1: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
0: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
1: हाँ, जिम्मेदारियां अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
0: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
0: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
1: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए, धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
0: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
1: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
0: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी की सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया।

0: और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े, कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
1: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
0: आप जिस तरह यह कार्य करके यह साबित किए, बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
1: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन ये सब पेड़ बैठाएंगे।
0: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं? क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
1: निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
0: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर, इंसान सब कुछ काट रहा है, छील छील के खाल जमी की टुकड़ा टुकड़ा बांट रहा है।
1: दोस्तों, इन पंक्तियों से समझिए कि हम आधुनिक जिंदगी के लिए अपने पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं।
0: दोस्तों, आज के कार्यक्रम में होंगी इस पे और भी बातें, पर उससे पहले स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम
1: युववाणी
0: युववाणी में,
1: में मैं हूं नेहा।
0: और मैं हूं आलिया। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तो दोस्तों, मानव और प्रकृति का संबंध बहुत पुराना है और गहरा भी है। पृथ्वी, जल, वायु, वन, पर्वत, नदियां और जीव जंतु मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यही पर्यावरण हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान करते हैं।
2: दोस्तों, स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और उपजाऊ भूमि के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आधुनिक विकास, बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण पर गंभीर संकट उत्पन्न हो रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए ही प्रतिवर्ष 5 जून यानी आज के दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
1: तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण भी कराता है। इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो वर्ष 1972 में हुई थी। उसी वर्ष स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।

0: दोस्तों, वर्ष 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और तब से लेकर आज तक यह दिन दुनिया भर के देशों में विभिन्न विषयों और अभियानों के माध्यम से मनाया जाता है। दोस्तों देखिए, हम जो सांस लेते हैं, जो भोजन खाते हैं और जो पानी पीते हैं ना, वो सब ही पर्यावरण से प्राप्त होता है। और यदि पर्यावरण संतुलित रहेगा तो ही मानव जीवन भी स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा।
1: अब देखिए ना, कुछ वर्ष पहले दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो हम जब भी बाहर निकलते थे, गर्मी का मौसम हुआ करता था, तो इतने सारे हरे भरे पेड़ हुआ करते थे। और ऐसे में क्या होता था कि जब भी हरे भरे पेड़ होते थे तो कहीं पर भी अगर हमें बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप मिल रही है या फिर हम थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो आलिया पेड़ के नीचे तो हम आराम से आराम कर ही लिया करते
0: बिल्कुल,
1: थे।
0: पेड़ तो अभी भी है नेहा, लेकिन अभी बिल्डिंग्स और भी ज्यादा हैं।
1: बिल्कुल, जो पेड़ों की संख्या है वो घटती जा रही है और इन बिल्डिंग्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ उसका जो खामियाजा है वो हमें ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब ना तो वो आराम मिल पा रहा है ना ही उस पेड़ का छांव मिल पा रहा है।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि दुनिया में आधुनिकता बढ़ी है, तापमान बढ़ा है, अनियमित वर्षा हो रही है, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है और कई प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं, जो हमें बताती हैं कि प्रकृति का संतुलन बहुत बिगड़ रहा है।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज पर्यावरण के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं, जैसे वायु प्रदूषण, कारखानों, वाहनों और अन्य स्रोतों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित कर रहा है। इसके कारण सांस संबंधी रोग, एलर्जी और अनेक स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं।
0: बिल्कुल। अब देखिए, जल प्रदूषण जो है उसमें

0: सामान लाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की थैलियां, पानी की बोतलें और अन्य वस्तुएं वर्षों तक नष्ट नहीं होती हैं। अगर मैं देखें तो ये हमें आराम देती है, हमारे काम को बड़े ही सरलता से हम कोई भी सामान इसमें रख पाते हैं, उसे आराम से इस प्लास्टिक से बनी कैरी बैग में कैरी कर पाते हैं। पर ये हमारे देखा जाए तो पर्यावरण में कैरी करने के लिए बहुत ही हानिकारक है।
1: बिल्कुल, इसे हम इजी कैरी कह तो देते हैं, लेकिन ये हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों,
1: दोस्तों, प्लास्टिक नदियों को प्रदूषित करता है, जानवरों के लिए खतरा है और मिट्टी को भी प्रभावित करता है, खास करके हमारी सेहत पे तो असर डालता ही है नेहा। और इसीलिए प्लास्टिक का हमें ना कम से कम उपयोग करना चाहिए।
0: बिल्कुल कम उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति मानी जाती है और इसकी आबादी भी अन्य देशों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है, तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण में हम युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम ट्री प्लांटेशन कैंपेन कर सकते हैं, प्लास्टिक के यूज को कम कर सकते हैं और एटलीस्ट अपनी स्कूटी या बाइक के हॉर्न की आवाज को भी कम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम अधिक से अधिक ट्रैफिक एरिया में होते हैं तो अक्सर नोटिस करते हैं कि क्या होता है, अनावश्यक रूप में बिना किसी जरूरत के जो है हॉर्न हम लगातार बजाते रहते हैं। इससे ना सिर्फ ढेर सारी जो है ध्वनि प्रदूषण पूरे वातावरण में फैलता है, बल्कि एक सिरदर्द भी होता है और बेमतलब का ढेर सारा साउंड पॉल्यूशन क्रिएट होता है।
1: बिल्कुल, और दोस्तों हम सोशल मीडिया का यूज़ तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आजकल वो यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो हम सोशल मीडिया का यूज़ करके लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आज हम सिर्फ पर्यावरण दिवस नहीं मना रहे हैं, बल्कि आज यानी 5 जून को नेहा हम गैर कानूनी बिना रिपोर्ट की गई और अनियमित यानी इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड मछली पकड़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मना रहे
0: क्या
1: हैं।
0: बात है, तो आज के दिन की तो उपलब्धि आलिया वास्तव में बहुत ही ज्यादा है।
1: बिल्कुल
0: तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यह तिथि वर्ष 2016 में लागू हुए पोर्ट स्टेट मेजर्स अग्रीमेंट यानी PSMA की याद में चुनी गई, जो अवैध मछली पकड़ने को रोकने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता माना जाता है।
1: दोस्तों, गैर कानूनी बिना रिपोर्ट की गई और अनियमित मछली पकड़ना केवल समुद्री संसाधनों की समस्या नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा वैश्विक मुद्दा भी है।
0: बिल्कुल, इसका उद्देश्य सभी देशों, संगठनों और नागरिकों को यह संदेश देना है कि समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका टिकायु उपयोग भविष्य की पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम आज समुद्रों की रक्षा करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियां भी उनके लाभों का आनंद उठा सकेंगी। तो दोस्तों, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, बल्कि हमारे आने वाले जो भविष्य है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसके बारे में भी सोचना है, उसके संरक्षण के बारे में भी ध्यान में रखना है और उसके साथ में अपने पर्यावरण की सुरक्षा और ये जो समस्याएं हैं उनसे पार उठने के लिए कदम आगे बढ़ाना है। क्यों आलिया?
1: बिल्कुल
0: तो चलिए, अब इसी के साथ साथ कदम हम और भी आगे बढ़ाने वाले हैं अपने कार्यक्रम में भी। इतनी सारी जानकारियों के बाद अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।

0: तुमसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
1: ओ
3: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
4: दोस्तों संघर्ष की राहों में जो मुस्कुराना सीख जाता है वो हर कठिन परिस्थिति से निखर कर निकल ही आता है। ठोकरें उसे गिरना नहीं आगे बढ़ना सिखाती हैं, क्योंकि संघर्ष करने वाला इंसान मंजिल को पा ही जाता है।
5: दोस्तों भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और संवेदनशील अभिनय के बल पर अमिट छाप छोड़ दी, और उन्हीं में से एक अभिनेत्री स्मिता पाटिल भी थी।
4: दोस्तों उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी और अभिनय की एक नई पहचान स्थापित भी की। उनका जीवन संघर्ष, आत्मविश्वास, प्रतिभा और सामाजिक संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है।
5: दोस्तों स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में हुआ था। उनके पिता शिवाजी राव पाटिल एक राजनीतिज्ञ थे और उनकी माता विद्याताई पाटिल समाज सेवा से जुड़ी थी।
4: दोस्तों स्मिता पाटिल ने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन पर समाचार वाचिका के रूप में की। उनकी सशक्त आवाज और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उसी दौरान प्रसिद्ध फिल्मकारों की नजर उन पर पड़ी और उन्हें फिल्मों में काम करने का अवसर मिल गया।
5: दोस्तों 1970 और 1980 के दशक में भारतीय समानांतर सिनेमा एक नए दौर से गुजर रहा था। इस आंदोलन में स्मिता पाटिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं, शोषित वर्गों और सामाजिक संघर्षों से जुड़ी महिलाओं के किरदारों को बड़ी संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर प्रस्तुत किया।
4: दोस्तों उनकी प्रमुख फिल्मों की अगर हम बात करें तो भूमिका, मंथन, आक्रोश, अर्थ, मिर्च मसाला और चक्र जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में उन्होंने केवल अभिनय नहीं किया है बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की पीड़ा, संघर्ष और भावनाओं को जीवंत कर दिया है।
5: दोस्तों एक महिला कलाकार के रूप में उन्हें उद्योग में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस दौर में महिला केंद्रित फिल्मों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, फिर भी उन्होंने अपने अभिनय के दम पर यह साबित किया कि एक महिला कलाकार भी फिल्म की सफलता का केंद्र बन सकती है।
4: और दोस्तों दुर्भाग्यवश स्मिता पाटिल का जीवन बहुत लंबा नहीं रहा, क्योंकि 13 दिसंबर 1986 को मात्र 31 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। स्मिता पाटिल भारतीय सिनेमा के इतिहास में सदैव सम्मान और गर्व के साथ याद की जाती रहेंगी।
5: और दोस्तों अब सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गाना।

अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

0: दोस्तों, अब वक्त है जानने का कि हमारे कल के सवाल का सही जवाब देकर कौन बने हैं हमारे विनर्स। तो आइए सुनते हैं हमारा कल का सवाल।
1: तो दोस्तों, कल का हमारा सवाल ये था कि वर्ष 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन से देश संयुक्त रूप से कर रहे हैं, और इसका जो सही उत्तर है वो है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको।

0: दोस्तों जिन्होंने सही जवाब दिए हैं ये हैं उनके नाम, चंदा चंदौली से, ग्राम पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, पता लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढक से, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से, प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से, सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, नेपानगर मध्य प्रदेश से, प्रभुदयाल शिवदे, शिवा, बसंती बाई और गणेश शिवदे, संगीत की नगरी खंडवा से श्यामाबाई रायकवार, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से रवि मौर्य।
1: तो इन सभी साथियों को पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, और चलिए इसी के साथ साथ भाई एक और अवसर हम आपको देने जा रहे हैं विनर बनने का आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तो सुनिए हमारा आज का प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हमारा आज का जो प्रश्न है वो है, लॉयन स्पीशीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ किया गया था। एक बार फिर से मैं आपको प्रश्न रिपीट कर देती हूँ, लॉयन स्पीशीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ किया गया है। और इसका जो आंसर है वो आपको पता है कि कहाँ भेजना है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फिर से हम बता दे रहे हैं इसका आंसर। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल यानी youth वाराणसी पर जाकर, या फिर हमारे ईमेल के पते यानी कि youth@vns.gmail.com पर जाकर के फटाफट भेज दीजिए और बन जाइए हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हमारे अपने ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की लगभग 9 दशकों की यात्रा पूरी हो रही है। बॉम्बे से एक निजी रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई थी, और फिर 8 जून को जब इसे ऑल इंडिया रेडियो का नाम मिला तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये आवाज़ पूरे देश की कुछ इस तरीके से पहचान बन जाएगी।
0: दोस्तों वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय आकाशवाणी के पास केवल 6 केंद्र थे, लेकिन आज यह 500 से अधिक केंद्रों के साथ भारत के कोने कोने तक पहुंच चुका है। आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण सेवा नहीं है, बल्कि भारत को जोड़ने वाली आवाज है।
1: 290 साल की इस यात्रा में आकाशवाणी ने आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए डिजिटल इंडिया की दिशा में भी कदम बढ़ाया है, और मोबाइल ऐप, इंटरनेट रेडियो और पॉडकास्ट के जरिए यह नई पीढ़ी से भी देखा जाए तो बड़ी तेजी से जुड़ रही है। और ये हम युवाओं का ही कर्तव्य है कि हम इसे आगे बढ़ाते रहें और यूं ही जो इतनी ऊंची ऊंचाइयां हैं इसके साथ छूते रहें।
0: बिल्कुल, और नेहा आगे बढ़ने के लिए हमें शब्द जानना भी जरूरी होता है, क्यों?
1: बिल्कुल बिल्कुल जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये शब्द ही हैं जो हमारी भाषा शैली को बहुत ही सुंदर बनाते हैं और उसके साथ साथ उसे प्रभावशाली भी बनाते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो हमारा आज का इसी में हिंदी का शब्द है प्रावधान। प्रावधान का अर्थ होता है दोस्तों किसी कार्य, नियम या व्यवस्था के लिए पहले से की गई व्यवस्था या निर्धारित नियम।
0: दोस्तों, इसका वाक्य प्रयोग होगा, नए अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
1: और हमारा आज का अंग्रेजी का शब्द है दोस्तों एल्यूसिव,
0: इसकी स्पेलिंग है ELUSIVE। इसका अर्थ होता है
1: जो आसानी से समझ में न आए, हाथ न आए या प्राप्त करना जिसे कठिन हो।
0: और
1: और
0: दोस्तों इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा,
1: द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम रिमेन्ड एल्यूसिव। दोस्तों समस्या का समाधान अभी भी आसानी से मिल सका। और देखा जाए तो अब हमें कार्यक्रम में आगे बढ़ना है और भी जानकारियां हमको आपको देना है। तो हमारा आज का दिन का ये जो विशेष है इतिहास से जुड़ा हुआ वो ये है कि आज ही के दिन 5 जून 1898 को प्रसिद्ध स्पेनिश कवि और नाटककार फेडरिको गार्सिया लोरका का जन्म हुआ था। उन्हें 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली साहित्यकारों में गिना जाता है और उनकी रचनाएं आज भी विश्व भर में पढ़ी जाती हैं।
0: और दोस्तों अब समय है आज की रोजगार सूचना को जानने का। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI द्वारा अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत 7,150 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसकी अंतिम तिथि है 15 जून 2026 और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in।
1: और इसी के साथ साथ दोस्तों अब हमारे कार्यक्रम में आगे बढ़ने का भी वक्त आ गया है, और हमारे कार्यक्रम में आज आगे बढ़ते हुए एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि दोस्तों आने वाले सप्ताह में केंद्र सरकार अपने 12 वर्ष पूरे करने वाली है, और ये मौका

0: बहुत खास है, क्योंकि इन वर्षों में भारत ने जो डेवलपमेंट किया है वो काबिले तारीफ है।
1: बिल्कुल, और हम छात्रों के लिए तो सबसे खास है नेहा, क्योंकि हमारे भविष्य को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए नई शिक्षा नीति NEP 2020 भी लागू की गई है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है।
0: बिल्कुल, तो इसी तरीके से सरकार की इन योजनाओं के भरोसे अगर मैं हम आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें तो हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इस 12 वर्षों के साथ जो उपलब्धि सरकार ने हासिल की है, हम भी आने वाले वर्षों में इसके साथ बहुत सारी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब हमारे कार्यक्रम में देखा जाए तो जाने का भी वक्त पास आ गया है, पर जाते जाते आपसे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आज सिर्फ और सिर्फ आज का दिन इसलिए खास नहीं है क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, बल्कि और भी चीजों की वजह से ये दिन खास है। और अब हमारा ये कर्तव्य है कि आज के दिन हम ये ठाने कि हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, और जो जिम्मेदारी हम अपने लेवल पर आलिया निभा सकते हैं उसे जरूर निभाएंगे।
1: बिल्कुल, लेकिन नेहा जो तुम पेड़ लगाने की बात कह रही हो ना, ये भी एक तरह का अनुशासन है, डिसिप्लिन है, जिसे हमें पूरा करना चाहिए। और स्टूडेंट लाइफ में तो तुम जानती हो ना, डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल, किसी भी काम को अगर मैं हम इनिशिएट कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर डिसिप्लिन में होना बहुत ही जरूरी है। तो कोशिश करिए कि आप अच्छी, हेल्दी, वेल्दी और खुशनुमा जिंदगी जिए, और हमारा कार्यक्रम भी सुनते रहिए। हम युवाणी के किसी अगले अंक में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और कार्यक्रम ऐसे ही सुनते रहिए। आज की ये दो रेडियो साथी यानी कि मैं नेहा
1: और मैं आलिया,
0: का नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। मीडियम एफ 241.5 सेंटीमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, डीटीएच, ओटीटी वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिन्हें हम गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस के मौका पर आज लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में पौधा लगा के प्रदेश व्यापी एक पेड़ माँ के नाम महाभियान का शुभारंभ कयने। मुख्यमंत्री ओइजा महर्षि चरक औषधि वन के स्थापना कार्यक्रम में शामिल भयने। इस मौका पर मुख्यमंत्री कहने कि धरती माता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करत एक पेड़ माँ के नाम महाभियान के सफल बनावे बदे हर मनई अपने माता के नाव पर एगो पेड़ जरूर लगावे।
1: आज हम 5 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को प्रदेश भर में लगा रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान के साथ, और यह अभियान आगे बढ़ेगा वन महोत्सव के अवसर पर। जब थोड़ा बरसात हो जाएगी तो जुलाई मास में अगले महीने ही एक दिन में बड़ा अभियान चलेगा जिसमें 35 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम, महाअभियान का कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम प्रदेश का हर नागरिक लगाएगा, हर व्यक्ति के नाम पर लगेगा जो अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाएगा। और प्रकृति इस धरती माता के प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन उसके माध्यम से करेगा।
0: पृथ्वी पर जीव के जिंदगी का उपयोगिता बनावे रखले और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ावे बदे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत आज विश्व पर्यावरण दिवस मनावल जा रहा हो। इस मौका पर आज पूरा प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगावल गयी। एगो रिपोर्ट।
2: महाराजगंज में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। एक अन्य कार्यक्रम में महाराजगंज जिले के प्रभारी मंत्री दया

0: विश्व दयानी ने भी पौधारोपण किया। संत कबीर नगर के जिलाधिकारी आलोक कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण किया। कौशाम्बी और रायबरेली समेत कई जिलों में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के बलिया में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहा ताल के भारत का सौवां रामसर स्थल घोषित कर गए पर खुशी जतौले हमें। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहने कि देश का प्राकृतिक परिवेश और खास तौर से आद्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत का अटूट प्रतिबद्धता एमे झलकेला। वाराणसी में काल से शुरू भइल दो दिन के ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह का बैठकी आज सांस्कृतिक सहयोग को कई गो प्राथमिकता वाले क्षेत्रन पर विचार विमर्श के साथ पूरा हो गई। संस्कृत मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई दो दिन के बैठकी के बारे में जानकारी दिए।
2: कल और आज दो दिन के जो हमारी प्रोसीडिंग है उसमें जो हमारा थीम है ब्रिक्स का इंडिया 2026 का विच इज बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इन्हीं पांच जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके ऊपर चर्चा हो रही है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी पीएसी एसडीआरएफ आ उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के आधुनिकीकरण क्षमता विस्तार प्रशिक्षण अवस्थापना विकास आ भावी कार्य योजना का पूर्वर समीक्षा कैने। प्रस्तुत बाई को रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पीएसी एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जाए और सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाया जाए। श्री योगी ने महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से पीएसी की महिला बटालियनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बदायूं लखनऊ और गोरखपुर स्थित महिला पीएसी बटालियन परिसरों में क्रमशः वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी वीरांगना उदा देवी और वीरांगना झलकारी बाई की अश्वरोही प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए। समाचार कहते मैं अरुण।
1: गोरखपुर के साथ ही प्रदेश के कुछ और जिलों में आज दिन में भीषण गर्मी आ उमस के बीच अचक्के आसमान में बादल छा गयी और कहीं कहीं हल्लुक से लेके मध्यम बरखा भइल। मौसम विभाग राज्य में बिहनों कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का संभावना जतौले हो। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी आ पश्चिमी जिलों में 7 जून ले मौसम शुष्क रही। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर। कार्यक्रम विवरण में आइए आपको जानकारी दे दें आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रम के प्रसारण के संबंध में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनेगा देवाशीष दे का गायन। रात्रि 10 बजे सुनेगा खेल पत्रिका कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे क्रिकेट का बदलता स्वरूप विषय पर खुर्शीद अहमद से चंदन सिंह की बातचीत। रात्रि 8:10 पर सुनेगा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे कलाकार होंगे ए हरिहरन। अंजुमन कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 9:30 पर। कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनेगा विश्व पर्यावरण दिवस व इसका महत्व विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे श्रवण कुमार यादव। साथ ही साथ किसान भाई सुनेंगे सुदर्शन यादव साथी का गाया लोकगीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे और शाम 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम में। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल दिनांक 6 जून 2026 दिन शनिवार के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनेगा

रात्रि 10 बजे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम सुनेगा कल सुबह 9:30 पर, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनिएगा रात्रि 8:10 पर। हिंदवार्ता कार्यक्रम में महादेव वर्मा की रचनाओं में स्त्री विमर्श विषय पर सर्वजीत सिंह की वार्ता सुनेगा कल शाम 7:31 पर।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल सुबह 7:31 पर और कल दिन 12:45 पर सुनेगा अलंकृता राय का गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल दिन 12:30 पर सुनेगा स्मृति शुक्ला का गाया गीत और इसी कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे सुनेगा चंदन दास की आवाज में चंद गजलें। खेती की बातें कार्यक्रम में कल प्रातः 6:05 पर गर्मी की जुताई का महत्व विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुनेगा कल प्रातः 6:10 पर। विचार बिंदु होगा कल प्रातः 6:30 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:35 पर विटामिन की कमी से होने वाली समस्याएं विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर बीरेंद्र बहादुर सिंह। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुनेगा कल प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस सुनेगा कल सुबह 7 बजे। मधुरमा सुनेगा कल सुबह 8:45 पर। लोक संगीत कार्यक्रम में कल सुबह 9:50 पर और कल दिन 1:45 पर कलाकार होंगे शुभम जायसवाल। इनके गाय लोकगीत आप कल शाम 6:30 पर केशगत कार्यक्रम में भी सुन सकेंगे। साथ ही साथ केशगत कार्यक्रम में धान के उन्नत प्रजातियां विषय पर डॉक्टर पवन कुमार से बातचीत भी आप सुन सकेंगे। अंगनैया कार्यक्रम में कल दिन 1:15 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी दशकों का टूट विश्वास बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विषय पर प्रतिभा त्रिवेदी से बातचीत और गीत संगीत। कल सुबह 10 बजे सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। ये थे कल के प्रमुख कार्यक्रम। अभी आप कार्यक्रम विवरण में सुन रहे थे आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आइए सुने फिल्म संगीत एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
0: यह गीत हमने लिया है फिल्म चांदनी से। आवाज लता मंगेशकर की है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं शिवहरी।

और अब एक बार और आयेश ने लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम अर्पण।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्ये 18,800 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः तथा औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। केन्द्र सर्वकारेण विदेशी संस्थागत निवेशकेभ्यः करेषु महत् शैथिल्यं प्रदत्तम्। भारतीय रिजर्व बैंकेन स्वस्य नवीन मौद्रिक नीति समीक्षायां प्रमुख कुसीद दराः यथावत् स्थापिताः। पुनःक्रयण दरः 5.25% यावत् स्थास्यति। नेपालदेशस्य विदेशमन्त्री शिशिर खनालः अद्य आरभ्य त्रिदिवसीयां यात्रायां भारतयात्रायां दिल्लीं सम्प्राप्नोत्। अद्य विश्व पर्यावरण दिवसः समग्रेपि विश्वे आमान्यते। प्रशासनेन दिल्ल्यां 18 नमो ऑक्सीजन पार्क इति उद्यानानि उद्घाटितानि। अपि च पुरुषाणाम् अष्टादश वयसः एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। विकास परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान् प्रधानमन्त्री मोदी। भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,800 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः तथा औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। सः आदौ हजीरा

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। महीने में 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम राम
1: राम।
0: सुद।
1: सत्तू भैया,
0: अरे का सुधु भैया।
1: ए भैया, बतावत है कि अब कौनो कहे के बात तो नाही बात, सभी महसूस करत बात। घाम देखा जौन होथन है,
0: हाँ
1: एकदम समझ ला कि समझ पूरा शरीर जैसे झुलस जाए। और एक बात देखा में हमारे आवत हो कि हर साल जौन हो ये गर्मी बढ़त चल जात हो,
0: बिल्कुल
1: तोहार
0: भाई।
1: का कहना है?
0: अरे एकदम भैया, देखाई कि नहीं देखो तो लग एकदम शरीर तप जात है, और तपन के साथ साथ जो उन घरे में गदेला लोग हो ना, हरदम एकदम घमौरी, चाहे कहल जाओ कि दाना होखल शरीर पर एकदम, मैंने डॉक्टरों लोग भैया लोग कहते लोग भाई ये सब गर्मी की वजह से होता, जितना हो सके बच्चन के ठंडा द, लेकिन कहाँ से लोग ठंडा दी हाँ जब।
1: ठंडा तो भाई देखा बच्चन के जौन हो ना, जवन तू खियबा तौन खई है ना। अब मौसम के हिसाब से बच बचा के भी रखे के ना, बच्चन से बात मत कहे ना, तो कह देबा तो लगे वो बर्फ खरीद के खाए
0: ना ना
1: ठंडा
0: ना,
1: रहे।
0: हम ठंडा देवे वाली बात जानते हो सुधु भैया कौन कहती कि भाई तुम लोगों के मौसम के ठंडा रखा, जो ऐसा वातावरण दो कि तनी जो ठंडा रहे, लेकिन भाई हर जगह ये तो गर्मी मार गर्मी गा मार गर्मी पड़ जाता, कहाँ से उन लोगों के भाई अपने वातावरण, जब वातावरण इतना गर्म हो जाता। और एक और चीज देखा सुधु भैया, गर्मी जितने गर्मी पड़ती है उतने मौसम को उतार चढ़ाव भी होता। ये जान ला कि कहल जाओ कि मार्च अप्रैल से लेके और अब ले देख ला, हर चौथे दिन पांचवे दिन आंधी तूफान, बिजली का गर्जन, कहीं बरखा। आ कितना लोग को तो हमारे यहाँ झगड़ू भैया का चार पांच गो बोझे कुल इधर से उधर चल गए, मिलबे ना कैल। और सुधु भैया उतार चढ़ाव के संगे संगे ई जान लो ना कि इहो देखे में होता है कि जो अपन अगले बगल का प्रदेश हम वहाँ भी कहीं गर्मी की वजह से, या कहीं यो सुने में आता कि जोन पहाड़ी की अगल बगल का प्रदेश हो वहाँ भी मौसम का एकदम यही घोर बदलाव हो जाता हो।
1: बिल्कुल सही कहा हुआ। और भाई बात बदलाव के बाय, बाकी अब जो गर्मी के अगर हम बात कर लिया ना, तो बाल बच्चन के जो बात कहला ओकरे साथे साथे अपन पशु चौवा देखा जीव निकाल के हाफत हो है। और जौन खेते में साग सब्जी लगल बा, पत्ती ओकर झुलस जात बा, कितनो पानी ओकरे जड़ में दहले रहा कियारी में हो, बाकी तो पत्ती देखा तो एकदम लटकल रहत हो, झुलस जात
0: अरे
1: बा,
0: भैया ये
1: जानला
0: जान
1: ना।
0: ला कि जोन हम अबे सब्जी को खेती कैल रही है ना, मार देखी हमारी खेते की अगले बगल जितना कुल मूस रहना अपन मान बना बना के, भाई जमीनों न गर्म हो जाती है सुधु भैया।
1: एकदम
0: और
1: बिल्कुल।
0: ये जान ला कि वो कहाँ जइह, तो जितना सब्जी की अगले बगल हमार पानी रेंग जा या चल जा, वहाँ चाहे सब्जी में जहाँ जगह उन्होंने के मिले वहाँ कुल मीन खोद खोद के कुल पड़ल हुआ, और इतने नाही जब हम पानी चलावत है तब वो निकलियाँ उम्मे जैसे खेली हाँ भाई, उनके भी इतना गर्मी होता
1: और नहीं
0: ना।
1: भाग भाग घरे में आई है, कुल अनाज खाई
0: बिल्कुल
1: है, नुकसान करी
0: बिल्कुल
1: है, कुल
0: भाई खेते में
1: कपाल
0: से
1: लता
0: हाँ,
1: कटी है।
0: अब भाई जहाँ उन्होंने को ठंडा मिली सब वो तो जीवन
1: बिल्कुल
0: ना हुआ, वो तो अपना के
1: एकदम
0: ठंडा खोजत हुआ। तो ये जान लो सुधु भैया कि हमनी के ना अपनी वातावरण के सही रखे खातिर कुछ ना कुछ उपाय, और कुछ देखो उपाय तो हर कहल जाओ कि स्तर पर होता, वो चाहे वैश्विक स्तर रखो, चाहे अपन देश का स्तर रखो, चाहे अपन खेती किसानी का भी स्तर रखो, भाई हम कहल जाला ना चाहे वो केहू कहेला कि किसान सबसे बड़ा हमनी के पर्यावरण के संरक्षक हुआ, या कहल जाओ कि सबसे बड़ा योगदान देना अपनी पर्यावरण बदे।
1: भाई इतना समस्या गिनाए देला, हम कहते कुछ इस पर गंभीरता से विचार भी करे के जरूरत हो, हम तुह किसान भैया लोगन के, श्रोता भैया लोगन के, सबके मिल करके कि आखिर ये समस्या आवत काहे के हो, जानल ना। तो अगर गंभीरता से सोचा ना, तो भाई विज्ञानी भैया लोग भी देखा यह कहना कि कुल का मूल जौन हो ये अपने धरती पर जौन हरा भरा

0: क्षेत्र हो, जंगल हो, है ना, और पेड़ पौधा हो, एकर भी एक अनुपात अपने मानव संपदा के साथे हो, जानला ना, जौन
1: बिल्कुल,
0: ये धरती पर हम तू बाकी लोग सब लोग निवास करत हो,
1: हाँ
0: रहत
1: हाँ
0: हो, तो एकर एक अनुपात हो, आ वो अनुपात देखाओ जोनो का होत हो,
1: कम बेसी
0: गड़बड़ाए
1: होई,
0: जात हो।
1: हाँ कम बेसी होई तो भाई देखा अपन वाता अपन ये पर्यावरण में दिक्कत आई।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम कहीं कि ये समस्या जब इतना गंभीर रूप से बात, तो सबके मिल करके एक गंभीर समस्या के दूर करे बदे के सोचे के पड़ी
1: बिल्कुल।
0: कि का का हमें करे के हो और का ना करे के हो।
1: तो भाई देखा सोचे के संगे संगे देखा ना आज का दिन भी बड़ा बढ़िया है। अगर आजे हमने का ये प्रण ले लिहल जाए भाई, पहले से भी लेत आवत हैं जा, लेकिन अगर जे ना अपन ध्यान देता वो आजो से अगर सोचे
0: जबे
1: समझे
0: जागा तबे सवेरा।
1: बिल्कुल। तो भाई आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज जवन कि
0: वाह,
1: हर हर वर्ष 5 जून के मनावल जाला, और
0: हाँ
1: एक उद्देश्य ये है कि वैश्विक स्तर पे जितना अपने विश्व में रहे वाला जीव जंतु मनुष्य प्राणी जितना माने
0: पेड़
1: जे
0: पौधा
1: हाँ
0: सब
1: एकदम जे जैसे भी जे हमने के
0: प्रकृति से
1: पर्यावरण
0: लाभ हो।
1: हाँ प्राकृति से लाभ हो वो कर रक्षा करी, और
0: बिल्कुल।
1: कोई रक्षा करे बदे सबसे पहला योगदान हमनी प्राणी मनुष्य का रही, ऐसे रही कि भाई हमनी का जानकार हैं जा, समझदार हैं जा, हर चीज में भाई अगर हमनी के लगे भगवान दिमाग दिले हों, कहल जाओ कि भाई पशु प्राणी के लगे तो दिमाग ना न, लेकिन उनकर भी हमनी के पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान होला। देखा कुछ खइह कोनो कोनो अनाज या कोनो चीज कोनो फल खइह तो ओकर पगुरी करिह ले जाके दूसरे जगह, या कहल जाओ कि गोबर करिह तो देखे लगी ए जकिया का उनमें जो ओकर बीज रह जाला गोबर में उहो पेड़ पौधा जम जाला। तो देखो
0: बिल्कुल
1: उनकर भी हल अपन अपन योगदान है, लेकिन भाई अगर भगवान हमनी के दिमाग बुद्धि देले हुआ तो हमनी के एकरी बारे में पर्यावरण के बारे में ज्यादा सोचे के है और ज्यादा एकर ध्यान देवे के है।
0: एकदम सही कहत हुआ। और सोचा का मतलब ये है ना कि अगर अपने अगले बगले कहीं भी जहाँ देखे कि हाँ उचित हो, पेड़ पौधा लगौले से कोनो घर मकान के नुकसान न होई, अपन फसल उत्पादन के नुकसान न होई, तो वो जगह का पूरा पूरा उपयोग पेड़ पौधा लगाओ बदे करें। और देखा ये जो चलत हो मौसम, ये समय ये मौसम गड्ढा खोदे बदे के एकदम उचित हो।
1: बिल्कुल।
0: अगर लगावल चाहत हुआ पेड़ पौधा आवे वाले समय में, महीने में, तो भाई यही समय गड्ढा के खुदाई कर लें, ओकर मट्टी जो निकाल करके बहरे निकाल के रख दें जैसे कि तैसा सुनाया जाए, है ना। और ओकरे बाद जौन हो जब बरखा होए तब तो उमन खाद भर करके और गोबरे का, और ओकरे बाद जौन हो मट्टी डाल के पौधा लगा दे, कब्भो देखा न देवका लगी और न तब बढ़वार विकास रुकी, खूब फली फूली पौधा।
1: सुधु भैया ये जान लगे जो तू कहला है ना कि अपने घरे के अगले बगल या जहाँ भी जगह खाली रहे, इसे जान लग कि हमनी का वातावरण तो शुद्ध होते हैं, लेकिन जो अपनी खेती बदे मृदा है ना ओहू कैसे हमनी का संरक्षण कर सके नहीं जाए, ओहू के कटाव से रोक सके नहीं जाए
0: बिल्कुल।
1: ये अपनी पेड़ पौधा के लगैला से। काहे से कि देखा जितने पेड़ पौधा रही हैं उतने हमनी का माटी बची। भैया देखा कहल जाओ अब पिछले ही साल देख ला सितंबर अक्टूबर नवंबर में कितना बारिश भइल भइल ना,
0: पौड़ गए कुल
1: एकदम
0: बोझा।
1: पौड़ गइल एकदम पानी से माने लबालब हो गइल, एनी से ए ओर से वो ओर धार चल जा
0: बिल्कुल
1: आ
0: बिल्कुल
1: कितना
0: बिल्कुल।
1: माटी कट के गइल। अब लोग तो भाई जे किसान है जे देखा था वो जाना था,
0: बिल्कुल
1: तो ई जान ला कि ओहू से अगर हमनी के बचाव करे के है ना तो पेड़ पौधा ही जरूरी है।
0: एकदम। देखा पेड़ पौधा का जो जड़ होना ना भाई, वो अपने मट्टी के कटाव के रोकन है,
1: बिल्कुल।
0: जानल। और एकरे साथ साथ जो वातावरण में एक कहल जाए कि शुद्धिकरण का काम करना है, ये पेड़ पौधा हुआ
1: बिल्कुल
0: कौनो मशीन ना केकरे घरे लगल हम बतावा
1: ना ना
0: कि ये
1: कौन
0: जौन हो वातावरण के हवा में जौन हो गंदगी हो या जौन ऐसन गैस कुछ हैं जौन कि अपने शरीर बदे के मानव प्रजाति बदे के नुकसान हैं, है ना,
1: अरे
0: ओके
1: सुधु
0: साफ करो थोड़ी बतावा था।
1: सुधु भैया ये जान लग कि वैज्ञानिक भैया लोग वातावरण का प्रदूषण नापे बदे मशीन बना देना,
0: हाँ
1: लेकिन ओके सही करे बदे मशीन ना बन
0: नहीं
1: पावतिया आ ना बन पाई।
0: भाई, अब भविष्य का हुई तो हम तू ना जाना थी, विज्ञान कहाँ से कहाँ जा सकला। बाकी तो अब ही जो वर्तमान में समस्या बा, एक मिलजुल के सोचे के जरूरत हो। आई देखा केहू का विषय ना हमार पर्यावरण ना तोहार हो, इस सबकर पर्यावरण हो,
1: बिल्कुल।
0: यही पर्यावरण में सब एक साथे रह के सांस लेला, सब ही जियत खात हो, है ना, चाहे पशु चौआ हो, चाहे अपन खेती किसानी हो, चाहे हम तू जीवधारी हुई,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: भैया।
0: तो एक शुरुआत कहाँ से करे के हो कि पेड़ पौधा लगावे से हो, अधिक से अधिक कहे से दिखाओ हमारे विकास के रास्ते पर चलत ही।
1: बिल्कुल भैया।
0: आए दिन देखा तो नई नई सड़क कुल बन जाते।

0: जौन सड़क सकरी है चौड़ी हो जात हैं, तो उनके समझ ला कि सीमा में जौन भी पेड़ पौधा आवत हुआ, समझ ला कि 100 साल पुराना बरगद पीपर कितना कट गई ना हो,
1: हाँ
0: भाई
1: हो,
0: विकास भी जरूरी
1: हाँ
0: है।
1: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
0: बाकी तो ओकरे जगह पर कुछ नया पौधा लग जाए जिससे कि ओकर कमी जौन है कुछ ना कुछ पूरी हो जाए।
1: सुद्धू
0: जल्ला
1: भैया ये जानला कि सरकार लगाओ तो हो भाई, लेकिन वो सरकार लगावत है, लेकिन कहल जाला ना कि ये सिर्फ एगो सरकार का मुद्दा ना है,
0: सबकर
1: ये सबकर काम हो।
0: एकदम
1: हमनों के
0: एकदम
1: देखभाल करे के हो, मान लो कोनो
0: एकदम
1: पशु पेड़ पौधा के अगर सरकार की तरफ से लग गई है, तब भाई अगर कोनो जीव जंतु के नुकसान करत हो तो देखो हमनों को के हटा देवे के हो, हाक देवे के
0: एकदम
1: हो कि नहीं कगरी हो जाए।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: भाई
0: बिल्कुल
1: देखो हर चीज कहल जाला ना सुद्धू भैया कि सब अगर हमनी के मनई मिल के
0: हाँ।
1: आ ओकर देखभाल ओकर रक्षा कर जाओ तो देखो कोनो आफत दिक्कत
0: कोनो ऐसा
1: अपनी।
0: काम ना जो ना संभव
1: हाँ
0: हो, कुल
1: एकदम एकदम
0: समस्या का समाधान बा, और ओकरे साथ साथ अपने माटी के बचाव बदे के देखा पूरा प्रयास करे के चाही।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: ओकरे बदे विज्ञानी भैया लोगन के यह सलाह हो कि जैविक खेती,
1: बिल्कुल।
0: और जैविक खेती बदे जौन हो तत्व चाही वह हो गोबर। और गोबर कहाँ से आई, जब अपने पशु चौआ रही,
1: एकदम
0: पशु चौवन के समझ ला कि पालन पोषण में संवर्धन करे के बा, उनका जौन गोबर बा उसे भाई खाद बनावा, दूध पिया है, तब भाई हर तरह का फायदा बा, पर्यावरण में भी शुद्ध रही और समझ ला कि सब जनजीवन एकदम बढ़िया से चली।
1: बिल्कुल देखा जो ना हमने का पुरानका ढर्रा रहे ना सुद्धू भैया,
0: हाँ
1: वही पर जितने चलल जाए,
0: हाँ
1: कहे का मतलब कि औद्योगिक पन में हमनी का ढेर ना डूबल जाए, हमनी के हर चीज के बराबर लेके चलल जाए, हर चीज को संतुलित करके चलल जाए ना, तो ये जान ला कि एकदम हमनी का जीवन और आवे वाली पीढ़ी का जीवन एकदम संतुलित रही और बरकरार रही और बढ़िया ढंग से चलत रही।
0: भाई औद्योगिकरण का जब युग जमाना चलत बा तो हम तो साथे चलक पड़ी।
1: बिल्कुल
0: बाकी तो ओकरे मानक के जो पालन करते
1: हाँ
0: हुए, अब ओकर गैस निकाले बदे के जहरीली गैस समझ ला कि जो मानक बनावल हो कि इतना ऊंचाई पर चिमनी ले जाए करके तब गैस ओकर निकले जैसे कि ओकर दुष्प्रभाव धरती पर ना आवे है, अब तू जो हो ओके कम कह देला ना ही ओकर पालन करत हुआ तो निश्चित रूप से ओकर दुष्प्रभाव
1: बिल्कुल।
0: पड़ी।
1: और
0: या कल कारखाना के देखा जो पानी हो जहरीला ओके जो है चोरी छुपे नदी में जो है नाला के माध्यम से मिला देला, पानी जहरीला हो गया, मछली मर गई नहीं है, और ओके और पशु चौआ पी है उन्हों के नुकसानी पहुंची
1: बिल्कुल
0: है ना। तो इस सब प्रदूषण से देखा हम तो है जो बच बचाए के रह के हो, और अगर ऐसा देखत हुआ कहीं तो ओके रोके के भी
1: और
0: जरूरत
1: सुधु
0: हो।
1: भी यही जान लो ना कि सरकार भी एकर उपाय करेला कि जितने हमनी का आगे विकसित होते जातनी जा
0: हाँ
1: उतने पर्यावरण के सुरक्षित रखे बदे पेड़ पौधा या जितना जौनी चीज से कहल जाओ कि हमनी का पर्यावरण सुरक्षित रहे ना, वो चीज के फैलावल जाला, वो
0: बिल्कुल
1: चीज के बचावल जाला, वो चीज का मैंने अपनी कहल जाओ कि अपने समाज में रखल जाला।
0: एकदम
1: तो देखा सब जागरूक रहे, सब बढ़िया से अपने पर्यावरण का रक्षा करे, यही बदे ये अपन दिवस मनावल जाता। और सुधू भैया
0: भैया
1: हम तो कहो कि आगे बतकई हुई लेकिन है सने से सुनवा दिया जा।
0: सुनवा दो।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
6: आकाशवाणी आकाशवाणी।
0: सत्तू भैया
1: हाँ भैया
0: भाई संदेश देखा सुनवा देला पंच भैया लोगन के, और आज का जो दिन बतौला है ना तो हमें लगा था कि ऐसे पवित्र और दिन कोनो नहीं हो सकत
1: बिल्कुल भैया
0: है,
1: जब
0: जो विश्व पर्यावरण दिवस आज हो पूरे
1: बिल्कुल
0: विश्व का
1: एकदम भैया
0: एक मानत हो पूरा विश्व
1: भी अरे
0: है ना।
1: एकदम ही जान ल कि एपन एकर बहुत बढ़िया बढ़िया एपन बात कहल गई हो और पूरा विश्व केंग ने मनैलस न। देखा आज हमनी के बीच में वही पर वार्ता है कि विश्व पर्यावरण दिवस
0: एकर
1: का
0: का
1: है
0: महत्व
1: और
0: ना।
1: एकर महत्व का बाटे। श्रवण कुमार यादव का वार्ता है, आओ भैया लोगन के सुनावल जाए, खुदो
0: सुनवादा
1: सुनल जाए।
0: सुनवादा।
7: किसान भाइयों, हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में। पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता वायु, जल, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। पर्यावरण केवल

मनुष्य के जीवन को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि समस्त जीव जगत के अस्तित्व का भी आधार है। स्वस्थ एवं संतुलित पर्यावरण मानव के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, किंतु औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन तथा प्रदूषण के कारण पर्यावरणीय संतुलन निरंतर बिगड़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि, जैव विविधता का ह्रास, जल संकट तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन बढ़ती हुई पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति विश्व समुदाय को जागरूक करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन के उपरांत की गई थी। वर्ष 1974 से इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारें, गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान तथा आम नागरिक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों में भाग लेते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक आवश्यकता बन चुका है। पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, हिमनद पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है तथा अनेक वन्य जीव और वनस्पति प्रजातियां विलुप्त के कगार पर पहुंच रही हैं। इन समस्याओं का सीधा प्रभाव मानव जीवन, कृषि, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक और सामाजिक दायित्व भी है। पंचो भारत जैसे विकासशील देश में पर्यावरण संरक्षण का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि यहाँ तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि क्षरण तथा वनों की कटाई जैसे समस्याएं देश के विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर रूप धारण कर चुकी हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे परियोजना तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसी पहले शामिल हैं। विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है बल्कि यह मानवता को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कराने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत, प्लास्टिक के उपयोग में कमी तथा स्वच्छता को अपनाना आवश्यक है। साथ ही पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः यह कहा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति वैश्विक चेतना विकसित करने तथा सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह दिवस हमें प्रकृति और मानव के बीच संतुलित संबंध स्थापित करने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और हरित पर्यावरण सुनिश्चित करने की प्रेरणा प्रदान करता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक प्रयास ही पृथ्वी को रहने योग्य बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। किसान भाइयों, अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व क्या है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, यह दिवस लोगों को पर्यावरण की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जागरूक करता है। प्रदूषण नियंत्रण, वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए समाज को प्रेरित करता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल, वन

0: भूमि और खनिज जैसे संसाधनों के संतुलित उपयोग का संदेश देता है। जैव विविधता की रक्षा, वन्य जीवों, पौधों तथा प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। सतत विकास को बढ़ावा, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। किसान भाइयों, आइए अब हम बात करते हैं पर्यावरण को कैसे बचाएं और इसका संरक्षण कैसे करें। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं तथा जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। प्लास्टिक का कम उपयोग करें, एकल उपयोग प्लास्टिक से बचें और कपड़े या जूट के थैलों का प्रयोग करें। जल का अनावश्यक उपयोग न करें तथा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दें। ऊर्जा की बचत करें, बिजली के उपकरणों का उपयोग आवश्यकता अनुसार करें और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाएं। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा दें। निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने को प्राथमिकता दें। बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के महत्व से अवगत कराएं। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम आज पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर पर्यावरणीय संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे। इंडियन काउंसिल बार एनवायरो एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि पर्यावरण संरक्षण की समस्या आज विश्व के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती है। आज मानव जाति इससे त्रस्त है। न केवल मानव जाति बल्कि पशु पक्षी भी पर्यावरण प्रदूषण से व्यथित हैं। प्रदूषण चाहे हवा का हो या जल का, मानव जाति के लिए घातक है। अब समय आ गया है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करनी होगी। राम नारायणी माली बनाम एडिशनल कलेक्टर ठाणे बम्बई के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण का अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक अंग है। हम कह सकते हैं कि पर्यावरण वह परिवृत्ति है जो मानव को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उसके जीव अथवा क्रियाओं पर प्रभाव डालती है। इस परिवृत्ति में मनुष्य के बाहर के सभी घटक, वस्तुएं, स्थितियां तथा दशाएं सम्मिलित होती हैं, जो मानव के जीवन को प्रभावित करती हैं। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण की उपज है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा। इसका अर्थ है हर अवस्था में मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक असंख्य चीजों से घिरा हुआ होता है और ये असंख्य चीजें जो मानव और उसके जीवन को प्रभावित करता है पर्यावरण कहलाता है।
1: क्या हो सत्तू भैया?
2: हाँ भैया।
1: अरे बड़ी नगद के बात कही सुनू बला हो।
2: हाँ हो।
1: ये वार्ता जो हो विश्व पर्यावरण दिवस और एकर महत्व का हो, ये विषय पर जानकारी देना श्रवण कुमार यादव भैया।
2: अब तेरी मन मनसान कराओ भैया।
1: मन मनसान हो जाए भाई, हम कही कि देखा तीज त्योहार में तैसे मन मनसान हुए के चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: ये जो पर्यावरण दिवस हो कोनो तीज त्योहार से कम ना।
2: एकदम भैया, एकदम उत्साह वाला।
1: तो हमके सुदर्शन यादव और उनके साथी भैया लोगों के गौना ही हो, पंच भैया सुने आनंद ले।

0: जट्टू भैया
1: हाँ सुद्धू भैया।
0: भाई देखा है सुदर्शन यादव साथी भैया लोगन का गौनाइत रहबा कल है। हम कहती है मन विज्ञानी सलाह भी रहला देखा
1: बिल्कुल
0: है
1: पूरा
0: ना,
1: अपने किसानी को शुरू से लेके अंतिम तक ले
0: एकदम
1: एकदम
0: शोधन विधि से लेके बुआई से लेके सोहनी तक कुल के बातें मन चर्चा कर देना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो भाई
1: भैया।
0: देखा मन मनसान के साथे साथे सलाह भी रहा। अब चलत चलावत देखा हम कही काली का जोन कार्यक्रम हो किसान भैया लोगों के सुनोई बा ओके बताए दा।
1: बिल्कुल। तो बिहाने जो 6:05 पर अपन कार्यक्रम होला ना खेती की बातें, वो में धान का बेहन कैसे डाले के है ये विषय पे जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह और संझा के अपने यही कार्यक्रम कृषि जगत में ना जवन की 6:30 पर होला,
0: हाँ
1: ए में धान का कौन कौन उन्नत प्रजाति है ये
0: हाँ
1: पर डॉक्टर पवन कुमार सिंह से बात बत कही हुई
0: तो हम
1: तो
0: कहीं
1: ओ
0: एक
1: के
0: साथे
1: भैया लोग
0: चला के
1: सुनी है।
0: मिला होता तो पंच भैया लोगों से आज्ञा लेवल
1: बिल्कुल
0: जाता।
1: आज्ञा लिया जाए।
0: पंचो
1: पंचो राम
0: राम राम।
1: राम।

ये गीत हमने लिया है फिल्म बादशाहों से। आवाजें नुसरत फतेह अली खां और राहत फतेह अली खां का है। गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत तनिष्क वगी का।

अभी आप फिल्म बादशाहों का गीत सुन रही थी, अब आइए फिल्म जख्म का गीत सुनिए। आवाजें अलका याग्निक और अलका याग्निक की हैं, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार MM क्रीम। फिल्म का नाम जख्म।

ये आवाज थी अलका याग्निक की और फिल्म था जख्म। अब आइए सोनू निगम और जसविंदर नरुला की आवाज में सुने फिल्म हमराज का एक गीत। शब्दकार हैं सुधाकर शर्मा और संगीत रचना हिमेश रेशमिया की है।

आइए सुने खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार पूजा सरोज, पुत्री अशोक सरोज, निवासी भंगरी, थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर, कहीं खोई गई हैं। इनकी आयु 18 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, इकहरा बदन, रंग सांवला और चेहरा लंबा है। ये पीले रंग की समीज, सूट व लैगी पहनी है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर को सूचित करें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के से प्राप्त सूचना के अनुसार सोनी पुत्री राजेंद्र प्रसाद निवासी कोतवालपुर थाना गौराबा साहपुर जनपद जौनपुर, ये 16 मार्च सन 2026 से कहीं लापता हो गई हैं। इनके हुलिया इस प्रकार है, उम्र 29 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, इकहरा बदन, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। ये हरे रंग की छेड़दार साड़ी पहनी है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना गौराबा साहपुर जनपद जौनपुर को सूचित करें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार रक्षा शुक्ल पुत्री रमेश चंद्र शुक्ल निवासी दियावा थाना मछली शहर जनपद जौनपुर कहीं लापता हो गई हैं। इनके हुलिया इस प्रकार है। उम्र 27 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, इकहरा बदन, रंग कोरा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना मछली सर जनपद जौनपुर को सूचित करें। कोई भी व्यक्ति संबंधित सूचना आप समाप्त हुई। यह आकाशवाणी वाराणसी है। 7:18 हो रहे हैं। 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम लखनऊ केंद्र से संप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 के लोगो का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
1: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ माँ के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
0: कार्यक्रम में विश्व बैंक के सहयोग से 2,741 करोड़ रुपए की लागत वाली उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंध परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही श्रावस्ती स्थित गुलेरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच MOU का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा।
2: जब हम गन्ने से बायोप्लास्टिक बनाएंगे तो हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होगी और हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेंगे। साथियों, पीएलए दुनिया के सबसे सस्ते बायोप्लास्टिक में से एक है और जब यह डिस्पोज होगा तो यह कचरा नहीं खाद बनेगा, फर्टिलाइजर, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, यानी कि हर तरीके से फायदा ही फायदा, कहीं के कोई नुकसान नहीं।
0: बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहाताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्र भूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि ये उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुराहाताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है

लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सुरहाताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश

0: पासवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने हिस्सा लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि आज बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी चर्चा की गई।
2: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की कि जो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए क्योंकि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी आज से 21 जून तक जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
3: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। आज एक पेड़ माँ के नाम, तो आज यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 24 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किए गए। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पूर्वी जनपदों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का किया आगाज। कहा, पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा, बायो प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मेरे में 241.57 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में हसरत जयपुर का लिखा गीत। संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की थी। फिल्म का नाम गीत। अब आइए फिल्म प्रेम पर्वत का एक गीत सुने। आवाज़ लता मंगेशकर की है। बोल लिखे हैं जानिसार खाने और संगीतकार हैं जयदेव। फिल्म का नाम प्रेम पर्वत।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आइए सुने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में फिल्म चोर मचाए शोर का एक गीत। शब्दकार हैं इंद्रजीत सिंह और संगीतकार रविंद्र जैन।

सागर नदिया जैसे सीख लिया है प्यार में हमने मिट कर जिंदा रहना बोलो लेना लेना एक जाल पर।

और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आइस ने फिल्म आदमी का एक गीत, आवाज मोहम्मद रफी की है, शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा है, संगीतकार है नौशाद।

और कार्यक्रम के अंत में अब आइए सुने किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अमर प्रेम का एक गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं ये हरिहरन। आइए सबसे पहले आए सुनें इनकी आवाज में एक गजल। शायर हैं विजय सिन्हा।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं ए हरिहरन। अब आइए आइए सुने सबेर जलालाबादी का ये कलाम।

0: अभी आप सुने थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार थे ये हरिहरन। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आइए सुने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, now we bring you an exclusive interview with Bharat Kheda, Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on major reforms and initiatives for the growth and empowerment of MSMEs. Interviewer is Arjun J. Chaudhary.
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख नीतिगत सुधारों और पहलों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार।

0: 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों,

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने

बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says Smart Border Project in its final execution stage. Pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan.

0: And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
1: Surat सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी, साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
0: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
1: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
0: Prime Minister Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis.
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्कियाती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए भारत सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। हिसास सरहदी मकाम पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ की जाएगी। जुनूब मगरबी मानसून बहिरा अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों

0: में पेशरफ कर रहा है। और हॉकी में भारत जापान के काका मिगारा के मकाम पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त देकर मर्दों के अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है कि दुनिया एक माहौलियात के लिए साजगार मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त कर रही है और भारत इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए इसकी फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। गुजरात के शहर सूरत में आज 18,800 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि भारत की 250 गीगावाट की मजमूई काबिल क़द्र तवानाई में से अकेला गुजरात 50 मेगावाट फराहम करता है, जो कि मुल्क की सब्ज़ तवानाई का 5वां हिस्सा होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में तब्दीली में एक वसी रोल अदा करना चाहती है, जो तवानाई में खुद किफालत हासिल करने के लिए लाजमी है। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये इकदाम पेशरफ की क्यादत करेंगे और अवाम के लिए ज़िंदगी की आसानी को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी जाहिर की कि माहौलियात के दिन के मौके पर वो सूरत में हैं, जो कि मुल्क के साफ तरीन शहरों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा तवानाई का आलमी बहरान तवानाई में खुद किफालत की कलीदी अहमियत को उजागर करता है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: भारत की मईशत ने साल 2025-26 के दौरान तेजी का रुझान बरकरार रखा है। साल 2024-25 की 7.1% असल जीडीपी के मुकाबले साल 2025-26 के दौरान असल जीडीपी की तरक्की का तखमीना 7.7% है। शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज़ की वजारत ने आज माली साल 2025-26 के सालाना अंदाजे के आर्जी आदादोशुमार और इस साल जनवरी से मार्च की सहमाही के अंदाजे जारी किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारतीय मईशत के लगातार इस्तेहकाम, इस्लाहात की कामयाबी और 140 करोड़ भारतीयों की सख्त मेहनत की अक्कासी करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत जिंदगी गुजारने और कारोबार करने में आसानी पैदा करने और नौजवानों के लिए मौके में इजाफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। इसमें सरहदों के साथ 7 से 8 हिसास मकामात पर अगले साल पायलट शुरुआत करने की मनसूबाबंदी शामिल है। इन मकामात की हिफाजत बीएसएफ और एसएसबी करती हैं। त्रिपुरा में आज लंकामूरा सरहदी चौकी पर प्रहरी सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, नौजवानों और मुकामी शहरी इंतजामिया को नाकाबिले दरअंदाजी सरहदी बंदोबस्त का एक निज़ाम वजह करने के जिमन में मरबूत करेगा।
1: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और एक स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: जनाब शाह ने जोर दिया कि हुकूमत त्रिपुरा, मगरबी बंगाल और बिहार के हिस्सा सरहदी हिस्सों में दरअंदाजी या सरहदी रखना के बगैर किसी भी तरह की आबादियाती मुंतकली की इजाजत नहीं देगी। वजीर दाखिला ने मनुष्यात की स्मगलिंग, इंसानों की नाजायज तिजारत और मवेशियों की स्मगलिंग जैसे खतरात को जड़ से खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया। जनाब शाह ने बड़े पैमाने पर शजरकारी की एक मुहिम में भी शिरकत की और अगार का एक पौधा लगाया। नेपाल के खारजी उमूर के वजीर शिशिर खनाल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर भारत के 3 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। तीसरे पहर आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर कल नेपाल के अपने हममनसब के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने उजागर किया कि भारत का नेपाल के साथ एक जामे एजेंडा है

इसमें तरक्याती ताउन से लेकर तिजारत और सरमायाकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के साथ कसीर जहती शराकतदारी को मुस्तहकम करना चाहता है। वजारत खारजा ने आज इत्तला दी है कि दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हाल ही में पेश आए आग लगने के हादसे में जान गंवाने वालों में गैर मुल्की शहरियों की तादाद 13 है। नई दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि महलुकीन में 4 अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया से और 3 का ताल्लुक किर्गिस्तान से था, जबकि मोजम्बिक, लाइबेरिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, जमहूरिया कांगो और इराक के एक एक शहरी की मौत हुई है। भारत रूस ताल्लुकात पर बोलते हुए तर्जुमान ने कहा कि भारत और रूस के दिफाई ताल्लुकात मजबूत हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं। भारत और अमरीका के दरमियान तजारती समझौते पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि अमरीका के आला मुजाकिरातकार अपनी टीम के साथ 1 जून से 4 जून तक भारत में थे। उन्होंने कहा कि बातचीत मुस्बत और तामीरी नौयत की रही। एक दीगर सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल अब तक 1076 भारतीय शहरियों को अमरीका से मुल्क बदर किया गया है, जबकि यही तादाद पिछले साल 3567 थी। भारत में गैर मुल्की शहरियों के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों से निमटने के बारे में कवानीन मौजूद हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली को रूस के 5वीं नस्ल के स्टेल्थ तैयारे सुखोई SU-57 की पेशकश की है और इन तैयारों को भारत में मुश्तरका तौर पर तैयार करने की तजवीज रखी है। ये पेशकश दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक साझेदारी की अक्कासी करती है। सेंट पीटर्सबर्ग इक्तिसादी फोरम के तनाजुर में कल रात सरकर्दा न्यूज एजेंसियों के सरबराहान से बातचीत करते हुए जनाब पुतिन ने कहा कि मॉस्को अब भी SU-57 तैयारा प्रोग्राम में नई दिल्ली की शिरकत का ख्वाहिशमंद है। जनाब पुतिन ने इंटीग्रेटेड फिजाई दिफाई निजाम और उससे मुतालिक हार्डवेयर समेत दीगर अहम दिफाई प्लेटफॉर्म्स पर भारत के साथ इश्तराक करने की रूस की तैयारी का इजहार किया है। भारत रूसी साख्त के S-400 मिसाइल निजाम के मुमकिन कलीदी पुर्जे के साथ अपने दिफाई निजाम सुदर्शन चक्र को स्वदेशी तर्ज पर तैयार कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आज पाकिस्तान के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है और पाकिस्तान के उन मंसूबों पर शदीद एतराज किया है जिसके तहत वो पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी और जबरन कब्जा किए हुए भारतीय इलाके नाम नेहाद गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात कराने का मंसूबा रखता है। ये इंतखाबात इस माह की 7 तारीख को होने हैं। भारत ने अपने वाज़ेह मौकफ को दोहराया है कि नाम नेहाद गिलगित बल्तिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुकम्मल मरकजी खित्ता भारत का अटूट और नाकाबिले तस्खीर हिस्सा है, क्योंकि साल 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में मुकम्मल कानूनी और नाकाबिले वापसी इल्हाक हुआ था। उमूर खारजा की वजारत ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की इस तरह की कोशिशें उन बुनियादी मसाइल को नहीं छिपा सकती जिनमें इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, सियासी जबर, माशी इस्तेहसाल और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में आज़ादी से महरूमी शामिल है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में किसी भी बुनियादी या इंतजामी तब्दीली की कोशिश को वाज़ह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। भारत ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के इकदामात उन हकायक को छुपा नहीं सकते कि पाकिस्तान अब भी गैर कानूनी तौर पर भारतीय इलाकों पर काबिज है जिन्हें खाली करना होगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। दिल्ली के वजीर आशीष सूद, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बारे में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब सूद ने कहा कि वजीर आला ने गैर कानूनी तामीरात, फायर सेफ्टी के उसूलों की खिलाफ वर्जियों और इंतजामी लापरवाही से पेश आए हालिया अलमनाक हादसे पर तश्वीश का इजहार किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने आफात से निमटने से मुतालिक एक्ट 2005 की मुख्तलिफ दफात को मौसर तरीके से नाफिज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर रिहायशी या तजारती इमारतों के मालिकान इस कानून के तहत कसूरवार पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्मानों के साथ साथ कैद की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। जनाब सूद ने कहा कि मुस्तकबिल में DMs को अपने जिले में काम करने वाले किसी भी महकमे के अफसरान की जवाबदेही तय करने का इख्तियार हासिल होगा। वो जरूरत पड़ने पर महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश, FIR दर्ज करने और वजह बताओ नोटिसें जारी कर सकेंगे।
गुवाहाटी में हलफबरदारी की एक तकरीब में 12 नए

काबिनी वुजरा को शामिल करते हुए आज आसाम की वुजरा काउंसिल में तौसी की गई। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने नए वुजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आसाम की वुजरा की काउंसिल की तादाद अब बढ़कर 17 हो गई है। आईन के तहत आसाम में वजीर आला समेत ज्यादा से ज्यादा 19 वुजरा हो सकते हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज ऐलान किया कि अंडमान जजायर के मशरक

0: लिए नामजदगी का अमल अगले माह की 31 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत दाखिला ने कहा कि पद्म अवार्ड के लिए नामजदगी और सिफारिशात का अमल जो 15 मार्च को शुरू हुआ था, सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से मौसूल नामजदगियों के जरिए जारी रहेगा। वजारत ने सिलसिले में शहरियों से खुद नामजदगी समेत नामजदगियां और सिफारिशात दाखिल करने की अपील की है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नतायज के ऐलान के बाद अपने पोर्टल पर हुए मनसूबाबंद साइबर हमलों के बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 12वीं जमात के उम्मीदवारों के जवाबी पर्चों के वेरिफिकेशन और दोबारा जांच के लिए यह पोर्टल 2 जून को शुरू किया गया था। CBSE ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान पोर्टल पर मुतअद्दिद मनसूबाबंद साइबर हमले हुए हैं। ताहम इन हमलों को 24 घंटे 7 दिन की लगातार निगरानी और जवाबी मैकेनिज्म के जरिए नाकाम बना दिया गया। इस दौरान IIT कानपुर, IIT मद्रास और दीगर मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की साइबर सिक्योरिटी टीमों की मदद हासिल रही। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मगरबी वस्ती और मगरबी वस्ती बहिर अरब, गोवा के हिस्सों और कर्नाटक के इलाकों में मजीद आगे बढ़ गया है। इस तरह की सूरत हाल तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में भी जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि जुनूब मगरबी मानसून के वस्ती बहिर अरब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मजीद हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल के बाकी हिस्सों में भी आगे बढ़ने के लिए सूरत हाल मवाफिक है। मौसमियात की एजेंसी ने यह भी कहा है कि आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की सूरत हाल मगरबी वस्ती, मशरकी वस्ती और शुमाल मशरकी खलीज बंगाल के इलाकों के साथ साथ शुमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी जारी रहने की तवक्को है। हॉकी में भारत ने आज जापान के शहर काकामी गहारा में खेले गए मर्दों के अंडर 18 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 3-5 से हरा दिया, जहां भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद की फालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए भारत सब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत ने मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ 7.7% रखी गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। इस 7 सरहदी मकामात पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ कराई जाएगी। और जुनूब मगरबी मानसून बहिर अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.5 सेंटीमीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। श्रोताओं नमस्कार, आज के अंजुमन कार्यक्रम में शामिल है हमारे कुछ जाने माने गजल और गीत गायक, जिनकी आवाजों में भावनाओं का पूरा आसमान सिमट आता है। तो आइए, इस कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं शब्दों और सुरों का ऐसा संगम जो दिल को छू जाए। सबसे पहले आइए सुने तलत अजीज की आवाज में ये गजल। शायर है निदा फाजली।

0: आवाज में ये प्यारी सी गजल।
1: महफिल का ये आखिरी नगमा पेश कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने इतनी मोहब्बत, इतने प्यार से हमें सुना और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी यही प्यारी

आप सुन रहे हैं अंजुमन कार्यक्रम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आए सुने मेहदी हसन की आवाज में ये गजल।

श्रोताओं, ये थी अंजुमन गैर फिल्मी गीतों और गजलों की एक महफिल। आशा है इन सुरों ने आपकी रात को और भी खूबसूरत बना दिया होगा। इसी के साथ हमें यानी धर्मेंद्र शुक्ल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: अभी आप सुने थे अंजुमन कार्यक्रम। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। अब आप सुने खेल पत्रिका कार्यक्रम में क्रिकेट का बदलता स्वरूप विषय पर खुर्शीद अहमद खां से चंदन सिंह की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम खेल पत्रिका के एक और अंक के साथ मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, अगर हम भारत की बात करें तो क्रिकेट पूरे भारत को एक सूत्र में बांध के रखती है और पूरे भारत को जोड़ के रखती है। बहुत कम उम्र से ही यहाँ के बच्चे क्रिकेट में इस तरह से रम जाते हैं और क्रिकेट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और क्रिकेट में तमाम चीज़ों को जानना शुरू कर देते हैं, जो और किसी देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे एक छोटे से छोटा बच्चा भी और एक बुजुर्ग से बुजुर्ग इंसान भी ये जानने की कोशिश करता है कि अभी मैच की स्थिति क्या है। और समय के साथ इसी क्रिकेट में हमने देखा है कि कई सारे इसके रूप बदले हैं, कई सारे इसके स्वरूप बदले हैं। इसी संदर्भ में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं खुर्शीद अहमद खान जी। आप पूर्व रणजी खिलाड़ी रहे हैं, साथ ही अंडर 19 इंडिया वेस्ट इंडीज टूर में आप भारतीय टीम का आप हिस्सा भी रहे हैं। क्रिकेट खेल में आप अच्छी जानकारी रखते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: अगर क्रिकेट की बात करूं मैं, कोई भी क्रिकेट मैच होता रहता है तो हम देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा माहौल बनता रहता है और टॉस होने के पहले एक कैमरामैन और एक कमेंटेटर आते हैं और बकायदा वो पिच को दिखाते हैं कि ये लाल मिट्टी की पिच है, ये काली मिट्टी की पिच है। क्रिकेट में इसके क्या मायने हैं?
2: देखिए, लाल मिट्टी की पिच आपको ज़्यादातर साउथ और वेस्ट में मिलेगी और उसमें फ़र्क यही होता है कि लाल मिट्टी की पिचों पे बाउंस अच्छा होता है और जो काली मिट्टी है वो हमारे नॉर्थ जोन में, ईस्ट जोन में, हमारे जोन में मिलती है। और काली मिट्टी की पिच में एक उतना अच्छा बाउंस तो नहीं मिलता है, लेकिन वो

0: बैटिंग के लिए अगर आप जिस तरह से चाहें उस तरह से तैयार करा सकते हैं, बैटिंग के लिए, स्पिन ट्रैक के लिए, बॉलिंग के लिए, फास्ट बॉलिंग के लिए। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि लाल मिट्टी के पिच पे बाउंस अच्छा होता है
1: जी
0: और काली मिट्टी के पिच पे एक इवन बाउंस होता है।
1: जी अच्छा, मैं पिच की बात करता हूँ मैं तो भारत के तमाम पिच में अगर देखें अक्सर तो ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे स्पिन भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर यही भारतीय टीम या कोई टीम, हम विदेशों में कोई मैच देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अगर मैच देख रहे होते हैं या इंग्लैंड में मैच देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे पिच को ऐसे ही देख के लगता है जैसे कि किसी रबड़ पे लोग खेल रहे हैं, क्या इतनी उछाल मिलती है, इतना तेज जाता है, तो ऐसा क्या बदलाव होता है वहाँ के पिचों में और यहाँ के पिचों में?
0: नहीं, देखिए मिट्टी का फर्क होता है और इंडियन जो कंडीशन है, इंडियन जो आप एक तरह से वेदर भी कह सकते हैं जो है, उस हिसाब से यहाँ के पिचेस हैं। और आप देखेंगे जब कभी यहाँ ग्रीन टॉप विकेट बना दिया जाता है तो फास्ट बॉल मतलब बॉल यहाँ भी अच्छा चलता है, मतलब बॉल अच्छी निकलती है। लेकिन उससे क्या है कि हमारे इंडियन जो हमारा जो स्ट्रेंथ है इंडिया का, वो बेसिकली स्पिन पे हमेशा रहा है। आज हमारे पास ठीक है, बुमराह है, समी है और सिराज है, बाकी लोग हैं, लेकिन हम अगर पिछले 30-40 साल का या और 50 साल पीछे से आइए
1: जी
0: तो हमारा जो क्वालिटी बॉलिंग रही है वो स्पिन रहा है। और उस हिसाब से अच्छा बैटिंग में भी हमारा जो क्वालिटी रहा है वो ये रहा है कि हम स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, मीडियम फास्ट बॉलर को सही खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं इंडियन कंडीशन में, तो हम उस हिसाब से विकेट बना के देते हैं। और जब कभी हमने उसको चेंज किया है तो हमको कहीं ना कहीं हमको दिक्कतें आती हैं, जैसे
1: अच्छा
0: मोहाली का विकेट है या और भी इंडिया में विकेट्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा ग्रास दिया तो हमारे बैट्समैनों को दिक्कत हुई, हमारे बॉलिंग स्पिनर्स को दिक्कत हुई। तो हम हर टीम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास एक फास्ट बॉलिंग का पूरा खजाना है तो वो उस हिसाब से अपना विकेट देते हैं और उनकी मिट्टी का भी फर्क है, तो इसलिए इंडियन कंडीशन अलग है, ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड इंग्लिश कंडीशन अलग है, वहाँ स्विंग बहुत ज़्यादा होता है बॉल।
1: जी
0: हाँ तो हर हर कंट्री का अपना कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है
1: जी
0: तो उस हिसाब से वो काम करते हैं।
1: जी अच्छा, तो मूलतः अगर इस बात को समझे तो सभी जो कंट्रीज हैं, सभी जो देश हैं, उनकी मूल स्ट्रेंथ क्या है बॉलिंग में, उसके हिसाब से उनका पिच जो है लगभग उसी तरीके का होता है। अच्छा, अभी आप चर्चा के दौरान आप बता रहे थे कि ग्रीन टॉप होता है, अक्सर हम लोग भी देखते हैं कि कमेंटेटर जो है वो बोलते हैं कि पिच पे थोड़ी घास रख दी गई है, घास थोड़े बड़े हैं या घास बहुत छोटे हैं, पिच में दरार है, तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ा? अगर पिच में अगर घास है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जरा इसके बारे में बताएं।
0: पिच में अगर घास है तो फास्ट बॉलर को सपोर्ट करता है वो, और अगर दरार है तो वो स्पिनर्स को सपोर्ट करता है क्योंकि विकेट टूट रहा है इसका मतलब,
1: अच्छा
0: और दरार का मतलब है कि वो हो सकता है शुरुआती पहले दिन या आधा दिन या 1.5 दिन वो विकेट प्रॉपर सही चले, उसके बाद उसमें दरार बढ़ती जाएगी और वो टर्निंग ट्रैक होता जाएगा, स्पिनर को वो जो है मदद करेगा।
1: जी अच्छा, शुरुआत में जो है हम देखते हैं, अभी तो खैर ये बदलाव काफी आ गया है कि अब शुरू में स्पिनर भी आकर बॉलिंग करने लग गए हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता था और हम लोग जब गली मोहल्ले में भी खेलते थे, भले ही हम ये नहीं जानते थे कि पिच कैसी है कैसी नहीं है, हमारा पहला ओवर जो है वो फास्ट बॉलर ही करता था, भले ही हम पुरानी गेंद से क्यों ना खेलते, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं हम जो क्रिकेट को टीवी में देखते थे उसी को कॉपी करने की कोशिश करते थे। तो क्या गेंद में ऐसा क्या होता है कि शुरू से ही जो है फास्ट बॉलर को रखा जाता है?
0: नहीं देखिए, जब नई बॉल होती है, जो बेसिक है नई बॉल है उस पर साइन होता है,
1: जी
0: नई बॉल होती है वो साइन के हिसाब से स्विंग करती है। अगर आप में आर्ट है तो उस नई बॉल की साइन से आप जो है, अगर आप आउट स्विंगर हैं तो अच्छा आउट स्विंग करा लेंगे, इन स्विंगर हैं तो अच्छे इन स्विंग करा लेंगे, और नई बॉल अपने आप हरकत करती है
1: जी
0: उसमें। अगर आपके अंदर आर्ट है तो आप तो फिर बैट्समैन के लिए बहुत मुसीबत है।
1: जी
0: लेकिन वैसे भी नॉर्मल अगर आपके अंदर आर्ट भी नहीं है, एक नॉर्मल आदमी भी फेंकेगा अगर सीम को पकड़ के, तो मेरे ख्याल से वो जो है कुछ ना कुछ बॉल मूवमेंट करेगी, वर्क करेगी,
1: जी
0: और अगर आप में कला है तो वो तो फिर पूछिए मत।
1: जी
0: तो ये नई बॉल का ये फर्क आता है, इसलिए नई बॉल मीडियम पेसर को दिया जाता है।
1: अच्छा जी अच्छा, ये आपने स्विंग के बारे में बात किया, तो जो स्विंग है आपने इन स्विंग कहा, आउट स्विंग कहा, कई बार जो है रिवर्स स्विंग भी कहा जाता है, तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें कि ये इन

0: आउट स्विंग और रिवर्स स्विंग जो है वो क्या है?
1: इन स्विंग देखिए, बेसिकली इन स्विंग वो है जो बॉल राइट हैंड बैट्समैन के लिए अंदर आता है, और आउट स्विंग है जो बॉल राइट हैंड बैट्समैन के लिए बाहर निकलता है।
0: जी
1: अब जो रिवर्स स्विंग है, रिवर्स स्विंग एक कला है, एक आर्ट है।
0: जी
1: जब बॉल पुरानी हो जाती है, एक तरफ से थोड़ा हैवी कर दिया जाता है साइन करके, और एक तरफ से पुरानी ही खुरदुरी रखी जाती है, और उसको क्या है कि वो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आउट स्विंग, जैसे आपने नई बॉल पे जो बॉलर आउट स्विंग कराता है, तो जब वो पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग कराएगा तो वो अंदर आएगी, वही सेम एक्शन सेम उससे ग्रिप से, तो उसी को रिवर्स स्विंग कहते हैं।
0: मतलब ये हो गया कि अभी मैं जिस तरह से आउट स्विंग करता था बॉल
1: हाँ
0: को,
1: हाँ हाँ हाँ
0: अब बॉल पुरानी हो गई है, एक तरफ से उसको खुरदरा कर दिया गया है, एक तरफ से भारी कर दिया गया है, तो अब मैं आउट स्विंग करने की कोशिश करूंगा तो वो इन स्विंग
1: इन
0: जाएगी,
1: स्विंग जाएगी।
0: जिससे जो बैट्समैन है वो भ्रमित हो जाएगा और उसमें जो है विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली,
0: जी
1: ये एक कला है। ये एक्चुअल में ये पाकिस्तानियों ने शुरू किया था
0: जी
1: इमरान खान के ज़माने में। इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मतलब वसीम अकरम और वकार यूनुस तो इसके मास्टर थे।
0: जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा तो कि कई बारी जो है हमने चर्चा में ये बात की थी कि शुरुआती दौर पे जब बॉलिंग करने आते हैं तो स्विंग मिलने के चांसेस होते हैं, कई बारी स्विंग नहीं मिलता है, कहा जाता है कि मौसम का कुछ प्रभाव है जिसकी वजह से स्विंग नहीं मिल रही है, या हवा नहीं चल रही है, कुछ ऐसा बहुत तमाम कंडीशंस होते हैं कि वो आपको स्विंग नहीं मिलता है। तो हमारे श्रोताओं को यहाँ पे बता दें कि क्या प्रभाव पड़ता है मौसम का स्विंग के
1: नहीं
0: ऊपर।
1: नहीं मौसम का बहुत प्रभाव पड़ता है स्विंग पे, क्योंकि अगर आप अप्रैल में, जून जुलाई वाली क्रिकेट खेल रहे हैं या अगस्त सितंबर में, तो आप ये मान के चलिए कि आप में बहुत अगर आर्ट है तभी आप वो स्विंग आपको मिलेगा, क्योंकि इस मौसम में गर्मी में बॉल स्विंग कम होती है, हवा कम चलती है, तो उसमें स्विंग कम मिलता है। और जैसे ही चेंज होगा मौसम, जो जाड़े वाला मौसम आता है, तो मौसम में नमी होती है, वेदर हैवी होता है, तो उसमें बॉल बहुत अच्छा स्विंग करता है, बहुत अच्छा स्विंग करता है। तो आप देखेंगे भी, जब आपके इन रीजनों में जिधर ठंड बहुत पड़ती है और मौसम हैवी होता है, तो उधर थोड़ा दिक्कत आती है
0: जी
1: बैट्समैन को।
0: अच्छा, हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये तो फास्ट बॉलर्स की बात हो गई, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा स्पिनिंग, स्पिनर्स की हम लोग बात करते हैं, अब स्पिनर्स की बात कर कई लोग जो हैं वो बोलते हैं कि ये ऑफ स्पिनर है, कोई कहता है कोई लेग स्पिनर है, तो ये तो समझ में आ जाता है कि ऑफ स्पिनर जो है अगर राइट हैंडेड बैट्समैन है तो बॉल जो है टप्पा खा के उसके इनसाइड आएगा, बैट्समैन की तरफ आएगा, कई लोग कहते हैं चाइना मैन, तो जल्दी जल्दी मैं हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें कि ये सब तरह तरह के जो बॉलर्स हैं ये क्या हैं।
1: देखिए, चाइना मैन हो गया लेफ्ट आर्म, जो लेफ्ट हैंड लेफ्ट आर्म से बॉल करता है और वो लेग स्पिन कराता है, वो आएगी राइटी बैट्समैन के अंदर आएगी, जैसे ऑफ स्पिनर का बॉल अंदर आता है, लेकिन वो कलाई वाला लेफ्ट लेफ्ट आर्म करता है तो वो चाइना मैन हो गया। राइटी ऑफ स्पिन डालता है तो बैट्समैन के अंदर आता है, लेग स्पिनर है तो वो उसकी बाहर बॉल निकलेगी नेचुरल, और उसी में एक लेग स्पिनर के पास वैरायटी है, गुगली,
0: जी
1: वो अंदर आएगी। आजकल
0: लगभग,
1: ये
0: मतलब अगर गुगली की बात करें तो वो एक ऑफ स्पिनर की तरह काम कर रहा है।
1: हाँ,
0: जी
1: और आजकल ऑफ स्पिन इधर पिछले 10-20 सालों में मेरे ख्याल से मुरलीधरन ने एक उसमें और इजाद किया, और शकलेन मुश्ताक और इन लोगों ने, कि ऑफ स्पिन में ही वो बाहर निकालने लगे बॉल उसी एक्शन से, तो वो दूसरा कहा जाने लगा। तो मतलब देखिए, ये सब आर्ट है और प्लेयर्स इसको डेवलप करते रहते हैं। 100-150 सालों के क्रिकेट के इतिहास में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया, तो उसका रीज़न यही रहा कि हर एक चीज़ जो है आपके अकॉर्डिंग डे बाय डे इम्प्रूव होता रहा।
0: जी
1: और जब उन चीज़ों पे, जैसे ऑफ स्पिनर ने सिर्फ ऑफ स्पिन फेंकी तो बैट्समैन उस चीज़ को अर्ली पिक कर लिया, और तो बॉलर ने अपने बचने के लिए उसको एक नई बॉल इजाद की, तो लेग स्पिनर ने गुगली इजाद की। तो ये जैसे जैसे क्रिकेट में बढ़ता गया, वैसे वैसे जो है इम्प्रूवमेंट होती चली गई।
0: तो ये वैरायटी की बात हो गई कि एक बॉलर जो है अपने अंदर कितनी तरह की गुणवत्ता ला सकता है, कितनी वैरायटी ला सकता है, ये इसकी बात हो गई है। अच्छा, इसी बीच अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं, अगर बात करूं मैं, तो कई लोग कहते हैं कि ये आर्म स्पिनर है और ये एक
1: स्पिनर
0: रिस्ट, कुछ अलग तरह के स्पिनर, तो इन दोनों में क्या अंतर है?
1: नहीं, रिस्ट स्पिनर वही हो गया, लेग स्पिनर आपका जो कलाई से बॉल डालता है। और

0: मैन भी वही हो गया रिस्ट स्पिनर, और लेग स्पिनर भी वही हो गया रिस्ट स्पिनर, वो
1: अच्छा
0: कलाइयों से बॉल डालते हैं।
1: जी
0: और आम या स्पिनर जो है ऑफ स्पिनर है जो अपने आम से बॉल डालता है, तो यही फर्क है उसमें, और कोई वो नहीं है।
1: अच्छा हम बात करते हैं अब थोड़े बैट्समैन की बात कर लेते हैं। तो कई बार जो है हम लोग को सुनने को मिलता है कि ये किसी भी बैट्समैन का भी नाम ले लिया जाता है, वो कहते हैं कि ये काफ़ी भारी बल्ला प्रयोग में लाते हैं। कई बैट्समैन के बारे में कहा जाता है कि वो हल्का बल्ला प्रयोग करते हैं, तो ये भारी बल्ला और हल्के बल्ले से क्या फ़र्क पड़ जाता है?
0: देखिए फर्क सबसे ज़्यादा जो पड़ता है वो जो बैट्समैन यूज़ करता है बल्ला, जैसे सचिन तेंदुलकर सबसे भारी बल्ले से खेलते थे इंडिया में, और वहीं हमारे उनके पुराने कप्तान अजहरुद्दीन साहब जो है सबसे लाइटेस्ट बैट से खेलते थे। तो वो अपनी कंफर्ट पे होता है बैट्समैन के कि हमें कौन सा बल्ला सूट कर रहा है, हैवी वेट सूट कर रहा है कि लाइट बैट सूट कर रहा है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे बैट्समैन डबल ग्रिप ट्रिपल ग्रिप भी यूज करते हैं, बहुत सारे हैंडल पे सिंगल ग्रिप यूज करते हैं, तो सब
1: जी
0: अपने कंफर्ट के हिसाब से। और भारी वेट का ये है कि बॉल जब बॉल और बल्ले की मुलाकात होती है तो थोड़ा पंच उसका अच्छा आता है, और लाइट जो बैट है उससे बॉल और बल्ले की मुलाकात होती है तो वो थोड़ा वो स्पीड नहीं आती है। तो ये तो आर्ट है, अब जिसके हाथ में जो आर्ट है जिसको जो कंफर्ट लगे वो यूज करता है।
1: अच्छा कई बार ही हम लोग क्रिकेट मैच के बीच में देखते हैं कि बैट्समैन जो है अपने बैट को चेंज करता है, फिर उसके पास कई सारे चार पांच बैट्स लाए जाते हैं, उसमें से कोई एक बैट को चुनता है। तो क्या उस समय वो किसी तरह के अपने हल्के बल्ले या भारी बल्ले इस तरह का कुछ बदलाव करता है या फिर कुछ क्या करता है वो उस समय?
0: नहीं, देखिए जिसको जिस बैट की आदत है ऑलमोस्ट वही बैट यूज करता है, एक ही वेट एक ही वो कर्व एक ही वो उसको पसंद है,
1: जी
0: तो उसी हिसाब से वो बैट चूज करता है। अब ये है कि कौन सा बैट ज्यादा खुला है, कौन सा बैट पुराना हो गया, कौन सा बैट में वो ज्यादा कंफर्टेबल उस समय महसूस कर रहा है, तो वो बैट वो ले लेता है। बाकी मेरे ख्याल से, और जैसे हम लोग भी खेलते थे तो हम लोग को एक ही टाइप का बैट पसंद था, एक ही वेट एक ही तरह का बैट है तो वही हम मंगाते थे। डबल ग्रिप में खेल रहे तो डबल ग्रिप चाहिए बैट पे,
1: जी
0: बस इतना ही रहता था।
1: अच्छा। अब कोई भी नया बैट्समैन जब बैटिंग करने के लिए आता है तो जो अंपायर है एक अलग तरह का एक कुछ लेकर के आते हैं, बकायदा उसके बैट को वो मेजर करते हैं, तो वो उसमें क्या करने की कोशिश
0: नहीं
1: करते हैं
0: वो
1: वो?
0: एक्चुअली देखिए आईसीसी ने एक रूल बनाया हुआ है कि बैट की साइज इतनी होनी चाहिए, बॉल का वेट इतना होना चाहिए। तो आजकल क्या होता है कि बहुत सारे बैट्समैन या बहुत सारे लोग जैसे बैट अलग अलग वेट का अलग अलग तरीके का बनाए हुए बनवाते हैं, तो आईसीसी मतलब अगर किसी बैट्समैन के बैट पर डाउट है तो उसको मेजर कर लेते हैं,
1: अच्छा तो
0: अगर
1: कुछ
0: उसे उनके क्राइटेरिया से ज्यादा है तो बैट वापस करवा देते हैं, उस क्राइटेरिया का बैट मंगवाते हैं।
1: अच्छा जी अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अगर क्रिकेट के इतिहास की बात करें तो ये टेस्ट मैच से क्रिकेट जो है वो शुरुआत हुई थी, फिर उसके प्रारूप को छोटा किया गया, वनडे मैच बनाया गया, फिर और छोटा करके T20 किया गया, फिर T10 आया, अब T100 जिसमें 100 गेंदों का मैच होने लग गया है। तो क्रिकेट का जो ये स्वरूप बदलता आ रहा है, आप क्रिकेट को बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: देखिए क्रिकेट जो बेसिक है, जो क्रिकेट की आत्मा है वो टेस्ट मैच है, और टेस्ट मैच ही मतलब बेसिक क्रिकेट है।
1: जी
0: तो उसके बाद चीज़ों को कम, क्योंकि 5 दिन देखने की फुर्सत या पब्लिक को, क्योंकि कमर्शियल भी हो गया ये खेल,
1: जी
0: तो वनडे क्रिकेट आया, और फिर उसके बाद वो चलता रहा चलता रहा, वो एक शिखर पे पहुंचा, और या आज भी है, तब तक एक नया कॉन्सेप्ट आया T20 का, वो और छोटा हो गया, 3 से 4 घंटे में जो है आपका टाइम, इतने टाइम में आपका जो मैच कंप्लीट हो गया, और उसमें 120 बॉलें मिली, 10 विकेट बचे हुए, तो बैट्समैन वो शॉर्ट हो गया टेम्परामेंट, 200 रन 250 रन अब बनने लगे T20 क्रिकेट में,
1: जी
0: बैटिंग पैराडाइज हो गया, अच्छा विकेट अच्छी अच्छा वाइड बॉल आ गई। व्हाइट बॉल क्या है कि व्हाइट बॉल एक अलग तरह का क्रिकेट है, रेड बॉल और व्हाइट बॉल में काफी फर्क है।
1: जी
0: बैटिंग के लिए मेरे ख्याल से रेड बॉल के बनिस्बत व्हाइट बॉल ज्यादा इजी
1: जी
0: है
1: जी
0: ना।
1: जी
0: तो T20 क्रिकेट एक अलग उसमें आ गया। अब क्या है, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है T10, कि 60 बॉलों में

0: 100 बॉलों में। लेकिन देखिए ये एंटरटेनमेंट हो गया,
1: जी
0: ये एंटरटेनमेंट हो गया, ये भी खेला जाना चाहिए। लेकिन जो क्रिकेट का मूल है, जो आत्मा है, वो टेस्ट मैच क्रिकेट है,
1: जी
0: वो 4 डे 5 डे क्रिकेट है।
1: जी
0: और बाकी उसमें थोड़े थोड़े चेंज करके 50 ओवर्स आया, फिर T20 आया, T10 आया, तो वो मतलब कमर्शियल क्रिकेट हो रही है, लेकिन आत्मा वही है क्रिकेट का, मेन टेस्ट मैच।
1: अच्छा, अभी आपने बताया कि वाइड गेंद की बात होती है, हम रेड गेंद की बात करते हैं, फिर पिंक गेंद बीच में आ गई उसकी बात करते हैं, तो क्या ये तीनों तरह के जो गेंद हैं इसका कोई प्रभाव पड़ता है क्या, कि मतलब अलग तरीके से ये काम करती हैं ये गेंदें?
0: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, रेड बॉल क्रिकेट अलग है,
1: जी
0: उसका लेदर, उसकी शाइन, वो जो है लास्ट तक बढ़िया बॉल चलता है, बढ़िया स्विंग होता है, बढ़िया स्पिन होता है।
1: जी
0: अब देखिए वाइड बॉल में क्या है कि दोनों एंड से वाइड बॉल रहती है, तो वो कम पुरानी होती है। तो जैसे जो पहले रिवर्स स्विंग की बात हो रही थी ना अभी,
1: जी
0: तो जैसे जितनी पुरानी बॉल होती जाती है तो उसको हिट करने में ताकत ज़्यादा लगती है, उसकी शाइन, उसकी ताकत ख़त्म होती है।
1: जी
0: तो लेकिन अब दोनों तरफ से बॉल, रेड बॉल वाइट बॉल चल रही है दोनों तरफ से,
1: जी
0: तो अगर 50 ओवर का मैच है तो 25-25 ओवर ही वो एक एक बॉल फेंक रही है,
1: जी
0: तो वो उतनी पुरानी नहीं हुई, आप समझिए। तो उससे क्या है, बैटिंग में एडवांटेज है। अब T20 में आ जाइए, वो यहाँ भी वही है, दोनों तरफ से चल रही, तो 10 ही 10 ओवर पुरानी तो बॉल हुई, तो
1: जी
0: बॉल हमेशा नहीं है, हिट करने में आसान है।
1: जी
0: और जो उसमें स्विंग भी वाइड बॉल में होती है, या जो नई बॉल का, वो इक्का दुक्का 2-4 ओवर होता है, और वो मार मार के बॉल की शाइन भी खराब कर देते हैं। तो बैटिंग के लिए वाइड बॉल इजी है।
1: अब बात कर लेते हैं कि आजकल के युवा हैं वो क्रिकेट से बहुत प्रभावित हैं, युवाओं की बात करें या फिर बच्चों की भी बात करें, वो बहुत बचपन से ही वो क्रिकेट मैच अपने घर में देख रहे होते हैं, जो क्योंकि बड़े जो है वो बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, तो उनका भी मन करता है कि वो क्रिकेट को अपना एक करियर के तौर पर देखें, और कई बार जो है एक मध्यम जो वर्ग परिवार है, ठीक है, जिसके पास जो है कमाई के ज़्यादा स्रोत नहीं है, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं है, क्या वो क्रिकेट में अपने बच्चे को भेज सकते हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि इसमें अपने उनका बच्चा जो जा करके कुछ अपना करियर बनाए?
0: नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अब एकदम लोअर क्लास की तो हम बात नहीं कर सकते,
1: जी
0: लेकिन उससे ऊपर का जो लेवल है बिल्कुल, और आजकल वो बच्चे खेल रहे हैं, और आपने पीछे या अभी बहुत सारे बच्चों का सुना भी होगा
1: जी
0: कि बहुत पुअर फैमिली से एक तरह से समझिए आए, और आके यशस्वी का जैसे है, हमारे भदोही के का ही बच्चा है, और वो बॉम्बे में जाके उसने काफ़ी स्ट्रगल किया, और उसके बाद जो है वो अपने टैलेंट से इतना ऊपर आया।
1: जी
0: तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत पैसे की ज़रूरत है, मतलब लेकिन बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और देखिए एक बात और हम आपको बहुत फ्रेंकली बताएं कि अगर आप अच्छा खेलते हैं, अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप किसी ना किसी को पसंद, अपने कोच को या किसी सीनियर को पसंद आ जाएंगे। तो बैट महंगा है तो वो आपको कोई ना कोई अवेलेबल करा देगा, आप अच्छे बॉलर हैं, आपके पास शू नहीं है प्रॉपर स्पाइक, तो वो कोई ना कोई आपको अवेलेबल करा देता है।
1: जी
0: तो लेकिन उसके लिए ये है कि आपको अच्छा होना चाहिए, और शुरू में आपको अपने हिसाब से, अपने पास से मैनेज करना पड़ता है,
1: जी
0: या उस फैमिली के गार्जियन को, या उस फैमिली के जो भी लाइबिलिटी लिए हैं उनको करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब आप थोड़ा ठीक दिखने लगते हैं ग्राउंड पे, तो आपको मदद करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। जैसे रिंकू सिंह का भी हमने किस्सा सुना कि उसके कोच ने काफ़ी जो
1: मदद
0: है
1: की
0: उसको हर तरह से मदद किया,
1: जी
0: कोई जीशान साहब हैं। तो मतलब आपको अच्छा होना होगा, तो आप में टैलेंट होगा, आप में अगर वो जज्बा दिखेगा, तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो आपको स्पॉन्सर करे इन चीज़ों को।
1: जी
0: तो खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं, आप में टैलेंट होना चाहिए।
1: अच्छा, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें तो मॉडर्न डे क्रिकेट जो है हम देखते हैं कि काफ़ी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है, आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं सामने वाले के पास पूरा डेटा होता है कि आपकी क्या कमजोरियां हैं, क्या कुछ आप आपके क्या स्ट्रांग पॉइंट हैं, कहाँ पे गेंद आपको मिले तो आप अच्छे से हिट कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें तो एक अलग ही सिर्फ आपकी फिजिकल नहीं आपकी मेंटल लेवल की टेस्ट होती है, तो मैं चाहूँगा कि एज ए क्रिकेट से चूंकि आप जुड़े हुए हैं तो मॉडर्न डे क्रिकेट में क्या डिमांड है हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बता दें।
0: देखिए भाई, हम आपको बहुत फ्रेंकली बोलें कि हर दौर में अगर आप मेंटल और फिजिकल फिट हैं तो ही आप ग्रेट हैं।

0: हम बहुत पीछे नहीं जाते हैं, हम सुनील गावस्कर का कपिलदेव से शुरू करते हैं। उन लोग देखिए उस दौर में खेले जब बहुत सारी फैसिलिटी नहीं थी, विकेट कवर नहीं हुआ करते थे,
1: जी
0: इक्विपमेंट अच्छे नहीं थे, लेकिन सुनील गावस्कर साहब ने तब 10,000 रन बनाया, 34 सेंचुरी बनाई है ना, बिना
1: जी
0: हेलमेट के।
1: जी
0: तो उनकी ग्रेटेस्टनेस की बात अलग हो गई।
1: जी
0: कपिल देव ने उस दौर में जब फास्ट बॉलर इंडिया में मजाक उड़ाया जाता था तब 400 विकेट लिए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर का दौर आया, उसके बाद आज विराट कोहली रोहित शर्मा का दौर आया। तो देखिए फिजिकल और मेंटल दोनों टफ रहे तभी इस लेवल पे आए। 16 16 18 18 20 20 साल क्रिकेट को टाइम दिया, मतलब गली क्रिकेट या क्लब क्रिकेट खेलने में 16 साल 20 साल जो है बहुत बड़ा टाइम होता है।
1: जी
0: उन लोगों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला, और अभी आप देखिए विराट कोहली रोहित शर्मा इन लोगों ने अपने को किस तरह से मेंटेन किया हुआ है
1: जी
0: कि 37 38 साल की उम्र में वो 20 साल के लड़कों को फेल कर रहे हैं।
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं देखिए गेम पे रूल करना है तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों टफ होना पड़ेगा और प्रिपरेशन दोनों बराबर करनी पड़ेगी, और ये सब मेरे ख्याल से शुरुआती दौर से ही शुरू हो जाता है। वही लोग दिखते हैं, देखिए जो बात होती है ना कि आप अभी कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी आ गई, इनकी फॉल्ट उनकी फॉल्ट, लेकिन आप देखिए जो भी बच्चे खेल रहे हैं, मतलब जो भी अभी आप IPL में ही देख लीजिए, उन सबको देखिए डेली उनको देखा जा रहा है उनके में क्या कमी है, उनका क्या स्ट्रांग है क्या वीक है। लेकिन जब वो बैटिंग करने आ रहे हैं, जब वो बॉलिंग करने आ रहे हैं, तो अपना 100% दे के जा रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस दे के जा रहे हैं,
1: जी
0: तो वो अपनी कमजोरी को भी अपने मजबूती बना ले रहे हैं।
1: जी
0: तो ये सारी चीजें मेंटल टफनेस पे सारी चीजें हैं, आपका गेम पे कितना कमांड है, आप मेंटली और फिजिकली कितने फिट है अपने आप को, मेन ये है।
1: चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्रिकेट के बदलते इस स्वरूप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: कुछ नहीं, मतलब देखिए अगर बहुत फ्रेंकली बोले तो आज क्रिकेट खेलना बहुत आसान हो गया है, आज इंडिया खेलना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि जब हम लोग खेला करते थे या हमसे पहले वाले खेलते थे तो उस समय 2008 से पहले IPL आने से पहले इंडिया में अगर आपको इंडिया खेलना है तो आपको डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी में, दिलीप ट्रॉफी में, देवधर ट्रॉफी में, रेस्ट ऑफ इंडिया में, इनमें परफॉर्मेंस लगातार करना होता था। और आपको ये समझिए कि एक सीजन में 8 10 मैच मिलते थे सिर्फ,
1: जी
0: और आप उसी में आपको परफॉर्मेंस ऐसा करना है कि आप इंडिया फ्रेम में आए, पूरे नेशनल लेवल पे आपकी चर्चाएं हों।
1: जी
0: लेकिन 2008 के बाद एक ऐसा बदलाव आया है कि अभी जिस बच्चे को हम लोग नहीं जानते या जिस लड़के को हम लोग नहीं जानते, ये 2 3 महीने बाद IPL सीजन जब खत्म होगा तो पूरा हिंदुस्तान जान जाएगा उसको। तो क्रिकेट खेलना बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है, बस ये है कि आप में टैलेंट, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो
1: जी
0: माँ बाप के लिए भी यही मैसेज है कि अब चीजें आसान हो गई हैं, अगर उनका बच्चा है इस लायक तो उनको अपने बच्चे पे फोकस करना चाहिए।
1: खुर्शीद अहमद खान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और क्रिकेट से संबंधित इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे खेल पत्रिका कार्यक्रम में क्रिकेट का बदलता स्वरूप विषय पर खुर्शीद अहमद खान से चंदन सिंह की बातचीत। खेल पत्रिका कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी से हो रहा था।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, केवल काली पोतली का दान ज्योति दान, नेत्रदान को परिवार की परंपरा बनाएं। नेत्रदान का संकल्प आज ही लें। ज्योति वह अमूल्य उपहार है जो आप ही दे सकते हैं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आई सुने देवाशीष दे का गायन, राग है शंकरा, और आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सिद्धार्थ चक्रवर्ती।

0: अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुन रहे थे देवाशीष दे का गाया राग शंकरा, और आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर सिद्धार्थ चक्रवर्ती। शास्त्रीय संगीत का ही कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी।

वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 सेंटीमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़, DTH, OTT वेव्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। आज की ये सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।